0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेलकम बैक. वेदर के हालचाल जान लेते हैं. 19 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है. 8 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा. 0% चांस है बारिश के आज भी, लेकिन सनसेट होगा 7:30 पे. सो गो आउट व्हेनेवर यू गेट टाइम एंड एंजॉय द सनी डे.
0: लंच बॉक्स विद केतन.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
0: लंच के मंच पे.
1: Kia namaste, sasrikal. Welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan hai, and thank you so much for tuning in. Agar aapne mujhe abhi join kiya hai to uske liye, and yes, agar aap mujhe 12 baje se sun rahe hain to uske liye bhi thank you so much for keep listening. अभी वैसे बने रही, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गपशप करनी है. इस आर में आप सभी के लिए लेके आऊंगा कुछ रेंट लाइन वाली बातें. आपको मैं मौका दूंगा टू कॉल मी और टू ड्रॉप अ मैसेज ओवर हियर एंड 5599. और एक मौका भी देने वाला हूं जहां पे कैसे आप दिवाली कॉम्पिटिशन जो हो रहे हैं यहाँ पे उस पर हिस्सा ले सकते हैं. सो यस, बने रहिए, सुनते रहिए और बस इंतजार करिए गानों के साथ साथ कि मैं जैसे मौका दूंगा, यू जस्ट नीड टू टेक अ पार्ट इन इट. And then, yes, wait for your luck.
0: Bajao kya?

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: वेल गेस कुछ मैचेस शुरू हो चुके हैं आईडीसी फिक्चर आज के दिन, जो कि पहला मैच करीबन यहां के 12 बजे और फिजी के 11 बजे शुरू हो चुका था। सीकाका वर्सेस कीरी बाटी, जो कि प्रीमियर पूल ए का मैच था। उसके बाद दूसरा मैच सेम टाइम हुआ था टी नायता सीरी वर्सेस ताबुआ, जो कि अगेन प्रीमियर पूल बी से ये मैच था। वैसे 2:30 बजे भी एक मैच है, उससे पहले 2 बजे भी मैच है, उसके बारे में हम बात करेंगे तब जब समय आ चुका होगा। पर ये सेगमेंट में मैंने अभी तक म्यूजिक इसलिए नहीं चलाया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले समथिंग वेरी नाइस, वेरी रोमांटिक एंड वेरी कूल म्यूजिक। तो आप पहले तो उसे सुनिए, फिर मैं बताऊंगा क्या रीजन है इसको चलाने का। क्या बात है, डू यू फील रोमांटिक आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग? मतलब रोमांटिक आपके पार्टनर के साथ हुए तभी, ऐसे नहीं भी हुए तो मे बी यू माइट बी फीलिंग यार। घर जाते हैं आराम से, एक मस्त चाय पीते हैं या फिर लेट्स हैव अ, बिकॉज आज दिन बहुत अच्छा, तो आई एम अज्यूमिंग दैट सनसेट गोना बी अमेजिंग। तो आप अगर आपके घर पे डेक है, यू जस्ट स्पेयर अ लिटिल मोर टाइम और अपने पार्टनर के साथ मस्त सनसेट एंजॉय करिए अपने घर पे, और इवन इफ यू वॉन्ट टू गो समवेयर आउट दैट इज ऑल्सो द थिंग। बट यस, यहाँ पे एक्चुअली मैं स्टोरी यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक रोमांटिक स्टोरी। लाइक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टेल अ स्टोरी एवरी डे बिकॉज आई लव एंड दैट इज वॉट माई जॉनर इज, दैट इज वॉट माई फील्ड इज, नॉट टू टेल द स्टोरी बट टू मेक द स्टोरीज। या वैसे ऑकलैंड में एक नॉर्मल सी शाम थी, रोहन ऑफिस से घर जा रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। उसके पास अम्ब्रेला नहीं था तो वो एक बस स्टॉप के नीचे खड़ा हो गया। वहीं से एक लड़की ऑलरेडी पहले से ही खड़ी थी, जिसका नाम ऑब्वियसली अभी तक

0: तो नहीं पता था, बट लेट्स अज्यूम माया। माया ने अपना अम्ब्रेला थोड़ा साइड किया और बोली, आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। रोहन मुस्कुराए और अम्ब्रेला छोटा है, दोनों आ जाएंगे, ये उन्होंने पूछा। माया हंसने लगी और बोली कि अम्ब्रेला छोटा है, दिल नहीं। क्या बात है। दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे बस स्टॉप तक वॉक करने लगे। सिर्फ 5 मिनट की वॉक थी, लेकिन उस 5 मिनट्स में उन्होंने अपनी फेवरेट मूवीज, फेवरेट फूड और लाइफ के बारे में इतनी बातें कर ली जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बस आई, माया चढ़ने लगी, फिर सडनली रुक कर बोली, आपका अम्ब्रेला तो मेरे पास ही रह गया। रोहन कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन अम्ब्रेला तो आपका था। माया स्माइल, एग्जैक्टली, अब कल मिलने का रीजन भी तो चाहिए। रोहन समझ गया। नेक्स्ट डे सेम टाइम सेम बस स्टॉप, रोहन एक अम्ब्रेला लेकर खड़ा था। बारिश नहीं हो रही थी, बट माया आई और बोली, आज तो रेन भी नहीं है। रोहन हंसा, स्माइल किया और कहा, पता है, बट अम्ब्रेला बारिश के लिए नहीं, आपसे मिलने के लिए लाया हूं। और शायद कभी कभी लव स्टोरी शुरू होने के लिए बारिश नहीं, बस एक छोटा सा एक्सक्यूज चाहिए होता है। वेल, जस्ट नोट यहां पे, वो दोनों अनजान नहीं थे, दे वर गिविंग एन आई साइट टू ईच अदर जहां पे वो काम करते हैं। सो इट वॉज ऑब्वियसली एक इनिशिएटिव कह सकते हैं, या फिर किस्मत का मौका, या व्हाटएवर यू कॉल इट। सो दैट इज हाउ द स्टोरी स्टार्टेड। ये एक्चुअली नोवेल है, मेरे एक फ्रेंड ने लिखी है, प्रकाश राम है, ऑफ कोर्स ही इज इन इंडिया, और उन्होंने मुझे ये कल सुनाई थी। सो आई थॉट व्हाई डोंट आई शेयर ओवर हियर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द होल बुक, दिस इज जस्ट अ टीजर कह सकते हैं आप, टीजर कह सकते हैं कि उनकी स्टोरी जो है वो कैसे शुरू हुई। आपको ये टीजर जो था कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पे। लंच
1: बॉक्स विद केतन। इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे हम।
3: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
4: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
3: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
4: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
3: बस इतना ही।
4: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटिफुल फर्नीचर विद 60 months इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
5: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो लकी विनर्स, हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, विजिट financeworld.co.nz/bali। फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
7: हे यू विद द इयर्स, योर स्किनी फोन प्लान नाउ हैज रिवॉर्ड्स, सो ऑल योर स्क्रॉलिंग, टैपिंग, बेब वेक अप, लुक एट दिस मीम, ha-ha reacts and thumbs up from dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 everyday rewards points. Skinny and everyday rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny. Happy, happy, happy,
8: oh. ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat and this seat And that's it.
9: James, this is a radio ad.
8: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more. So let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.

0: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: Lunchbox with Ketan.
2: Mujhe pasand hai ladka.
1: Hum. Lunchtime Rant Line.
3: लंच टाइम फ्रंट लाइन के सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे। कुछ ऐसी चीज हुई हो आपके साथ जो सचमुच आपको इरिटेट किया हो, या फिर एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर व्हिच मेक यू एन ऑफ। मेरे ग्रुप में एक बंदा है, वो हर चीज के लिए ऑफ ऑफ ही करता रहता है। सिंगिंग कर रहे हैं, ऑफ जा रही है। वो कोई दूसरी चीज हो रही है, वो भी ऑफ जा रही है। हर एक चीज ऑफ जा रही है, यही चीज वो कहता रहता है। आपके आपके है ग्रुप में ऐसा कोई जो हमेशा आपको यही बातें करता रहता है कि यार क्या है यार, मतलब वो खुश नहीं होता है कभी किसी चीज से? बताइए मुझे आप 5599 पे। मैं नाम नहीं बता सकता उसका, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। वो सुन रहा है मुझे, आई एम प्रीटी श्योर अगर वो सुन रहा है मुझे तो समझ ही चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट यस, बने रहिए। एक मैसेज आया है, मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूँ, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट अनाउंस वन थिंग, वन काफी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानने का हक है, और वो है आप फोन रेडी रखिए और इस ड्रॉ में शामिल होने के लिए भी। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, आप जीत सकते हैं 5000 वर्थ के प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। पहला कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से पहले मैं बता देता हूँ दैट ड्रॉ विल हैपन ऑन 30th October, फ्राइडे 2026, इस साल और इसी महीने के एंड में। तो उससे पहले आपको ये सारे जो ट्राई हैं, जब जब आप सुनते हैं तब तक मुझे मैसेज करना है। सो यस, पहला ड्रॉ के लिए आप मुझे HL लिखिए, स्पेस लिखिए और अपना नाम मुझे भेज दीजिए 5599 पे। जी हाँ, HL बोले तो हैरिंगटन लिविंग, हैरिंगटन लिविंग का इनिशियल है HL, और मुझे स्पेस के साथ अपने नाम और भेज दीजिए 5599 पे ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सके। और इस ड्रॉ के जरिए आप जीत सकते हैं 100 नहीं यार उससे भी ज्यादा है, 1000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग होम डेको और फर्नीचर वाउचर। जी हाँ, एक विनर होगा। हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ स्प्रिंग सेल इज ऑन नाउ। Beautiful furniture with 60 month interest free भी है वहाँ पे। Terms and condition do apply, but yes do visit मनुकाओ वाले ब्रांच में Harrington Living। तो ये तो था एक पहला competition, तो शुरू हो जाइए, फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए HL, HL, HE या HP या HC मत लिखिएगा। H बोले तो Harrington and L बोले तो Living। दूसरा competition, text me NZPMI, New Zealand, P for Parrot, M for Mumbai, I for India, space अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज दीजिए। जी हाँ, इसके साथ ही आप भी $1000 worth of Mitre 10 vouchers जीत सकते हैं एक विनर को। Unlock your properties through sale value with NZPMI और अपने लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट से फ्री साइट असेसमेंट भी करवा सकते हैं। विजिट उनकी वेबसाइट NZP, पी और बी में कंफ्यूज मत होना, पी इज फॉर पैरट। ओके, सो nzpmi.co.nz इज द वेबसाइट जहां पे आप विजिट करके और भी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, या फिर उन्हें कॉल कर दीजिए 0800-4NZPMI। सो NZPMI लिखिए, स्पेस लिखिए और मुझे 5599 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिए। विजिट हम .roa.nz for terms and condition। And yes, ये competition जो है 5 मिनट के लिए ही होगा, यानी कि अगर आप मुझे 10 मिनट बाद बोल रहे हो तो ये एंट्री में नहीं होगा। सो whatever is doing, you need to text me within 5 minutes। But yes, लंच टाइम रेंट लाइन के लिए ये रहे मैसेज जो मैं पढ़ने वाला हूँ। रोहित भाई कहते हैं मैंग्रे से ये भेज रहे मुझे, माय रेंट इज अबाउट पीपल हु कॉल यू व्हेन यू आर बोर्ड एंड देन स्पेंड द होल कन्वर्सेशन कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ। आई डोंट माइंड लिसनिंग टू फ्रेंड्स बट समटाइम्स यू आर टॉकिंग फॉर एन आवर एंड दे हैवंट आस्क्ड यू अ सिंगल क्वेश्चन। काफी रिलेटेबल लगता है ये, काफी रिलेटेबल लगता है। बट आजकल मैं बोलने लग गया हूँ, लेकिन पहले ऐसा था कि भाई इसको मैं कैसे मना करूँ कैसे मना करूँ, बट आजकल मैं बोलने लग गया हूँ लाइक लिटरली इफ आई फील कि भाई बस कर, मैं बोला भाई तुमने फोन किया है सुन तो ले मेरी बात। ये हमारे ग्रुप में काफी होता है, लेकिन भाई मेरी भी कोई सुन लो ऐसा भी बोला जाता है।
1: लंच के मंच पे टॉप हिट of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. यहाँ पे और भी बातें करेंगे, आप बस बने रहिए, बिकॉज कंटेंट की कमी यहाँ पे नहीं होने वाली है. बट लेट मी जस्ट क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस वन गैस लीकेज कंटेंट जो है उस पर खबर आई है, उस पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं. लेट मी जस्ट ओपन द वेबसाइट. वेबसाइट इज़ ऑलरेडी ओपन ऑफकोर्स, और यहाँ पे हम डाल देते हैं. सो यस, गैस लीक कंटेंट आफ्टर बिल्डिंग इवैक्यूएट इन ऑकलैंड्स न्यू मार्केट. तो अगर आप कल न्यू मार्केट के वहाँ पे थे तो शायद आपको स्मेल आई होगी, और वो बेसिकली उसी वजह से थी. वेल, आज मॉर्निंग की बात है जब नियर बाय बिल्डिंग को प्रिकॉशंस के तौर पर इवैक्यूएट करना पड़ा. खैबर पास रोड के पास अर्थवर्क्स के दौरान गैस में डैमेज हो गई थी, जिसके बाद फायर और इमरजेंसी न्यूजीलैंड की टीम साइट पर पहुंची और खैबर पास को क्रॉहर्स्ट स्ट्रीट से ब्रॉडवे तक क्लोज कर दिया गया, और मोटरिस्ट को एरिया अवॉइड करने को भी कहा गया क्योंकि डिले वहाँ पे हो सकती थी. और फॉर्चुनेटली किसी को इंजरी नहीं हुई है, किसी को लगी नहीं है, चोट नहीं लगी है, विच इज़ ग्रेट. बट यस, गैस लाइन को रिपेयर करने का काम अभी चल रहा है. जैसे ही ख़त्म होता है या फिर जैसे ही अपडेट कुछ आता है वहाँ से, हम आपको ज़रूर बताएंगे. आप बस एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना ज़ालिमा, हर्षदीप कौर वर्जन.

0: परिवर्तन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and this seat, and that seat.
5: James, this is a radio ad.
4: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
6: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
7: Lunchbox with Ketan.
8: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
7: Iske piche. Lunch ke munch pe.
9: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए बात करते हैं अमेजिंग, वैसे यस, काफ़ी लोगों ने मुझे भेज दिए हैं मैसेज। एक और आपके लिए मस्त ऑफर लेके आया हूँ। दिवाली आने वाली है, सो एक बढ़िया मौका है आप सभी के पास एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर के लिए। इस दिवाली हमारे साथ आप इन्जॉय करिए PFSL, जी हाँ, सेटल एन एलिजिबल लोन फॉर $400,000 या फिर उससे ज़्यादा भी, एंड टेक होम $250 गिफ्ट कार्ड। बट उसके साथ एक ड्रॉ में भी शामिल होने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप जीत सकते हैं 50 इंच का टीवा, क्या बड़ा उसका क्या सिनोनिम्स होगा। Anyways, 50 इंच का टीवी भी आप जीत सकते हैं ड्रॉ में शामिल होने के बाद। सो यस, मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद PFSL दिस दिवाली। आप सर्च कर सकते हैं PFSL या फिर उन्हें कॉल करिए 09846-9934 पे। टर्म्स एंड कंडीशन डू अप्लाई एंड लेंडिंग क्राइटेरिया एज वेल।
7: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4 NZPMI।

0: got the heck.
1: Lunchbox with Kaitan.
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
3: वेलकम बैक. वेल यहाँ पे फटाफट से बॉलीवुड की बात कर लेते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने रिसेंट इनकम टैक्स सर्चेस को लेकर अपनी साइलेंस जो है उसे तोड़ा है. उन्होंने क्लियरली डिनाई किया है कि वो इलीगल फॉरेन रेमिटेंसेस या किसी फाइनेंशियल इररेगुलरिटी में इन्वॉल्व हैं. वैसे रकुल का कहना है कि जो इनकम टैक्स सर्च हुई थी वो उनसे रिलेटेड नहीं थी और वो 20 साल की एज से अपने टैक्सेस रेगुलरली पे कर रही हैं. उन्होंने ये भी डिनाई किया है कि उनके पास किसी और के काम की बेनामी प्रॉपर्टी है. इसको भी डिनाई किया उन्होंने. बट साथ में मीडिया से इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स को रिट्रैक्ट करने की भी अपील की है. एंड ऑब्वियसली शी वॉज बिट शी लुक्स बिट सैड. मैंने अभी जस्ट स्टोरी देखी है कि विदाउट फाइंडिंग इट आउट योर सेल्फ आप इजीली किसी भी खबर से मान लेते हैं. किसी ने कुछ भी कहा है आप इतना इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और जजमेंट पास करना शुरू कर लेते हैं. दैट्स व्हाट शी हैज़ रिटन ओवर देयर. सो यू कैन एक्चुअली डेफिनेटली गो ऑन हर प्रोफाइल एंड यू कैन चेक आउट व्हाट स्टोरी शी हैज़ पोस्टेड. रकुल प्रीत सिंह, नॉट सो ग्रेट यार. ये पता नहीं क्यों आजकल बहुत ही ज़्यादा होते जा रहा है दैट यू स्टार्टेड बिलीविंग रादर दैन फाइंडिंग इट आउट कि भाई क्या एग्जैक्टली खबर है. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू थिंक?

0: लंच के मंच पे
1: तू बेच दा गोलगा

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: जूझेगी।
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। क्यूरा नमस्ते। वैसे बने रहिए अंटिल थ्री, उसके बाद सैंडी जुड़ जाएगी फॉर द कॉफी ब्रेक एंड उसके बाद रुज भी उनका साथ देंगे द ड्राइव शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, और लेकिन ये शुरुआत करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गाने से, सटकली सटकली सुखविंदर सिंह। बने रहिए बिकॉज एक और मौका देने वाला हूँ आप सभी को, अगर इन केस अगर आपने मिस आउट किया है लास्ट आर जहाँ पे आपको कॉम्पिटिशन पार्ट लेके दिवाली के इस सुनहरे मौके में अपने आप की किस्मत जो है आजमानी है, तो वो फिर से मौका देने वाला हूँ इस आर में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए। स्पोर्ट्स की खबर भी लेके आऊंगा बट यस, कॉम्पिटिशन का भरमार है मेरे पास।
2: बचाओ क्या,

0: वेदर एंड I'm assuming कि आप भी enjoy करेंगे वेदर. वैसे ये वेदर से याद आया, कुछ पॉडकास्ट हमने आपके वेदर को और भी चार चांद लगाने के लिए रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सीजन चल रहा है इलेक्शन का. आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट कौन क्या बताता है, कौन क्या करने वाला है, जिसको हम वोट दे रहे हैं, आर दे गुड इनफ और नॉट. ये सारी बातें जानना आपका हक है और आपको ज़रूरी, आपकी ज़रूरी भी है. डजंट मैटर वेदर यू आर एलिजिबल राइट नाउ और नॉट, but you still should know because in future you will be eligible to vote and aapka vote bhi kaafi keemti hoga to for the growth of New Zealand. So yes, hamare beech Sunny Kaushal ji aaye the jo ki chairman and CEO India New Zealand Chamber of Commerce and Industry reh chuke hain, chairman ethnic business organization alliance ministry of ethnic communities, chairman dairy and business owner group inclusive, former chairman Ministerial Advisory Group Government of New Zealand 2024 से 2026 तक बोल रहे हैं. सो यस, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग हाउ द कीवी बिजनेसेस आर फेसिंग द प्रेशर और ऐसा क्यों हो रहा है, क्राइम कैसे बढ़ते जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स होगा उस पर. एंड उन्होंने इस बारे में बात की रिगार्डिंग द ऑफेंडर्स टू इमिग्रेशन, वर्क फोर्स शॉर्टेज, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ये सारी बातें की हैं. ये पॉडकास्ट ज़रूर आपको सुनना चाहिए. आप मुझे बस ड्राइव लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए ताकि लिंक आप तक पहुँच जाए. एंड यस, इफ़ यू आर फैन ऑफ बॉलीवुड, इफ़ यू आर फैन ऑफ शर्ली, आपको ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए अनफिल्टर्ड विद शर्ली सेठिया. सिंपल सी बात है, आप हमारे रो ऐप पे जाइए या फिर स्पॉटिफाई पे सर्च कर सकते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुज़बे, वहाँ पे आपको ये पॉडकास्ट मिल जाएगा. सो बेसिकली शर्ली ने शेयर किया है अबाउट हर स्ट्रगल, किस तरह से उन्होंने बींग एज अ आउटसाइडर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना थोड़ा अपना नाम बनाया है. एंड ऑफ कोर्स यू ऑल नो, लाइक मेनी पीपल नो हु शी इज फ्रॉम न्यूजीलैंड. सो यस, आप ये सुन सकते हैं, शी इज मल्टी टैलेंटेड, डांस भी कर लेती हैं, गाना भी गाती हैं, अमेजिंग. आप तो सुनोगे उसमें, और आपने आई थिंक नॉट द लास्ट फ्राइडे बट उससे पहले वाला फ्राइडे सुना भी था अगर आपने उन्हें लाइव सुना है तो. एंड यस, द सेम टाइम वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस एज वेल. काफ़ी वेब सीरीज भी आ चुकी है, शिल्पा शेट्टी के साथ मूवी भी आई है. वो गाना निकम्मा किया इस दिल ने, मेरे ख्याल से उसमें भी, उस फिल्म में भी है वो. सो यस, डेफिनेटली आपको वो सुनना चाहिए. आप उसके लिए सिंपल सा अनफिल्टर्ड विथ सैंडी न्यूज़ में सर्च करिए रोआ पे या फिर स्पॉटिफाई पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. एंड द लास्ट पॉडकास्ट विच आई वुड लाइक टू टेल ओवर हियर इज रिगार्डिंग द सोसाइटी, हाउ डू दे कैलकुलेट दैट हाउ सक्सेस यू आर, हाउ सक्सेसफुल यू आर और नॉट. इतने लोन्स होते हैं, खर्चे होते हैं, बहुत सारा बर्डन आ चुका है. तो बहुत ही बढ़िया और डीप थॉट के साथ बातें की है विजय पूजा ने, आप इसे डेफिनेटली सुनिए. बी एफ लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि वर्ड जो है सेटल्ड, आर यू सेटल्ड और नॉट, इसके बारे में पता पड़े आपको कि भाई सेटल्ड एक्चुअली किसे कहते हैं. लंच बॉक्स विद केतन. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे. ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुज़बे.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार,
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या. रुज़बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया आप लोग,
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुज़बे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Ruzbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
6: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology.

0: and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% Finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura Jegu. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
1: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. Logic Finance के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
2: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800-564-424.
3: ANZ is giving away Auckland FC tickets to fill this seat, and that's it.
4: James, this is a radio ad.
3: Oh, sorry. ANZ is giving away 5,000 free tickets to Auckland FC's first home game of the season. It's our way of thanking the fans and Aucklanders who've backed the club from day one. Now the champs are back for more, so let's give them the welcome home they deserve and pack the stands. Search ANZ Pack the Stands for more information on how to claim your free tickets. T's and C's apply.
5: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardo's is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
6: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
7: Kabhi bhi, kahin bhi. Lunchbox with Ketan.
8: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
7: Iske piche?
6: Hum.
7: Skip your replay.
9: वेलकम बैक. रिप्ले तो करेंगे ही, बिकॉज ये मैंने लास्ट आर में भी ऑफर दिया था और मैं फिर से ये ऑफर लेके आ चुका हूँ यहाँ पे. फेस्टिव ऑफ फॉर्च्यून, विन योर शेयर ऑफ $500,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस विद हम दस दिवाली. सो यू गाइस रेडी? ओके, चलिए पहला मौका बताता हूँ. फट से फोन हाथ में ले लीजिए और मुझे धर धर धर धर धर धर करके मैसेज भेजना शुरू कर देना. सो HL बोले तो हैरिंगटन लिविंग, आप HL लिखिए मुझे 5599 पे अपने नाम के साथ भेज दीजिए. मेक श्योर HL और आपके नाम के बीच में स्पेस हो, ऐसा नहीं हो चिपका के आप मुझे भेज दें. मुझे समझ में नहीं आया भाई HL आगे नाम स्पेलिंग क्या है वो. सो यस, आप HL लिखिए, हैरिंगटन लिविंग स्पेस अपने नाम और 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सके. एंड $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग होम डेको और फर्नीचर वाउचर ये आप जीत सकते हैं. कोई एक लकी विनर जीतेगा. हैरिंगटन लिविंग मनुकाओ स्प्रिंग सेल इज ऑन नाउ, आप जाइए उनकी ब्रांच में, मनुका में है ये, और एंजॉय करिए अमेजिंग से ऑफर वहाँ पे भी. प्लस ऑफ कोर्स इतने अमेजिंग वहाँ पे पीस आपको मिलेंगे जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. जस्ट सी इफ दैट एनी फर्नीचर कैन फिट इन योर हाउस मैचिंग के हिसाब से, कलर के हिसाब से. बट यस, ब्यूटीफुल फर्नीचर है विद 60 मंथ इंटरेस्ट फ्री एज वेल. सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं. एंड यस, एक दूसरा मौका भी मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे. वो है NZPMI. आप स्पेस लिखिए, अपना नाम लिखिए और मुझे भेज दीजिए 5599 पे, बिकॉज इसके थ्रू भी आपको MITRE 10 की तरफ से MITRE 10 वाउचर आपको मिलेगा $1,000 का. जी हाँ, NZPMI की तरफ से ये है. सो अनलॉक योर प्रॉपर्टी ट्रू सेल वैल्यू विथ NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट. आप उनकी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं nzpmi.co.nz, या फिर उन्हें कॉल करिए 0800-4-NZPMI, 0800-4-NZPMI. आप वैसे हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं hum.roa.nz और वहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं. बट यस, कंपटीशन जो है वो 30 तारीख को डिस्क्लोज होगा, यानी कि ड्रॉ विल हैपन ऑन 30th of October, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही हैं जब से मैंने अनाउंस किया है ये कंपटीशन. सो डोंट वेट अंटिल 10 मिनट बाद, बिकॉज दैट विल नॉट बी कंसिडर एज यू हैव टेकन अ पार्ट इन द कॉम्पिटिशन.
7: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मैंने एक सवाल भी किया था आपसे थोड़ी देर पहले कि जो हिप्पो होता है उसको पसीना आता है वो कौन से कलर का होता है, एंड जवाब में मुझे मिला है सो करेक्ट। मुझे पहले लगता कि उसकी स्किन शायद सन में आके ऐसी हो जाती होगी, बट नहीं भाई, वो पसीना होता है। बेसिकली उनका पसीने का जो कलर है वो पिंक होता है, पिंक कलर का पसीना होता है। बट यस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल जिन्होंने मैसेज भेजे हैं। रवि ने भेजा है, पूजा ने भेजा है, राखी ने भेजा है और कनिका ने भेजा है ये जवाब के साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेज जिन्होंने पार्ट लिया है उस कॉम्पिटिशन में। हम जल्दी, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बस बने रहिए, बिकॉज हर शो में आपको ये कभी भी अनाउंस हो सकता है, और जब भी अनाउंस हो आपको अपना लक ट्राई करना है बाय सेंडिंग अस द टेक्स्ट। एंड यस, एक मतलब फीजी के 1 बजे यानी कि यहाँ के 2 बजे करीबन एक मैच, नया मैच शुरू हो चुका है पूल बी का, तावेउनी वर्सेस साबु साबु। और अभी ठीक 1 मिनट पहले एक और मैच शुरू हुआ है जो है नावुआ वर्सेस नांदी। जी हाँ, नावुआ वर्सेस नांदी पुल भी, ये भी मैच शुरू हो चुका है HFC बैंक स्टेडियम। सो जैसे रिजल्ट आते हैं इसके भी हम आपको अपडेट करेंगे। यू जस्ट स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू आवर शो।

0: नाम से विलेन, काम से हीरो।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
9: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
1: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
8: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
4: इसके पीछे
1: हम Tech Talk.
11: चलिए टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। एक बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट आ रहे हैं। वैसे यस, एक ही महीना बचा है रिगार्डिंग GTA 6 की लॉन्चिंग का। वेल, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम? मैं पर्सनली हूँ। द ओनली वन थिंग इज दैट जिनके पास भी PS3 या PS4 है वो खेलना चाहते हैं, वो नहीं खेल पाएंगे। और जो लोग PC गेमर्स हैं उनको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इतना ईजीली आई डोंट थिंक सो दे विल बी डूइंग इट। बट अगर PC में आया, मैं कह रहा हूँ, मैं कितने का भी हुआ मैं खरीदूंगा। मैं बहुत ही बड़ा दीवाना हूँ इस गेम का। मैं लिटरली आई थिंक ऑब्वियसली सैन एंड्रियास से मैंने शुरू किया था, देन आई प्लेड वाइस सिटी एज वेल, एंड उसके बाद GTA 4 खेला, देन GTA 5 खेला, एंड नाउ इट इज GTA 6 विच आई एम फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड। द ओनली थिंग इज दैट आई नीड टू मेक श्योर दैट ईदर आई यूज SSD, सेपरेट SSD फॉर दिस गेम, क्योंकि बहुत ही बड़ी गेम है, लाइक लिटरली इतनी बड़ी। मैं अभी बस वही चेक कर रहा हूँ। प्री ओन भी ऑब्वियसली आ चुका है, काफ़ी लोगों ने, आपने अगर YouTube पे देखा होगा, काफ़ी लोगों ने इसे परचेज भी किया है। एज अ उन्होंने एक लिंक भी डाला, एक गेम का जो स्टार्टिंग का 10 मिनट या 20 मिनट ऐसा कुछ डाला था इन्होंने। बट काफ़ी वर्जन आने वाले हैं। गुड टाइम, स्टेट, वाइस सिटी, द एल्बम, GTA 6 एंड एक्सटेंडेड लुक ये भी है, और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे भी एक्सटेंडेड लुक जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। अगस्त में आया था ये। बट यस, मज़ा आने वाला है यार, लाइक लिटरली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आर यू? मुझे आप बताइए। 5599 पे I'll be looking for your messages over here.
1: Dil se dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Ευθύνη να μας κουντζέκει.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Well, that's all for today. बहुत ही बढ़िया आज की बातें, आज की कहानियां भी बहुत ही दमदार थी. आपने टेक्स्ट भेजे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड बस यस, कल भी आप बने रहिए, बिकॉज कल मैं कुछ मोटिवेशनल कहानी लेके आऊँगा, कुछ इंस्पिरेशनल वाली. यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है जो आपको यू नो गुड रिजल्ट नहीं दे रहा है, या फिर समथिंग एल्स जो आप एक नॉर्मल छोटे प्रोजेक्ट में भी आप करना चाहते हैं बट वो हो नहीं रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल यूट्यूबर्स या फिर चैनल्स को लेके काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, बट उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं. तो डेफिनेटली एक कहानी मैं सुनाऊंगा कल, और उस कहानी से होप कि आप थोड़े मोटिवेट हो और जो आप मेहनत जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहे, रादर देन थिंकिंग अबाउट रिजल्ट. मुझे कभी भी मेहनत वाली जो बात होती है ना, तो मुझे एक कहावत नहीं कहूंगा, एक काव्य हमेशा याद आता है जो मुझे बचपन से पापा ने सिखाया था. व्हेनेवर आई यूज्ड टू परफॉर्म इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, और मैं खुद जब कृष्ण भगवान बनता था ऑब्वियसली जस्ट इन अ फैंसी ड्रेस, तो वहाँ पे मैं ये हमेशा डायलॉग बोलता था, और इस डायलॉग की वजह से मैं जीतता भी था. वो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब ये कि कर्म जो है करते जा, फल की चिंता मत कर. तो इतनी डीप मीनिंग थी, और आज सचमुच मुझे लग रहा है कि पेशेंस जो है काफ़ी कम होते जा रहा है. तो ऐसी जो काव्य है वो फिर से दोहराने चाहिए अपनी लाइफ में फ्रॉम पेरेंट्स, और मुझे लगता है कि अब खुद हम पेरेंट्स बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं या फिर ऑब्वियसली इन फ्यूचर बनेंगे, तो हमें भी हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए दैट दिस इज़ व्हाट यू शुड बी फॉलोइंग. सो या आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप बस बने रहिए. सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक एंड आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड love you.

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: डिस्कवर द मैजिक एट गो बनाना स्टाइल केयर, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे इन अ फन वे विद मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस ऑकलैंड एंड हैमिल्टन। ये हमेशा आपके पास है। गो बनाना स्टाइल केयर 12th बर्थडे ऑफर, 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस। ऑफर एंड्स 30th सितंबर। लिमिटेड स्पेसेस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स। कॉल 0800 46 26 26 26 टुडे। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
4: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when you buy food,
5: noodles,
4: money loops back.
5: Noodles.
4: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: Crime Check.
1: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Helicopters with monsoon buckets are tackling a large vegetation fire on the lakeshore by Queenstown. Two are protecting the Walter Peak homestead while other aircraft are on their way. Crews are also being airlifted onto the fire zone, which is spreading rapidly up Mount Nicholas. Fire and Emergency says smoke is likely to reach the township. Origin Air will restart its Wellington to Westport flights in December. Managing Director Robert Inglis says new government funding allows them to run a service until at least April next year. He says Westport is a popular summer destination for many reasons.
3: To walk the tracks and cycle tracks and visiting friends and family. So it's good to be able to give people some certainty that they will have an air service there.
2: The average price for 91 petrol has reached $3.50 for the second time in 6 months. Gaspy Director Mike Newton says the recent increases have been slow-moving.
4: The price increase in a month back in March was about 38% for 91. Currently we've seen about 20% over a similar time frame since the start of September.
2: Dozens of people are reported to be in isolation after a Russian lab worker died of suspected pneumonic plague. Russia has not confirmed the exact cause of the death, and the US says it is closely monitoring the situation. To sport, the Kiwis Rugby League World Cup squad is named this evening. The opening game is Thursday week against the Aussies in Sydney. For Warriors fans, there are plenty of familiar faces in the Samoa and Tonga squads. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And the 2032 Brisbane Olympics emblem has been officially revealed after an embarrassing social media leak 3 days ago. The design is the crest of a pink cockatoo.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.2 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है.
0: The beat of Bollywood.
6: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
5: तीन बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके मेरा और आपका साथ 4 बजे तक है. 4 बजे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरे साथ, यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज ट्यूजडे. होप आपका डे मंगलमय जा रहा है. वैसे आज बाहर तो ऐसा पूरा गर्मी वाला माहौल लग रहा है. 18.2 डिग्रीज अराउंड ऐसा टेम्परेचर है, बट ऑब्वियसली फील्स लाइक मोर. एंड लेकिन आज ओवरनाइट में ठंड भी थोड़ा रहने ही वाली है. जब ऐसा धूप खिली रहती है तो शाम को रात को ठंड हो ही जाती है. सो कैसा आपका या पूरा पिछला हफ्ता भी गया? आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी लॉन्ग वीकेंड आने वाला है. फेस्टिवल्स भी अभी शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे भी हमने दिवाली के मौके पे जो कॉम्पिटिशन है वो शुरू कर दिया है. सो अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, यू कैन विन $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस यहाँ पे हम पे. एंड इसके लिए सुनते रहेगा, ये मौका आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है. 4 बजे के बाद एक्चुअली में मिलने वाला है. और इस कॉम्पिटिशन में क्या क्या है जो आप जीत सकते हैं, इसके बारे में मैं इसी आवर में आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ।

0: महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
1: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप overwhelmed हैं या emotions manage करने में struggle कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। Asian Family Services आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
3: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
2: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
1: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI. Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2. 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Her eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider. Right.

0: इस कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं, 3:16 हो चुके हैं और मुझे लगता है आई वाज थिंकिंग यू नो कि मुझे जाके अभी एक कॉफी बना लेनी चाहिए एंड आई नीड दैट केक. इट्स टिपिकल ट्यूजडे बट देन आई गॉट सम एनर्जी इन द स्टूडियो. Hi Arzu. How are you?
1: I'm honored by the way. It's the intro jo diya aapne. I'm good. How are you?
0: Good, good. Tumhara weekend kaisa tha?
1: Mera weekend bahut acha raha. Yeah.
0: Main listeners se ek sawal puchna chahti hu. 0800 00 hum is a number. Call kijiye. Jab aapne गैस पे स्टोव पे कुछ रखा है ठीक है और आपको कभी चेक करना है कि वो कितना गर्म हुआ है कैसे हुआ है मतलब कुछ ऐसे टेम्परेचर उसका चेक करना है इट्स ऑन द गैस जलते हुए गैस के ऊपर आप कैसे चेक करते हैं 0800 00 हम पर या मैसेज करके बताओ बिकॉज आरजू इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ चेकिंग इट और आवाज भी आई उसकी क्या वे है तुम्हारा आरजू चेक करने का हाँ पैन या कुछ पड़ा हो गैस के ऊपर व्हाट इज योर वे ऑफ चेकिंग इज इट हॉट इनफ
1: हाँ सो I usually like touch the pan
0: oh
1: or this time I didn't realize it's a different one it's like a big one oh I don't know what's it called karai you know what's karai
0: huh
1: wo style I've never used that for cooking so my sister brought it from Nepal so itna bada tha and I was like oh I'll cook in that
0: और कढ़ाई को तो ऐसे चेक नहीं कर सकते मैं तवा जो होता है उसको मैं फिर भी मान लेती हूँ तवा थोड़ा
1: क्योंकि मोटा होता है ना तवा आज तवा में यूजुअली
0: तवा
1: नहीं बट दिस वन कढ़ाई फॉर द फर्स्ट टाइम
0: क्योंकि तवा पे थोड़ा सा टच करके देखो तो नहीं इतना होता है
1: इट्स यूजुअली जस्ट वार्म एंड देन ठीक है बट दिस वन सो आई पुट माय फिंगर्स 3 fingers एंड इट वेंट एंड आई वाज लाइक ओ
0: तो भाई आवाज आई
1: मेरी फिंगर्स की
0: चलने की आवाज आई है
1: Huh, so right now it looks like I've got Fevicol on my fingers. But yeah. No blisters and stuff, but it's okay.
0: Maybe wo baad mein aayenge.
1: Oh. I hope not.
0: Make you feel better. So yeah, aap bhi bataiye kabhi aapke sath aisa koi hadsa hua hai. You know, kitchen mein to bahut hadse hote hai. It's very common, yeah. All these kind of hadsa in the...
1: But maine toothpaste, I put it immediately. So I know that it was
0: toothpaste
1: fine.
0: Toothpaste lagaya tumne?
1: Haan, aapko bhi... आपने वो सिखाया लाइक बचपन में अब अस फैमिली में लाइक इफ समवन ईदर आइस या फिर लाइक

0: toothpaste, and then we let it dry on our fingers, like jalatena, like with pan or anything hot stuff or like hot water, then you put toothpaste on it. That's what we do.
1: Okay, immediate wo kar sakte hain.
0: First aid vibes.
1: First aid vibes, yeah.
0: And it actually works. That's why I think maine blister kuch bhi nahi hai meri fingers mein abhi.
1: Actually main. Yeah.
0: Anyone else? Kaun toothpaste lagate hai?
1: Toothpaste ya phir kisi aur ke paas koi aur tip hai jo aap safely apne ghar pe matlab not वैसे तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए कुछ ऐसा होता है तो, but then अगर आपको quickly कुछ करना हो तो और क्या आपका नुस्खा है इसके लिए, ऐसा कोई देसी टिप आपके पास है?
0: देसी टिप, yeah.
1: Yeah. शेयर कीजिए यहाँ पे 0800 000 हम पर, सो दैट क्योंकि ये तो हटेगी नहीं, दोबारा चेक करेगी तो नेक्स्ट टाइम ये क्या कर सकती है वो भी अभी अभी शेयर कर सकते हैं. यू कैन टेक्स्ट एज वेल. या सो आरजू इज स्टिल हियर, उसे और बात करेंगे. रुक के
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड गुंडी घर जाओ या सीधा अंदर आओ मैं लाऊं अपना ए गेम. ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 3:29 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक आप सुन रहे हैं एंड यस आरजू इज स्टिल इन द स्टूडियो. यस आरजू. एंड आरजू अगर तुम्हें कोई बोले कि आई हैव सम न्यूज, डू यू फ्रीक आउट, डू यू गेट एक्साइटेड और डू यू गेट वरीड?
1: आई गेट एक्साइटेड.
0: यू गेट एक्साइटेड?
1: इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. जब बॉस लोग आई हैव न्यूज बोलते हैं, I'm like, अरे हु इज लीविंग और हु एम आई गेटिंग फायर्ड. बट इफ इट्स समवन क्लोज लाइक आप, देन आई गेट एक्साइटेड. अरे आपकी शादी होने वाली है.
0: But I have some news. Okay. यहाँ पे our listeners can win $5,000 worth of prizes.
1: Oh my God.
0: Yeah.
1: Wow.
0: अब बताओ ये better है कि नहीं है?
1: हाँ, better. Yeah.
0: And $1,000 के बहुत सारे prizes हैं. So मैं थोड़ा breakdown बताने वाली हूँ.
1: Okay.
0: Just gonna prep you for your जब भी तुम्हारा weekend
1: और मेरी दूसरा number से I'll try to win prizes.
0: Yeah. You can try. So, बहुत सारे prizes हैं यहाँ पे. आज drive show में मौका मिलने वाला है to win $1,000 worth of New World के voucher. New World में जाके तुम $1,000 की grocery कर सकते हो.
1: How much
0: grocery can you have?
1: हाँ, so party मेरी घर में. हाँ,
0: मतलब अगर एक हफ्ते की तुम्हारी grocery में कितना लगता है?
1: एक like 120.
0: 120 रखते हैं, राइट? तो तुम्हारे बेसिकली 10 हफ्तों की,
1: ओह माय गॉड,
0: 9 वीक्स लगा लो. चलो 9 वीक्स की तुम्हारी ग्रोसरी हो गई.
1: ओह माय गॉड, वाओ.
0: तो कितने महीने हो गए? 9 वीक्स मतलब 2 महीने,
1: 2.5 कैसे जीतना है? हाउ डू आई विन दिस?
0: या ये मैं बताऊंगी 4 बजे के बाद.
1: ओह माय गॉड, सस्पेंस.
0: या $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर. और मैं लिसनर से जानना चाहती हूँ, उससे पहले कॉल करके या फिर मैसेज करके बताओ कि आपका हफ्ते में ग्रोसरी के ऊपर कितना खर्चा होता है.
1: फैमिली होते तो मोर, राइट?
0: या फैमिली होता है तो ज्यादा होता है, इंडिविजुअल है मोर है, फ्रेंड्स है तो अलग सिस्टम होता है थोड़ा. आपका एक हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते का ग्रोसरी का खर्चा कितना है? एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट असेंशियल, नॉन असेंशियल, बिकॉज जब आप ग्रोसरी करने जाते हो यू पिक एवरीथिंग.
1: हाँ,
0: असेंशियल भी नॉन असेंशियल भी. सो टेक्स्ट 1599 सो वी हैव एन आइडिया कि आपका कितना लगता है, तो बताइए वहाँ पे. एंड ऑल्सो आज एक और चांस मिलने वाला है 5 बजे के बाद एक और ड्रॉ में शामिल होने के लिए. यू कैन विन $1,000 कैश.
1: ओ माई गॉड, मुझे दोनों
0: कैश. सो ये जो कैश है, सो ये आप
1: दिवाली के लिए नई कपड़े,
0: एनीथिंग यू वांट टू डू
1: दिवाली में, मे बी फ्लाइट टिकट्स, यू कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया, आपकी फैमिली वहां पे हो तो.
0: अगर तुम्हें $1,000 मिलते आरजू, व्हाट विल यू डू? मतलब वुड यू सेव इट और वुड यू जस्ट स्पेंड इट ऑन समथिंग?
1: सो मैं आई वुड सेव $200. मेरी सेविंग में रखती हूँ, ट्रैवल वाली सेविंग में. 100 भी डाल देती हूँ फ्यूचर वाली सेविंग में. एंड 200 को मैं खाऊंगी ट्रीट उधर.
0: 200 का तुम खाई लोगी?
1: हाँ, खाई लोगी. एंड कितना बचा? 500. 500 की मैं शॉपिंग करूँगी. हाँ,
0: 200
1: प्राइस टैग बिना देख कर मजा कुछ और होगा.
0: नाइस. सो 1,000 में तुम सिर्फ 200 सेव करोगे, बाकी सब
1: 300 ट्रैवल, 100. हाँ, आप
0: गुड क्वेश्चन
1: दिलजीत दोसांझ के टिकट्स
0: या मे बी ओवरसीज के टिकट खरीद लूंगी. नहीं कि नहीं नहीं इतना नहीं. मेरे को लगता है $1,000 में ना मैं कहीं की ट्रैवल की टिकट ही लूंगी. मुझे ऐसा लगता है. या आई विल ट्रैवल समवेयर.
1: या That's so good.
0: Yeah, I will do that. What about you guys? आप क्या करेंगे? आप भी यहाँ पे बताइएगा. और ये आपको चांस आज ड्राइव शो पे मिलने वाला है टू एंटर इन द ड्रॉ टू विन न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स. ये तो बहुत ही सही है. एंड ये जो फेस्टिव टाइम होता है वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान होता है, बाय द वे.
1: दिवाली
0: सब चीज़ें बहुत सही होता है वहाँ पे. मेरा फेवरेट वो भी है, वो मिलता है ना वहाँ पे एप्पल पाई. नहीं, क्या होता है वो, एप्पल पाई नहीं कहते उसको, उसकी बेकरी सेक्शन में न्यू वर्ल्ड की. There's something else. Something उसके अंदर apple की guys filling होती है. Help me out someone.
1: apple
0: की filling होती है वो. And it's not pie. वो triangle like, से हाँ triangle
1: samosa,
0: से shape
1: apple
0: में.
1: Apple samosa.
0: Not samosa यार. वो triangle की shape में होता है, बड़ा सा croissant type होता है, लेकिन not croissant.
1: ये क्या है?
0: It's different. I मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका.
1: वो आप
0: और किसी को लगता है पता भी नहीं है नाम.
1: या आपको फोटो अपलोड करनी है हम के इंस्टा में.
0: मेरे को भी लगता है, खैर मैं ढूंढती हूँ. तो या ये सब कुछ आप यहाँ पे जी सकते हैं, बट यू हैव टू लिसन. यहाँ पे सुनते रहेगा, यू विल हैव अ चांस. एंड गुड थिंग इज कि जितनी मर्जी एंट्रीज भेजो, आप 10 entries, 20 entries, नो लिमिट एट ऑल. जितनी मर्जी एंट्री भेजो लेकिन स्टैंडर्ड करियर रेट सप्लाई, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट कोड नंबर.
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं. हाँ.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
3: T's and C's apply.
4: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Visit your local Flooring Extra showroom and shop the wool sale today.

0: 19 मिनट बाकी है 4 बजने में और एक फिटनेस ऐप है जिसका डाटा एक्सपोज हुआ है. सरप्राइजिंगली सिक्योरिटी रिस्क जो है इज कमिंग फ्रॉम समथिंग मैनी पीपल यूज एवरी डे. एक फिटनेस ऐप जिसका नाम है स्ट्रावा. सो ये जो स्ट्रावा है इसमें काफ़ी यूज़र्स लॉग इन करते हैं, अपना डाटा वहाँ पे सेव करते हैं. सो इन्वेस्टिगेशन ने पाया है कि 565 स्ट्रावा यूज़र्स दे हैड लॉग्ड एक्टिविटी एट न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स कैंप एंड बेस सिंस जैन. उसमें से 488 प्रोफाइल्स वर पब्लिक जहाँ पे उनकी जो एक्टिविटी हिस्ट्री है उसको व्यू कर सकते हैं. द कंसर्न इज नॉट कि समवन इज गोइंग फॉर अ रन ऑन अ मिलिट्री बेस. So when you combine names, locations, timestamp, photos and repeated workouts, तो आप एक pattern अपना build करते हैं online, pattern of life आप वहाँ पर अपना build कर देते हैं, potentially showing someone कि आप कैसे काम करते हैं, travel, train, even when they may be connected to. So ये सारी चीज़ें जो आपका pattern है ये online हो जाता है, जो everyday का आपका pattern है. इन्वेस्टिगेशन ने पाया है कि जो एक्टिविटी लिंक टू NZDF साइट्स है इन 13 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, देन US, जापान, साउथ कोरिया, UK, इजिप्ट एंड एंटार्क्टिका. सम पोस्ट ऑल्सो रिवील की मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ओवरसीज डिप्लॉयमेंट्स. सो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फॉर्मेशन कुड पोटेंशली बी वैल्यूएबल टू फॉरन इंटेलिजेंस सर्विसेज. NZDF हैज प्रीवियसली वॉर्न की अबाउट फिटनेस ट्रैकिंग रिस्क के बारे में, but doesn't currently have a specific policy जिसमें it can cover Strava or other fitness tracking apps. And कई बार क्या हो जाता है ना कि हमारे लिए बहुत easy हो जाता है fitness apps को use करना to track कि हम कितनी running कर रहे हैं, heart beat कितना है, वो सारी चीज़ें, मतलब each and everything track करना बड़ा easy convenient हो जाता है, कितने steps हमारे हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें. But then अगर कुछ ऐसा रिस्क कहीं पे आता है देन ऑफकोर्स हमारा डाटा जो है, पैटर्न ऑफ लाइफ जो है, ये 100% कहीं पे जा रहा है. सो डू यू डू दिस? मुझे लगता है कि 90% लोग तो करते होंगे फिटनेस ऐप के ज़रिए, you know, अपना डाटा जो है आप अपडेट करते होंगे. मतलब मैनी पीपल दे रिलाई ऑन देयर स्टेप्स ऑन द फिटनेस ऐप्स. सो व्हाट समथिंग योर फोन और ऐप नोज अबाउट यू दैट यू वुड रैदर इट डिडेंट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने किसी ने अगर बात की किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, एक कैंपेन के बारे में, नेक्स्ट मिनट मैं क्या देखूंगी कि वो कैंपेन की एड मेरे उस पर आ रही है, एल्गो में आ रहा है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक कुछ भी स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरे को वो एड वहाँ पे दिखाई देती है. आपके ऐप में ऐसा क्या है, आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जो आपको लगता है, जो आपको कभी कभी थोड़ा ऐसा डराता है कि यार ये क्या स्केरी चीज़ है, कि यू नो इट्स बेसिकली ट्रैकिंग एवरीथिंग. फॉर मी इट इज़ दिस थिंग कि जिसके बारे में बात होती है वही चीज़ बाद में मुझे उसमें दिखनी शुरू हो जाती है. मेरी फ्रेंड ने एक लिंक भेजा मुझे आज और उसके बाद मुझे उसी की एड्स दिखाई दे रही है एवरीवेयर. सो इट्स काइंड ऑफ वो चीज़ जो है जो मुझे थोड़ा स्केरी लगता है. व्हाट अबाउट यू? आपके लिए स्केरी पॉइंट क्या होता है एंड डू यू यूज़ द फिटनेस ऐप? ये भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं.
1: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 18.2 डिग्रीज है और आज को वो नाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम पूरा हफ्ता फाइन रहने वाला है अंटिल संडे. सनसेट आज का 7:30 पर.
2: The Drive Show with Sandy and Ruzbain, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Ruzbain.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
1: चार बज के 3 मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. आपके लिए ड्राइव शो यहाँ पे शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ एंड रुजवे थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज़ इट गोइंग सो फार? शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. एंड ड्राइव शो में आपको मौका मिल रहा है फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में पार्टिसिपेट करने के लिए. वेल, अपनी किस्मत आप आजमा सकते हैं. यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइसेस दिस दिवाली. एंड हम एक ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपको इतने वर्थ ऑफ डायरेक्ट प्राइजेस जो है जीतने का यहाँ पे मौका दे रहा है. जैसे कि अभी इस आवर में जो आपको चांस मिलने वाला है वो है $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के वाउचर जीतने का. सो ग्रॉसरी आपकी 2 महीने की, तो मतलब तकरीबन 2 महीने की ग्रॉसरी इसमें आपकी सॉर्टेड हो जाएगी. एंड इसके एंट्रीज कैसे भेजनी है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में. बट उससे पहले आपको बताती हूँ कि दिवाली यहाँ पे है जो आपके लिए जॉय एंड एक्साइटिंग ऑफर्स भी लेके आती है. यू कैन सेलिब्रेट दिस दिवाली विद अ स्पेशल ऑफर फ्रॉम PFSL. PFSL ये सेटल करते हैं एलिजिबल लोन ऑफ $400,000 और मोर एंड टेक होम अ $250 गिफ्ट कार्ड. सो इनके थ्रू अगर आप एलिजिबल लोन सेटल करते हैं तो आपको ये गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा साथ में. प्लस यू विल गो इन द ड्रॉ टू विन 50-inch टीवी. सो यू कैन एक्चुअली मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी PFSL के साथ दिस दिवाली. सो इनके बारे में अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल में सर्च कीजिए PFSL, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी. और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, इट्स 09846-9934. इट्स 09846-9934. टर्म्स एंड कंडीशंस एंड लैंडिंग क्राइटेरियाज जो है दे डू अप्लाई.

0: अरिजीत सिंह, निकिता गांधी की आवाज, ड्राइव शो में सुपर से ऊपर ये शो जारी है आपके लिए अभी।
1: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे।
0: 6 अक्टूबर है आज का दिन। आज बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी यार। व्हाट अ ब्राइट सनी डे सैंडी आज।
2: या गर्मी वाली फीलिंग हुई ना आज।
0: फुल गर्मी वाली फीलिंग आ रही है आज।
2: लेकिन आज रात को विल बी 7 डिग्रीज।
0: ओ 7 डिग्रीज है आज रात को फिर।
2: यार
0: ये वेदर ना बहुत भयानक वेदर होता है बीमार होने के लिए।
2: 100% या बिकॉज आप कई बार डे के हिसाब से कपड़े पहन के निकलते हो।
0: एंड दिस इज द वर्स्ट टाइम टू फॉल सिक आई वुड से।
2: Yeah.
0: Don't you think so?
2: I think so.
0: Yeah, क्योंकि यार इतना मस्त ब्राइट ब्यूटीफुल डे, ऐसा मन करता है आइसक्रीम खाए थोड़ा आज।
2: And also festivities starting as well.
0: ना मिठाई खाने का मन होता है, क्या क्या करने का। और उसमें अगर आप बीमार पड़ गए
2: तो गए। वेल ये सारी बातें करेंगे। वैसे बॉलीवुड में भी बहुत कुछ हो रहा है रुसबे।
0: क्या हो रहा है बॉलीवुड में यार?
2: संजय दत्त इज लाइक क्लैरिफाइंग।
0: क्या हो रहा है वो संजय दत्त वाला? मेरे को आइडिया नहीं है, किसी को है क्या आइडिया इस चीज के बारे में?
2: Apparently, वो शेखर सुमन का जो शो है
0: उसमें संजय दत्त आया था।
2: उसमें संजय दत्त गया था, वहाँ पे कुछ बवाल हुआ।
0: क्या बवाल हुआ वो यार?
2: नहीं वो मुझे, मैंने उसका एपिसोड नहीं देखा है,
0: सुमन का शो
2: लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन ही देखी है हर जगह पे। अभी उसकी वीडियो है संजय दत्त की जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रहा है कि देयर इज अ स्क्रिप्ट हमें फॉलो करनी होती है कुछ शोज में जाके। मैंने वो स्क्रिप्ट किया था, वो मेरा थॉट नहीं था। उसे पोस्ट भी किया कि आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट वाज नेवर माय इंटेंशन टू हर्ट ऑफेंड और डिसरिस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन। मैंने एपिसोड नहीं देखा है। एनीवन हु हैज सीन द एपिसोड, अगर वो रेडियो पे बताने वाली बात है तो प्लीज बताओ।
0: बाबा तो डर के रह रहे हैं क्योंकि बाबा बोलते हैं मैं पहले जा चुका हूँ।
2: वो ही ना, वो बोले कि यार मेरे साथ बहुत होता है, मैंने नहीं है। किया उसे लिखा ये स्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन था।
0: ओह माय गॉड।
2: एंड उसके पीछे स्पिरिट ह्यूमर एंड सैटायर थी, तो इसको इन फिल्म्स लाइक मुन्ना भाई एग्जांपल दिए उन्होंने।
0: ऐसा नहीं होता। मुन्ना भाई कब आई थी?
2: And particularly the concept of Gandhigiri, which was intended to convey a message of love, warmth, togetherness, and goodwill. Oh, तो इसके ऊपर कुछ हुआ है।
0: Yeah.
2: Yeah. Anyway, क्या किया संजू बाबा ने?
0: बहुत बवाल चल रहे हैं अभी actually। काफी मेरे reels फिर से flooded हो गए इंडिया में। कुछ
2: और भी बवाल हुआ है?
0: हाँ यार कुछ चल रहा है। पहले कुछ minister को लेकर चल रहा था, अभी कोई ज्ञानेश कोई चल रहा है। मैं अभी
2: वो
0: मैं
2: तो protest वाला है ना, वो तो protest। मैं तो लगा बॉलीवुड में। बाय द वे मूवी भी एक आने वाली है
0: बॉलीवुड में।
2: हाँ, लव एंड वॉर, विच इज विकी कौशल, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट।
0: विकी कौशल, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट।
2: या
0: संजय लीला बंसाली कर रहे हैं।
2: संजय लीला बंसाली का प्रोजेक्ट है।
0: संजय लीला बंसाली इज बैक विद रणबीर कपूर। दैट्स
2: रणबीर कपूर एंड देन आलिया भट्ट भी काम कर चुकी है, बट विकी कौशल का पहला काम होगा ना ये।
0: बट संजय लीला बंसाली और रणबीर कपूर का तो खटका था ना
2: कभी,
0: सावरिया मूवी
2: विकी कौशल के रणबीर कपूर के साथ।
0: रणबीर कपूर और संजय लीला बंसाली।
2: ओके।
0: क्योंकि वो मूवी के बाद रणबीर कपूर ने बोला था ना कि संजय लीला बंसाली के साथ काम नहीं करूंगा मैं, उसका थोड़ा अलग स्टाइल है काम करने का।
2: अभी देखो उसी स्टाइल में जा रहे हैं वो।
0: काइंड ऑफ ऐसा कुछ बोला था उसने।
2: संजय लीला बंसाली का स्टाइल कभी चेंज नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली रणबीर कपूर ने चेंज किया है।
0: और वो क्यों हुआ है पता है ना आपको? क्योंकि आलिया भट्ट आ गई ना उसकी जिंदगी में। तो वो बोलता है अभी
2: चेंज्ड पर्सन है, मैं चेंज्ड पर्सन नाउ,
0: चेंज्ड इंसान हूं। बदल जाते मेरे को लग रहा है लोग। हां ना,
2: फॉर गुड,
0: फॉर बेटर, फॉर द बेस्ट।
2: या
0: वेल टॉकिंग अबाउट बदल जाते हैं लोग, दोस्ती के ऊपर ये गाना है जो मुझे लगता है
2: बदल जाते
0: दोस्ती भी बदल जाती है यार।
2: कितनी बार
0: बिकॉज एक रिलेशनशिप में आप जाने के बाद आपके दूसरे रिलेशनशिप जरूर अफेक्ट होते हैं काफी बार।
2: या यू बिकम मोर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स योर ओन फैमिली ना देन।
0: या व्हाटएवर यू कॉल इट।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
2: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना।
3: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs.

0: The 10-year Master Builder Guarantee. Awards pour in.
1: And award goes to Indelible Homes.
0: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर Gold.
8: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop, so you can fuel up without slowing your day down and still earn smiles points on every fill. Mobile Express, let's go.
9: Are you ready to go home?
10: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
11: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: 4:22 हो चुके हैं सुपर से ऊपर। फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं इलेक्शन स्पेशल में। वैसे इस थर्सडे भी हम किसी से बात करने वाले हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में आपको हम इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे कि थर्सडे हमारे साथ कौन शामिल होने वाला है। बट इससे पहले जो हमने वार्तालाप की है सनी कौशल के साथ, अगर आपने मिस आउट की है वो आप हमारे पॉडकास्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सनी कौशल जो कि चेयरमैन एंड CEO है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इनके साथ हमने बातें की अबाउट बिजनेसेस, राइजिंग क्राइम, वर्कफोर्स शॉर्टेजेस के बारे में, कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस के बारे में। अगर आपको ये चेक करना है ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपको एपिसोड मिल जाएगा।
13: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
14: गुंडी खड़ा जाओ या सीधा अंदर आओ,
15: मैं लाऊं अपना ए गेम।
11: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: जुबिन नौटियाल और सुवर्ण तिवारी की आवाज, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में आप सुन रहे थे अभी।
1: और आज 7 बजे डिबेट होने वाली है, डिबेट ऑफ द ईयर होने वाली है रुजबे। सो आज क्रिस्टोफर लक्सन एंड क्रिस हिपकिंस, दे विल फेस ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कैंपेन। एंड आज या इसके सब के बारे में बातें होने वाली। सो इलेक्शंस इज वीक्स अवे एंड जो पार्टीज है दे मेकिंग देयर पिच टू द वोटर्स, दे ऑलरेडी डूइंग द पॉलिसीज के बारे में बातें कर रहे हैं। नेशनल ने प्रॉमिस किया टू कट फॉरेन एड स्पेंडिंग टू बूस्ट फार्मर्स बजट एंड प्रोवाइड फ्री स्क्रीनिंग्स फॉर मल्टीपल कैंसर्स। और वहीं पर न्यूजीलैंड फर्स्ट लीडर जो है हैज डिस्क्राइब द मूव टू स्लैश फॉरेन एड स्पेंडिंग एज डेस्परेट एंड डेंजरस। सो या हर किसी के कमेंट्स वहाँ पर ज़रूर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी के जो लीडर है वोंग, उन्होंने रिवील किया है कि पोर्टफोलियोज, दे हैव रिवील्ड द पोर्टफोलियोज जो कि पोटेंशियल किंग मेकर पार्टी टारगेट कर सकती है। सो लेट्स सी, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग विद अपॉर्चुनिटी पार्टी एज वेल।
0: जी, ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा है उनके बारे में, मतलब थोड़ा बहुत जो दिख रहा है ठीक है, लेकिन लेट्स सी, वी विल ट्राई टू गेट देम ऑन एज वेल ऑन द रेडियो एंड वील ट्राई टू हैव अ चैट विद देम एंड आस्क देम कि एक्चुअली मैं व्हाट आर योर पॉलिसीज, व्हाट आर यू गाइस एक्चुअली स्टैंडिंग फॉर। इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अभी मूवमेंट दिख रहा है ग्रीन पार्टी में भी। ग्रीन पार्टी पहले इतना नहीं मेरे को दिखता था, इस साल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। सो या वी विल ट्राई टू गेट समवन फ्रॉम ग्रीन पार्टी एज वेल फॉर आवर शो। बट आज मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट डिबेट ऑफ दिस इलेक्शन सीजन लेबर और नेशनल के बीच।
1: लेबर और नेशनल के बीच क्रिस्टोफर लक्सन एंड क्रिस हिपकिंस के बीच में आज डिबेट, पहली डिबेट होने वाली है। 7 PM is the timing, by the way,
0: guys. This is what I like about elections over here. Yeah? Like, you know, there's this debates and all that happen. बहुत अच्छा है वो, मतलब सही है।
1: And बहुत अच्छे से conduct होती है वो debates. तो मैं actually मैं हर एक listener से ये बोलना चाहूँगी कि अगर 7 बजे आप free हैं, 7 बजे आपका काम नहीं है basically, तो आप ना आज कुछ और स्ट्रीम करने की जगह आज ये डिबेट देखिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दिस डिबेट कि जो अपनी अपनी पॉलिसीज के बारे में बात करने वाले हैं। फेस ऑफ एक्चुअली में होने वाला है, दिस कमिंग इलेक्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसकी क्या पिच है,
0: और एक ओपन माइंड के साथ मेरे को लगता है व्यू करना चाहिए वो चीज़ एंड व्यू इट एज योरसेल्फ कि खुद के लिए आपको क्या सही लग रहा है, खुद के हिसाब से आपको क्या गलत लग रहा है एज यू लिविंग इन दिस कंट्री फॉर नेक्स्ट 3 years 5 years जो भी है, यू नो लाइक गोइंग अहेड। सो वो चीज़
1: आपको क्या लग रहा है कि क्या तो ओपन माइंड के साथ लाइक जैसे कि रुजबे ने बोला, इस डिबेट को देखिएगा एंड यू सी वेयर इट गोज। सो मजा आएगा, कल शेयर करना,
0: कल इसके बारे में बात करेंगे,
1: कल बात करेंगे इसके बारे में।
0: वैसे आज ट्यूसडे है और आज एक स्पेशल सेगमेंट लेकर आते हैं आपके लिए, थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे।
2: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manukau, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे मतलब मंगलवार. मतलब यहाँ पे हम 5 बजे के बाद आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट,
0: कैरेक्टर गेस.
2: कैरेक्टर गेस में आज मेरा टर्न है. मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में हिंट्स दूंगा, 5 हिंट रहेंगे उसके, और 5 सवाल पूछने का मौका आपको मिलेगा जिसका आंसर मैं यस या नो में ही दे सकता हूँ. और आपको गेस करना है इस सब के बाद कि ये कौन से कैरेक्टर है.
3: या ये आपको बताना है यहाँ पे. सो इसके बारे में और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे. रुजबे नाउ फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून. यू कैन विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. नाउ वी हैव $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड के वाउचर.
2: ओह, न्यू वर्ल्ड के वाउचर्स हैं.
3: या $1,000 की ग्रोसरी बेसिकली आप कर सकते हो. आपको करना क्या है, आपको लॉजिक, बिकॉज दिस इज फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, एक हाउस होल्ड नेम है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. यू कैन कॉल देम ऑन 0800 लॉजिक जी. सो टेक्स्ट करना है लॉजिक LOGIC स्पेस अपना नाम और लिख के भेज डालिए 5599 पर. और आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. 439 है, चलो 40 लगाते हैं, ठीक है. 40 से लेके 45 तक का आपके पास समय है पार्टिसिपेट करने के लिए. $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं. काफ़ी लंबी ग्रॉसरी आपकी सॉर्टेड होगी, स्पेशली फॉर द फेस्टिवल सीजन, बिकॉज जो कुछ भी आता है वहाँ पे आप खरीद सकते हो ना.
2: एक वीक का ग्रोसरी बिल कितना होता है आपका?
3: आई शुड बी डिपेंड करता है वैसे कि सबके लिए खरीद रही हूँ, कितने के लिए खरीद रही हूँ. तो या
2: एवरेज
3: 150 लगा सकते हैं
2: ना, रफली.
3: या 150.
2: या मुझे भी वही लगता है एवरेज.
3: बिकॉज़ 100 and 200 के बीच में तो मैक्सिमम का रहता ही होगा. ऊपर भी जाता होगा, डिपेंड अपॉन द फैमिली साइज.
2: हाँ, फैमिली साइज के ऊपर ऑब्वियसली बहुत, क्योंकि हर हफ्ते, पता नहीं अभी कुछ हर हफ्ते भी करते होंगे आप. हर हफ्ते करते हो ग्रोसरी शॉपिंग?
3: या या
2: हर हफ्ते.
3: या बिकॉज वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट वो फ्रेश चाहिए होती है ना फिर. तो मोस्टली हर हफ्ते ही होती है. बाकी जो कुछ चीजें होती है वो कई बार ऐसे
2: बल्क वाली
3: बल्क में आती है, वो अलग होती है. बट या फ्यू थिंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नीड एवरी वीक.
2: एवरेज आउट करोगे तो उतना ही आएगा, 150 to 200
3: के बीच में आ ही जाएगा वैसे भी. सो आप बताइए आपको कितना लगता है. और बाय द वे एंट्री भेजना ना भूलेगा, लॉजिक स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599. यू आर इन द ड्रॉ टू विन $1,000 वर्थ ऑफ न्यू वर्ल्ड वाउचर. इस बार हम आपको स्पेसिफिक वाउचर्स दे रहे हैं जहाँ पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं. हम अपने जितने भी स्टोर्स हमने सेलेक्ट किए हैं ऐसे सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा सामान मिले इस बार.
2: जी, तो फटाफट आप यहाँ पे लॉजिक लिखकर भेजिए आपके नाम के साथ. बहुत मैसेजेस आ गए ऑलरेडी, बट आप भी भेजिए, डोंट डिले, बिकॉज ड्रॉ में $1,000 आपके नाम हो सकते हैं.
3: $1,000 वर्थ ऑफ दोज वाउचर्स आपके नाम हो सकते हैं.

ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Time check.
1: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 000010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
2: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. Firefighters are racing to protect the iconic Walter Peak homestead near Queenstown. Multiple helicopters with monsoon buckets are battling a large vegetation fire that is also spreading rapidly up Mount Nicholas. Winston Peters claims National's latest policy could take New Zealand back decades. The party wants to reduce foreign aid in order to fund more medicines and expand cancer screening. But the current Foreign Affairs Minister says slashing funding during global uncertainty is desperate and dangerous. Regional airlines continue to push for change to the way services to remote areas are handled. Origin Air is temporarily resuming Wellington to Westport flights thanks to grants from the Regional Infrastructure Fund. But Managing Director Robert Inglis thinks we should consider adopting the Australia model.
3: Where routes that government decides are essential, they are put out for tender on a 5-year contestable basis and then supported by the government to give those communities certainty of service.
2: A cable car project in Queenstown has landed $265 million of private lending. It now has the backing of the private capital group through the government's Golden Visa. Immigration Minister Erica Stanford says financing on such a large scale is a significant milestone. To sport, Game 1 of the Bledisloe Cup Series is 4 days away at Eden Park Fortress, with the All Blacks looking to make a statement after losing the series to South Africa. Lock Tupuvai is delighted to see former skipper and fellow lock Scott Barrett back in the picture. And to Rugby League with Machinery House in a league of their own, Knights superstar Kalen Ponga is set to make his debut for the Kiwis at this month's World Cup. The squads are announced at 6:30.
4: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: Weather ka hai aaj kaafi kamal, beautiful day in a super city, feels like 17 degrees, easterlies easing this evening, isolated showers ho sakte hai kuch kuch jagahon pe, 7:30 ko hoga sunset aur aaj ka overnight temperature as low as 7 degrees tonight. Kal ka din bhi bahut hi beautiful.
4: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku. Power Drive at 5.
0: Brought to you by Focus Kitchens, quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
7: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
6: 5:02 और आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. ड्राइव शो जा रही है आपके लिए सैंडी और रुस्बे के साथ. और आज ट्यूसडे, पहले तो गुड आफ्टरनून सैंडी, गुड इवनिंग.
8: गुड इवनिंग रुस्बे, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. हाउ आर यू?
6: I am great, yeah. How are
8: You're
6: you doing?
8: Great. I'm great.
6: You're also great. Kya baat
8: hai? I'm great as well. Exciting times because Diwali aane wali hai.
6: So Diwali is around the corner.
8: Diwali is around the corner, guys. Festival of Fortune hum yahan pe aapke liye leke aaye hain. Aur aapko abhi chance mil raha hai is competition mein enter karne ke liye. You can win $1,000 cash.
6: $1,000 cash.
8: Cash
6: mil raha hai. Cash yeah. chahiye, mujhe cash chahiye.
8: So imagine getting $1,000 cash. Arzu aayi thi coffee break pe, maine usse pucha ki tumhe agar $1,000 milte hain, tum kya karoge usme? उसने बोला कि 200 कुछ ऐसा सेव करूंगी, 100 किसी और में ऐसा लगाऊंगी, एंड देन बाकी मैं ट्रैवल करूंगी, फिर मैं खर्चा करूंगी, फिर मैं ये खरीदूंगी, फिर मैं ये खाऊंगी,
6: क्या क्या होगा भाई,
8: फिर ये खाऊंगी मैं. बट यू नो लाइक शी वाज, उसको पता है ना, शी इज वेरी कैलकुलेटिव, उसको पता है. वो अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट करती है उसका स्पेंड कहाँ कहाँ जाता है.
6: अच्छा.
8: एंड शी सेड कि मैं कुछ ऐसा खरीदूंगी प्राइस टैग देखे बिना.
6: उसको मालूम है ना कि $1,000 ही जीत रही है वो, मिलियन नहीं,
8: 100,000 नहीं जीत रही है. बढ़िया. सो या $1,000, बट आई विल स्टिल से कि $1,000 इज लॉट ऑफ मनी जहाँ पे आज के टाइम पे, बिकॉज $1,000 आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं. इट कैन कंट्रीब्यूट टू एनीथिंग.
6: आप किस में उड़ाओगे $1,000 अगर
8: ट्रैवल?
6: ट्रैवल नहीं, मेरे को स्पेसिफिक्स दो. $1,000 है आपके पास?
8: आई विल बाय, ओके, अगर मेरे पास $1,000 आते हैं तो आई विल बाय टिकट. ओवरसीज की टिकट नहीं होगी
6: ऑफ कोर्स. तो कौन सी टिकट भाई?
8: तो यहाँ पे कोई टिकट करके या उसका
6: कमरे नहीं, नहीं, नहीं, बट फिर बाद में वहाँ पे जाके तो उड़ाने पड़ेंगे ना खुद के पैसे.
8: ओ तुम ऐसा कह रहे हो कि
6: $1000 है आपके पास? अभी $1000 है आपके पास, अभी आप किधर उड़ाओगे?
8: और मुझे सिर्फ वो खर्चा ही करना है.
6: खर्चा ही करना है, वो सेव नहीं करना है, नहीं रखना नहीं है. और तब तक बता दो कि अगर हमारे लिसनर्स को जीतना है तो क्या कीवर्ड
8: है? अगर आपको जीतना है गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट. फॉर्च्यून, बिकॉज़ ये फॉर्च्यून है, FORTUNE, फॉर्च्यून स्पेस. अपना नाम लेके भेजिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा. फॉर्च्यून विथ होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिन. फॉर्च्यून जो है ये फ्यूल करती है एवरी विन, बिग और स्मॉल. सो ब्रिंग होम द फॉर्च्यून ब्रांड.
6: ब्रिंग होम द फॉर्च्यून,
8: या ये वो फॉर्च्यून है. या टर्म्स एंड कंडीशन इज कॉम्पिटिशन.
6: ये वही है ना जहाँ पे फॉर्च्यून का तेल आटा ये सब
8: आता है. या या या सो एंड सही है, उनकी ओर से आपको ये मिल रहा है $1000 कैश. सो टू एंटर इन दिस कॉम्पिटिशन, रिमेंबर अभी आपके पास 5 मिनट का समय है. 5:05 हो चुके हैं. चलो मैं 5-6 देती हूँ.
6: वो बोल रहे हैं वो, आप पहले बोलो अभी $1000 में क्या करने वाले हो आप.
8: हाँ मैं बताती हूँ, पहले 5-6 का मैं टाइम शुरू करती हूँ. 5:06 से लेके आपको 5:11 तक
6: जब भी खत्म करेंगे ना आपका बोलने का, उसके बाद से टाइमर चालू होगा. सैंडी
8: ये देखो टाइम दे रहा
6: है, इसलिए आपके पास टाइम है. आप बोलो $1000 आपके पास है, व्हाट आर यू गोना डू?
8: $1000 में I will spend on either clothes or shoes.
6: Clothes or shoes?
8: Yeah.
6: अच्छा.
8: मतलब मुझे उड़ाने हैं ना.
6: उड़ाने.
8: This is what I will do. मतलब something which is like useful for me to in daily life.
6: Clothes और shoes आप लोगे.
8: Clothes and shoes के ऊपर मैं उड़ाऊंगी.
6: अच्छा.
8: Shoes के ऊपर इतनी easily मैं नहीं उड़ाती हूँ, तो clothes mostly.
6: अभी फ्री डॉलर्स अगर मिल रहे तो शूज भी ले सकते हो ना.
8: या या
6: मैं $1000 अगर मेरे को आप देते हो,
8: हेडफोन लो.
6: नहीं नहीं बस भाई बस हो गया अभी हेडफोन.
8: इसका मेरे को लगता है एक दिन तो म्यूजियम ओपन करोगे अपने घर पे हर एक टाइप के हेडफोन के.
6: नहीं नहीं नहीं मैं $1000 में वो लूंगा अभी. ये बार स्मार्ट वॉच.
8: स्मार्ट वॉच
6: लूंगा मैं.
8: स्मार्ट डिसीजन एक्चुअली, बट बहुत ट्रिकी सिचुएशन है. बिकॉज अभी देखो ना आज न्यूज आई है ना, दिस फिटनेस ऐप का डाटा आ गया, लीक हो गया.
6: ओह नो.
8: या सो NZDF वहाँ पे काफ़ी लोग जो ट्रेनिंग करने के लिए या एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनका डाटा चला गया है. तो आई नो हम काफ़ी लोग हम फिटनेस ऐप्स को यूज़ करते हैं टू ट्रैक एवरीथिंग.
6: बट डाटा निकल के करेंगे भी क्या ना अभी, मतलब वैसे अगर आप देखो सैंडी
8: कहाँ पे हो रहा था वो डिपेंड करता है, बिकॉज़ न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स में हो रहा था.
6: अच्छा.
8: तो इसलिए इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस.
6: बट अभी आप ये सोचो कि आप इस पे अपना क्या बोलते हो ChatGPT पे आपने आपका पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाला है, वो डाटा लीक हो गया तो
8: उसको वन साइड ऑफ सैंडी पता चलेगा.
6: वन साइड ऑफ सैंडी नहीं, उसको फुल सैंडी पता रहेगी. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं आज, क्योंकि आज हमें कैरेक्टर गेस खेलना है आपके साथ.
8: कैरेक्टर गेस भी खेलना है गाइस, उसके लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज़ रुज़बे ने बड़े अच्छे से तैयारी की.
6: मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की आज हमारे कैरेक्टर की. तो इस गाने के बाद इमीडिएट कैरेक्टर गेस आपके लिए.
8: इस गाने के बाद कुछ मैसेजेस सुनेंगे, उसके बाद
6: कैरेक्टर गेस खेलेंगे. रोमा थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज. दिस इज रोमा, लव लिसनिंग टू द रेडियो. आई होप वो हमारे रेडियो की बात कर रही है.
8: Of course.
6: ऐसा नहीं कि आई लव लिसनिंग टू माई रेडियो और उस पर मैं कोई और चैनल सुनती हूँ. दिस इज दुरंदर फॉर यू, हनुमान काइंड एंड जैस्मिन सैंडलस.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: Hum, accurate traffic.
4: Fragrance and cosmetics clearance sale.
5: Partly cloudy with a low of 9 overnight on the northern. Heavy traffic north from the Harbour Bridge to Oniwa Road. Town to Silverdale, 52 minutes. To Massey, 30 minutes. On the southern, heavy heading south from Dilworth Ave to Penrose Road. North from Mount Wellington to Market Road. Town to Manukau, 43 minutes. To Drury, 1 hour 5. Southwestern's heavy in both directions through Mangere Bridge.
4: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glen Dowie, from 9 a.m. While stocks last.
6: TradeDepot.co.nz.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawn mowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: TradeDepot.co.nz.
8: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
9: Tap into something beautiful, luxurious and exclusive.
10: The perfect balance of form and function for the bathroom of your dreams.
9: It's easy with Code Interiors Supreme Tapware and Vanity Ranges.
10: Lead-free nature and linear tap ranges in 7 colours.
9: Timber veneer over plywood vanity ranges for extra reassurance.
10: Code Interiors, specialists in bathroom wear.
9: Find your nearest stockist at codeinteriors.co.nz. Slide.

0: पांच सवाल हमारे पास होंगे रुजबे को पूछने के लिए, जिसका जवाब वो हाँ या ना में देगा।
1: That's right. तो शुरू करूं मैं पहले हिंट के साथ?
0: Yeah, let's go.
1: अब पहला हिंट ये है, बचपन में स्टेज पे दो वर्ड्स बोल के बेहोश।
0: ये बचपन हमेशा लेके आते हैं अपने हिंट में।
1: सुनो ना।
0: बचपन में ये नहीं खाता था, बचपन में वो नहीं पीता था, बचपन में आइसक्रीम नहीं खाता था, बचपन में वो नहीं पहनता था। ओके, तो बचपन में दो वर्ड्स बोल के वो हो गया बेहोश।
1: बचपन में स्टेज पे दो वर्ड्स बोल के बेहोश, आज माइक उनसे दो वर्ड सुनने के लिए तरस जाता है।
0: ओ, तो बचपन में ही कुंड इवन टॉक मच ऑन ऐसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज पब्लिक बोलते कि भाई बोल।
1: या यू कैन ऑल्सो पुट इट दिस वे, या अब अगर आपको उससे करना है तो ऐसे भी बोल सकते हो कि अभी पहले माइक से माइक को देख के बेहोश हो जाते थे, अब
0: माइक उसे देख के बेहोश हो जाता है,
1: अभी माइक उसको देख के बेहोश हो जाता है
0: कि भाई ये फिर आ गया,
1: ये फिर आ गया।
0: तो मेल है गाइस,
1: या आ गई,
0: या सी दिस इज हाउ यू क्रैक।
1: नहीं नहीं, ये अगर आपको हाँ ऐसा कंसीडर करो आप, यू विल गो फुल रॉन्ग। या
0: ओके, सो मेल गाइस, इतना पता चला है मेल है, एंड दिस इज समवन हु कैन टॉक ऑन माइक फॉर, मतलब एट लेंथ ये बंदा बात कर सकता है, मतलब इतनी बात कर सकता है कि माइक ही बोलेगा कि भाई रहन दे बस कर, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है।
1: ठीक है,
0: ओके, सो दिस पर्सन इज,
1: आई विल नाइदर कंफर्म नॉर डिनाई,
0: ये स्टैंड अप कॉमेडी भी हो सकता है पर्सन, ये पॉलिटिशियन भी हो सकता है, बिकॉज पॉलिटिशियंस लव टू टॉक एज वेल। और ये पर्सन और क्या हो सकता है, मेरे को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी होगा, ये स्टैंड अप कॉमेडी मतलब कॉमेडियन होगा ये बंदा, 100% ये कॉमेडियन है। क्या लगता है आपको, मैसेज करो या फिर यहाँ पे कॉल करो 0800 हम पर। तो रुजवे मेरा पहला सवाल ये है,
1: पहला सवाल आ गया आपको ऑलरेडी।
0: हाँ।
1: अच्छा बताओ बताओ,
0: इज दिस पर्सन कॉमेडियन?
1: यस,
0: ओके,
1: मतलब मतलब यस और नो क्वेश्चन पूछना है ना, मैंने आपने बोलना है ना।
0: हाँ, तो दिस पर्सन इज स्टैंड अप कॉमेडियन,
1: कॉमेडी की है पर्सन ने, इस पर्सन ने कॉमेडी की है।
0: ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रिफ्रेस करूं, इज दिस पर्सन प्रोफेशनली कॉमेडियन?
1: ये देखो, ये तो
0: नहीं,
1: ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब देखो प्रोफेशनल कॉमेडियन मतलब क्या बोल रहे हो,
0: कॉमेडी कॉमेडियन
1: कॉमेडी
0: मतलब
1: से पैसा मिला है, कॉमेडी के लिए पैसा मिला है कि नहीं मिला है ना,
0: ये मतलब कि प्रोफेशनल कॉमेडियन से ये हो गया कि उसका जो फर्स्ट पॉपुलैरिटी का जो उसका फर्स्ट है वो एज अ कॉमेडी है, जिससे उसको जाना जाता है उसकी कॉमेडी के लिए।
1: ये आपने सवाल चेंज कर दिया अभी।
0: अरे
1: ये सवाल चेंज हो गया है,
0: इज अ पर्सन इंडियन नॉन इंडियन? तो तुम बोल रहे हो कि कॉमेडियन है
1: जी, मैं मेरा दूसरा हिंट देने के लिए रेडी हूँ फिर।
0: हाँ बोलो।
1: ठीक है, तो ये पर्सन, दिस पर्सन इनिशियली जब पॉपुलर हुए, ये पर्सन जब पॉपुलर हुए मतलब वो वाला टेंस आना ना कि दे देम, तो वो जिस चीज के लिए पॉपुलर हुए वो कॉमेडी नहीं था।
0: ओके,
1: बट कॉमेडी सर्किट में भी ये बहुत पॉपुलर है, सो अगर आप मेरे को पूछते हो कॉमेडियन है तो मैं उसके लिए भी मैं हाँ बोलूंगा, क्योंकि कॉमेडियन कॉमेडी के लिए भी जाने जानते
0: हैं। नहीं, कॉमेडियन में हाँ तुम तभी बोलो अगर वो कॉमेडियन है ना गाइस,
1: ऐसा नहीं होता ना।
0: ओके, तो ये लेकिन फेमस हुए जब, तो किसी और रीजन से हुए?
1: फेमस किसी और रीजन से हुए।
0: समवन ही गॉट फेमस, तो सो द पर्सन इज अ गुड स्पीकर, वेरी गुड स्पीकर,
1: वेरी गुड स्पीकर,
0: एंड
1: कन्विक्शन है ना आपके। 0800-004-866
0: कम ऑन गाइस, थोड़ा
1: कॉल करें, इसको मदद करें प्लीज, एंडी को मदद करें, उनको जरूरत है मदद की।
0: जाकिर खान फ्रॉम
1: विम ने भेजा है।
0: हाँ, जाकिर खान, जाकिर खान
1: ने एक सवाल पूछा है, पर्सन इंडियन है या नॉन इंडियन है?
0: मुझे ये इंडियन ही लग रहे हैं वैसे तो।
1: सही है, अगर आपको लग रहा है तो आपको तो सही लगता है वैसे।
0: क्योंकि कॉमेडियंस में ये ज्यादा इंडियंस की सुनता है।
1: अच्छा, और आपने डिसाइड भी कर लिया कि कॉमेडियन है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सैंडी, सही जा रहे हो आप।
0: और फेमस किसी और रीजन से हो तो ये बोल रहे हो ना।
1: मैं कुछ

0: बोल रहा हूँ.
1: अरे हाँ, तुमने बोला ना अभी कि फेमस किसी और रीजन से हुए, वो स्टार्टिंग में.
0: That's right.
1: लेकिन बाद में कॉमेडी उन्होंने की.
0: बाद में कॉमेडी भी की.
1: भी की उन्होंने. जाकिर खान कैसे फेमस हुआ था? मेरे को लगता है जाकिर खान सीरियल से फेमस हुआ था क्या?
0: नहीं, तबला से.
1: तबला से. अच्छा नहीं.
0: जाकिर हुसैन.
1: क्या यार. दिस इज वेरी ट्रिकी. Okay, now let's go for the second question.
0: कोई कॉल ही नहीं कर रहा है यार. 800-004-866.
1: Come on, guys.
0: बच्चे लोग बहुत बिजी रख रहे हैं, को लग रहा है पेरेंट्स को कि कॉल ही नहीं आ रहा है कोई.
1: कॉल ही नहीं आ रहा है. या मैसेज करो या कॉल करो, थोड़ा पता चले कि someone who is a speaker. चलो पार्थ वाला सवाल पूछती हूँ मैं.
0: हाँ, अच्छा पूछ रहे हो आप. हाँ, पूछो. क्या
1: क्या ये इंडियन है?
0: Yes.
1: देखा. क्या यार, पता था मुझे ये इंडियन है. पार्थ बोल रही थी ना मैं. वो इंडियन पे स्टक रहेगा. स्पेशली अगर कॉमेडी की बात आती है स्पेसिफिकली तो वो इंडियन की ही बात करेगा.
0: अच्छा, मतलब मैं देखता ही नहीं हूँ बाजू का, बाहर का कुछ ऐसा बोल रहा हूँ.
1: कॉमेडी नहीं देखते ना किसी और की तुम. तुम इंडियन कॉमेडीज को ज्यादा प्रमोट करते हो. दैट्स हाउ आई विल पुट इट.
0: गुड पॉइंट. इंग्लिश कॉमेडी समझ नहीं आती है.
1: वो उसे तुम वो हो जाते हो. अमिताभ आया किसी का आंसर. अबे अमिताभ, अमिताभ कैसे कॉमेडियन है यार. रूपल. तो जाकिर खान भी आंसर आया है. और क्या इज अ पर्सन फेमस फ्रॉम पॉडकास्ट? पार तुम ना मेरा वो वेस्ट करोगे सारे क्वेश्चन. एक ने बोले समय रहना है. समय रहना में मुझे लगता है जब भी हम ये करते हैं ना, हमेशा समय रहना आंसर आता है.
0: आता है, एक बार तो आता ही है समय
1: जब भी करेक्टर गेस करते हैं
0: हम. क्योंकि उनको लगता है कि मैं पता नहीं क्यों मैं हमेशा समय रहना के बारे में सोचता हूँ. मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ समय रहना के बारे में बहुत. लेकिन
1: एक्चुअली समय रहना स्टार्टेड फ्रॉम चेस. ही गॉट फेमस फ्रॉम चेस.
0: नॉट रियली. नो, समय रहना ऑलवेज वाज कॉमिकस्तान में. सबसे पहले कॉमिकस्तान में आया था.
1: सबसे पहले कॉमिकस्तान. या
0: बट व्हाई एम आई हेल्पिंग यू?
1: ओके. मुनावर. मुनावर
0: ऑलवेज कॉमेडियन.
1: ऑलवेज कॉमेडियन.
0: वैसे वो फेमस हुआ जेल जाके. लेकिन
1: या सो नॉट समय रैना, नॉट मुनावर. ओके गाइस, तो जाकिर खान का मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो फेमस, मतलब पता है जिनकी, ये नहीं है कि वो स्टार्टिंग वो फेमस कैसे हुए थे. I always thought he is always comedian only.
0: वो तो जाकिर खान रेडियो भी करते थे बिहाइंड द सीन्स, बट फेमस नहीं हुए थे उससे.
1: हाँ वही.
0: वो राइटिंग करते थे
1: कॉमेडी में ही देखा है.
0: AIB के लिए राइटिंग करते थे.
1: या
0: और फिर AIB के लिए उन्होंने AIB दिवस में उन्होंने स्टैंड अप किया था और वो फटा था और वहां से फिर वो फेमस बने. वो है वो वाला सेट किया था उसने. वो सख्त सख्त सख्ती बना के रखनी है.
1: नवजो सिद्धू हो सकते हैं एक्चुअली फेमस एज अ क्रिकेटर, लेकिन कॉमेडी में भी आते हैं ना. कपिल शर्मा में इज अ पर्सन एक्टर इफ यस देन वीरदास मे बी. ओह वीरदास इज अनदर वन. ओके
0: ओके, एक काम करते हैं गाना सुनते हैं.
1: हाँ,
0: और तब तक आप सोचिए कोई कॉल भी करिए.
1: एक और हिंट दो. थर्ड हिंट दे दो गाने से पहले.
0: एक और हिंट भी दे दूं मैं अभी?
1: हाँ.
0: अच्छा ओके, तो बेसिकली मुझे एक नाम मेरे फादर ने दिया और बाद में दुनिया ने उस नाम को मेरी पर्सनैलिटी समझ लिया.
1: ओके, वो नाम उसके फादर ने दिया. एक नाम उसके फादर ने दिया, उस नाम को दुनिया ने उसकी पर्सनैलिटी समझ लिया. अच्छा ओके, और घुमा दिया इसने. तुम गाने सुना दो अभी. Hollywood's most wanted. गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना A game. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: बॉलीवुड मोस्ट वॉन्टेड में अरिजीत सिंह अगेन, मैं ना रहा मेरा, ये कौन से मूवी का गाना है यार सैंडी?
1: देखो
0: देखना पड़ेगा ना, देखो क्या जमाना आ गया है। सैंडी को नहीं पता कौन से, मैं ना रहा मेरा ये मूवी का ही नाम है। या मतलब कौन है ये?
1: उसके बारे में बाद में गेस करेंगे रुज़बे, बट फॉर नाउ द कंसंट्रेशन बन गई है बिकॉज यू सेड कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, इनके फादर ने इनको एक नाम दिया जो इनकी पहचान बन गया। वो नाम पहचान बन गया इनकी,
0: मतलब वो नाम से इनको काफी लोग जानते थे एक टाइम पे।
1: एक टाइम पे,
0: हाँ एक टाइम पे मतलब जानते थे, ऐसा पॉपुलर थे वो।
1: तो गाइस मेरे तो अभी फुल टॉस हो रहा है, बताओ थोड़ा। कॉमेडियन है ये, कॉमेडी भी इन्होंने की है बट फेमस हुए किसी और रीजन से। एंड और क्या बोला था तुमने, ये इंडियन है बाय द वे,
0: इंडियन है
1: ठीक है, ये इंडियन है, मेल है, ये
0: मेल है, मेल है, ये आपने बोला है, ये मैंने नहीं बोला है।
1: या सो इंडियन है ये, एंड कॉमेडी भी की है इन्होंने। इनके फादर ने नाम दिया जिससे लोग इनको जानना शुरू हुए,
0: जिससे वो लोग उनको जानना शुरू नहीं हुए, उनके फादर ने जो उनको नाम दिया है वो उनकी पहचान बन गई थी, मतलब उनकी पर्सनैलिटी बन गई थी, ऐसे
1: उनकी पर्सनैलिटी बन गई वो नाम। पर्सनैलिटी बन गई, ओके। ऐसे कितने लोग हैं आप जानते हो जिनको कि उनका नाम में इतना दम है कि वो पर्सनैलिटी बन गई उनकी?
0: हाँ मतलब वो, मतलब एसोसिएट करते थे वो नाम, मतलब वो नाम जो था जो उनके फादर ने दिया था वो बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी झलकता था उनसे। ऐसा
1: ओके। वैसे किसी ने अमिताभ उस समय में भेजा था, अमिताभ नाम भी उसके फादर ने दिया ना, शोपन ने भी आंसर दिया अमिताभ। क्योंकि आई एम जस्ट थिंकिंग कि अमिताभ पर्सनैलिटी, लाइक बोलते जो हम अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी उनके नाम से ही झलकती है। एंड अमिताभ वॉज नॉट द रियल नेम, द रियल नेम वॉज समथिंग एल्स, उनके फादर ने नाम दिया था अमिताभ बच्चन का अमिताभ।
0: अच्छा
1: या सो वो पूछने के लिए व्हाट वी कैन क्वेश्चन इज कि ओके माय थर्ड क्वेश्चन
0: आ भी गया आपका।
1: या मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है यार, अमिताभ बच्चन की एज क्या है गाइस, मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना है।
0: हाँ
1: एज क्या अमिताभ बच्चन की पता है क्या?
0: 80 के आसपास होंगे।
1: Are you sure?
0: हाँ, मतलब हो सकते हैं, बोलो क्या करना क्या
1: है? तो माय क्वेश्चन इज कि जिसकी तुम बात कर रहे हो क्या उनकी एज 75 से अबव है? थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा ना।
0: 75 से अबव है ऐसा सवाल है आपका, मुझे यस या नो बोलना है ना?
1: या
0: नो
1: नो, नॉट अमिताभ बच्चन,
0: नॉट अमिताभ बच्चन,
1: नॉट अमिताभ बच्चन। सो तीन क्वेश्चन हमारे गए, दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन, उनकी एज 75 से अबव नहीं है, या 70 पूछना चाहिए था मुझे लगता है मुझे,
0: बट
1: ओके तब भी नहीं होता। दैट मीन्स दिस पर्सन इज मिडल एज कुछ ऐसा है ये पर्सन। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह, बस नितिका ने बोला है। वाई अनुभव? ओके
0: क्योंकि उनके उनका सरनेम जो उनके बाप ने उनको दिया है बस्सी, बस्सी नाम से उनको ज्यादा जानते हैं, ऐसा नितिका का सोच रही है शायद।
1: तुम घुमाओ मत मुझे, दिस इज नॉट बस्सी, ये बस्सी
0: यार
1: नहीं है।
0: एक तो कोई कॉल करे यार, 0800
1: बस्सी इज ऑलवेज फेमस फॉर कॉमेडी।
0: 0800 004866 इज द नंबर, कॉल करे यहाँ पे।
1: शशि थरूर भी आंसर आया है, लेकिन शशि के नाम में शशि इज नॉट द पर्सनैलिटी बताने वाला नाम ना, जैसे अमिताभ के नाम में इट वॉज लाइक दैट। जाकिर खान, जाकिर मीन स्टोरी टेलर। चरण,
0: क्या बात है,
1: नाइस, बट बाकी चीजें फिट होती है क्या उस पे? वो तो कॉमेडी से ही फेमस है ना जाकिर खान, मतलब इज नॉट एनी अदर फील्ड जिससे वो फेमस है।
0: दैट्स राइट,
1: द मेन क्राइटेरिया इज कॉमेडी ओनली,
0: और पोएट्री, और वो भी करते हैं ना, पोएट्री
1: भी वो भी, लेकिन इट्स वही उनका, लेकिन जो मेन है वो कॉमेडी नहीं है, लाइक इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। जॉनी लीवर नाम आया है, बट जॉनी इज, मैं अगेन नाम के ऊपर जा रही हूँ कि नाम में पर्सनैलिटी आनी चाहिए पर्सन की, तो जो नाम आप सोच रहे हो ना उस नाम से उस पर्सन की पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। ऐसा रुज्मी ने एक हिंट दी है.
0: नॉट रियली, ऐसा नहीं है. मैंने बोला नहीं पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए. मैं आपको फिर से बोलता हूँ, वो मैंने मुझे एक नाम मेरे फादर ने दिया था और बाद में दुनिया ने उस नाम को मेरी पर्सनैलिटी समझ लिया.
1: तो नाम भी वही ना, लेकिन नाम कुछ ऐसा होगा ना वो, कि दुनिया ने उस नाम को पर्सनैलिटी समझ लिया, तो मतलब something that fits someone's personality.
0: ऐसा मतलब हाँ, ऐसा
1: कुछ नाम होगा ना वो,
0: ऐसा कुछ क्रेजी,
1: ऐसा कुछ क्रेजी नाम होगा गाइस. तो वो उस हिसाब से जब हम नाम ले रहे हैं ना, तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि ये नाम फिट होता है क्या वहाँ पे.
0: ओके, हाय.
2: हेलो
0: जी.
1: यस, हाय.
2: इज इट कैन आई से द नेम?
1: हाँ हाँ, बोलो बोलो.
2: इज इट हर्ष गुजराल?
0: हर्ष
1: गुजराल.
0: बट वो सिर्फ कॉमेडियन ही है ना?
1: वो सिर्फ कॉमेडियन है ना. तो दिस पर्सन वाज नॉट फेमस एज अ कॉमेडियन पहले. इसने कॉमेडी भी की है. तो फेमस किसी और रीजन से है, लेकिन इन्होंने कॉमेडी भी किया. और उनका नाम, नाम
0: क्या नाम है आपका?
2: रक्षा.
1: अरे कोई बात
0: नहीं,
1: रक्षा ये फेल नहीं होता है, आपने ट्राई करना है साथ में.
0: थैंक यू.
2: हां हां,
1: मैं देखो कितनी चीजें बोल रही हूं.
0: हाय, आपका भी स्वागत है.
3: हेलो टीम, बताओ. मैं बताऊं?
1: हां बोलो बोलो.
3: दिमाग में आ रहा है मेरे, मे बी आई एम रॉन्ग सैंडी.
1: हां कोई बात नहीं यार.
3: देखो एक कैरेक्टर जो है ना, ये जो है वो थे एक्चुअली अपने यार वासेपुर ने कौन सा, वो मिर्जापुर का सीरीज में वो कैरेक्टर है एक्चुअली,
1: मिर्जापुर की सीरीज में
0: वो चाचा.
3: और उनका नाम है लिलीपुट.
0: लिलीपुट. अच्छा.
3: आई एम नॉट श्योर. अगेन देखो, अगेन क्योंकि उनको आई एम श्योर उनका नाम कुछ अलग है. तो ये जो है ना, ये फिट बैठ रहा है सैंडी. देखो मतलब रुस्पे जो बोल रहा है उसपे थोड़ा सा वी येट टू गेट दी ये क्या बोलते हैं उसको, चीज. लेकिन पहला की तो ये बैठ रहा है मेरे ख्याल से. बट वी कैन एज वी गो वी कैन सी मोर एक्चुअली.
1: ओके ओके. तो लिलीपुट वो क्यों लग रहा है आपको? चाचा
0: नहीं, चाचा नहीं, लिलीपुट.
1: लिलीपुट. हाँ,
0: लिलीपुट नाम है क्या चाचा का?
3: हाँ मतलब. अच्छा वो नहीं है फिर. रॉन्ग.
0: अच्छा नहीं.
1: नहीं है. यू गॉट इट राइट. देखो ऐसे ही बगड़ते हैं.
0: यार ये बहुत गलत हो गया यार. ये मैं बोलने, मैंने मुंह खोलना नहीं चाहिए.
1: या ये तो गया. या
3: चलो, आई एम देयर लिसनिंग. देखो क्या होता है. चलो
1: सही है. थैंक यू.
0: एक और हिंट दे दो क्या?
1: हाँ, तुम्हारा फोर्थ हिंट है ये.
0: फोर्थ हिंट है.
1: हाँ,
0: ये
1: बोलो.
0: मेरी किस्मत इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं सिर्फ डिसीजंस नहीं लेता, पहले स्टार्स से अपॉइंटमेंट लेता हूँ.
1: मतलब मैं डिसीजन नहीं लेता लेकिन स्टार्स से अपॉइंटमेंट लेता हूँ.
0: हाँ,
1: नहीं समझ में आया मुझे.
0: ओके, मैं इतना लकी हूँ कि कभी कभी डिसीजंस लेने से पहले आसमान से अप्रूवल लेना पड़ता है.
1: मैं इतना लकी हूँ कि
0: कभी कभी डिसीजंस लेने से पहले आसमान से अप्रूवल लेना पड़ता है.
1: आसमान से अप्रूवल लेना पड़ता है.
0: या
1: इतना लकी है ये.
0: मतलब यार ये एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं यार सैंडी.
1: ओ ऐसा बोलो ना यार. या, पहले या. हम कम घूमे हुए हैं क्या? और घुमा रहा है ये. आसमान से डिसीजन लेना पड़ता है.
0: थोड़े बहुत ऐसे, थोड़ा बहुत है. हाय.
4: माय नेम इज अनिकेत.
0: हाय अनिकेत.
4: मुझे लगता है गोविंदा है.
0: गोविंदा लग रहा है आपको? क्यों ऐसा?
1: गोविंदा क्यों लग रहा है आपको?
4: आई डोंट नो. आई मीन वो बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत सारे चीजें पहनते हैं, रिंग.
1: तो गोविंदा की शुरुआत कैसे हुई थी आपको पता है?
0: एक्टिंग से ना, एक्टर.
4: नहीं, एक्चुअली नहीं. हां,
0: अनिकेत
1: अक्षय कुमार भी हो सकते हैं. एक मैसेज है अक्षय कुमार. यू नो व्हाई? बिकॉज अक्षय कुमार का नाम चेंज हुआ है ना. राजीव था.
4: या उनका नाम राजीव था पहले.
1: या लेकिन अक्षय नाम उनके फादर ने नहीं ना दिया.
4: नहीं, अक्षय कुमार के
1: अगर अक्षय कुमार है तो वो कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं, क्योंकि नाम में ही पर्सनालिटी है ना अक्षय. सो
4: और या कुड बी, इट्स वेरी डिफिकल्ट.
1: चलो लास्ट हिंट भी सुनी लेते हैं, क्या ही जाएगा.
0: लास्ट हिंट एक काम करते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार. हाय,
5: कैसे हैं फैमिली?
0: बहुत ही बढ़िया, कैसे हो आप?
5: बढ़िया जी बढ़िया. इनका लास्ट नेम खुराना तो नहीं?
1: खुराना. फर्स्ट नेम क्या है?
5: दो भाई हैं.
1: अच्छा, आयुष्मान के बारे में बात कर रहे हो?
5: और दूसरा अपार शक्ति.
1: अपार शक्ति, आयुष्मान एक्चुअली में हो सकता है. आयुष्मान क्योंकि नाम नहीं चेंज हुआ ना, लेकिन उनका उनके फादर ने उनको आयुष्मान नाम दिया एंड कॉमेडी की है इन्होंने. ठीक है,
5: मैं तो अपार शक्ति सोच रहा था, उसको उसका निकनेम पार ही है वैसे तो.
1: ओके, नाम में ही पर्सनैलिटी है या आयुष्मान डज फिट एक्चुअली.
5: अपार शक्ति इतना बड़ा नाम है. अपार शक्ति.
0: चलो ठीक है, लास्ट हिंट दे देता हूं मैं अभी. लास्ट हिंट सुन लेते हैं. लास्ट हिंट ये है कि मेरी जिंदगी में कैप्टन्स भी आए, पार्टीज भी आई और चेयर्स भी. प्रॉब्लम बस इतनी थी कि मुझे किसी की कैप्टनसी ज्यादा देर पसंद नहीं आई.
1: एक क्रिकेटर है क्या? ये एक और फेंका इसने. क्या बोला तुमने? मेरी जिंदगी में कैप्टन भी आए,
0: कैप्टन भी आए,
1: हाँ,
0: पार्टीज भी आई,
1: पार्टीज भी थी
0: और चेयर्स भी आई.
1: हाँ, चेयर CHAIR की CHEER
0: CHAIR चेयर.
1: ओ, चेयर भी आई लेकिन कैप्टनशिप कभी पसंद नहीं आई.
0: हाँ, मतलब कैप्टन्स के ज्यादा ज्यादा देर मेरे को कैप्टन ज्यादा मतलब ये नहीं, मतलब
1: ये नवजोत सिंह सिद्धू है.
0: अच्छा, एक मिनट, इनसे भी बात कर लेते हैं
1: मुझे.
0: अच्छा,
1: या मुझे ऐसा लग रहा है ये नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते
0: हैं. हरमीत ने भी यहाँ पे मैसेज भेजा है.
1: यू नो व्हाई? बिकॉज़ नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत सारी पार्टीज बदली है ना पॉलिटिकली. उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिक्स में उन्होंने बहुत सारी पार्टीज बदली है. ही बीन इनटू क्रिकेट एंड वहाँ पे भी वैसे वो सब था. चेयर भी इनके हिस्से आई. नाम में पर्सनैलिटी नहीं पता, बट कॉमेडी की इन्होंने एंड नोन फॉर द क्रिकेट एज वेल. तो ये मेरे को नवजोत सिंह सिद्धू एक्चुअली में लग रहे हैं ये.
0: अच्छा,
1: तो एक सवाल पूछते हैं. तीन क्वेश्चन हुए ना मेरे,
0: चार सवाल हो गए ना.
1: चार सवाल कैसे हुए?
0: चलो ठीक है, पूछ लो सवाल, कोई बात नहीं.
1: चौथा सवाल मेरा ये है,
0: हाँ.
1: क्या ये पर्सन पहले क्रिकेटर रह चुके हैं?
0: क्या ये पर्सन पहले? हाँ, यस.
1: तो नवजोत सिंह सिद्धू ही हुए ना?
0: आर यू श्योर?
1: ज्यादा से ज्यादा गाइस क्या ही हो जाएगा. अच्छा ये बताओ, पांचवा सवाल मेरा ये है.
0: इज आंसर अवेलेबल फ्रॉम ऑल द आंसर्स?
1: या बात का सवाल, क्या जो आंसर आए उसमें आंसर है?
0: यार हमेशा ये करता है
1: वही ना.
0: अच्छा, क्या
1: जो आंसर्स आए हैं उसमें सब उसमें आंसर है क्या?
0: यस,
1: द राइट आंसर इज नवजोत सिंह सिद्धू.
0: दैट्स राइट, इट इज. यस, वेल डन,
1: वेल डन गाइस, वेल डन. किसने सबसे पहले भेजा था? हरमीत. हरमीत से पहले
0: नहीं,
1: भी एक्चुअली भी किसी ने भेजा था?
0: भेज दिया था पार्थ से पहले. एक्चुअली सबसे पहले एक आ गया था नवजोत सिंह सिद्धू. मैं बोला भाईला ये क्या हो गया यार.
1: हाँ, किसी ने भेजा था ये.
0: उसके कारण मेरे सारे हिंट्स खराब हो गए. नहीं तो मेरे इतने अच्छे अच्छे हिंट्स दे मैंने सोचे थे.
1: बहुत पहले एक्चुअली में किसी ने भेज दिया था नवजोत सिंह सिद्धू. 576 ने भेजा था.
0: 576 ने 523 को भेज दिया था.
1: गाइस, वेल डन, वेल डन,
0: वेल डन, वेल डन. बहुत बढ़िया. आर यू रेडी?
6: चैट बस्टर्स, थोड़ा तो हॉल बना दे.
7: ब्रॉट टू यू बाय लाइफस्टाइल फर्नीचर, मानुको, माउंट वेलिंगटन एंड वेस्टगेट. अप टू 60% ऑफ ऑन नाउ.

यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: The average price of 91 tops $3.50. GASBE Director Mike Newton says there are a few factors working against motorists at the moment, including the Kiwi dollar being down.
1: Brent crude isn't pushing any higher, at least. It is just staying consistent. So fingers crossed we might see it start to flatten out and then maybe a decline.
0: An Australian soldier has died and five others are injured after a military vehicle rolled in the Northern Territory. The accident happened yesterday at the Mount Bundy training area, about 130 k's southeast of Darwin. To sport, the countdown is on to the opening game of the Bledisloe Cup at Eden Park on Saturday. Discipline has been an ongoing problem for the All Blacks. Locke Tupuvai knows it's an area that needs improvement. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now. And the Rugby League World Cup squads will be announced in the next half hour. The Kiwis and Kangaroos kick off the World Cup in Sydney on Thursday week.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
4: Are you ready to go home?
5: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWN Havel and Omura Jaiku.
4: Let's go!
3: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusbe.
6: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
7: 6:02 on the 6th of October. Good evening. You are listening to The Drive Show with Sandy and Rusbe. And Trend Makers शुरू हो गया है हमारे लिए.
8: Yeah, Trend Makers शुरू हो चुके हैं और आज Trend Makers में हम ऐसे गाने लेके आने वाले हैं जहाँ पे colors का बहुत जिक्र है. Bollywood गानों में रंग के बारे में बहुत बात की जाती है. स्पेसिफिक कलर्स के बारे में बहुत बात की जाती है.
7: बेशरम रंग.
8: या एंड लेकिन आज हम वही गाने पिक कर रहे हैं जहाँ पे वो स्पेसिफिक कलर्स हैं गाने में. टाइटल सॉन्ग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं.
7: लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे हमें कॉल करके एग्जांपल देना चाहता है कि इसका मतलब क्या हुआ, तो 0800-004-866 ये नंबर है, इस पे कॉल करके आप हमें एग्जांपल दीजिए कि रंग वाले गाने अगर आप सोचो तो सबसे पहला गाना आपके दिमाग में कौन सा आता है,
8: या कौन सा गाना आता है, कोई रंग वाले गाने अगर आपको बताने हैं. सो व्हाट इज वन सॉन्ग जो टॉप ऑफ द माइंड में आपका आएगा, तुम्हारे कौन सा गाना आएगा?
7: लाल दुपट्टा.
8: या वही है अभी.
7: हाय
9: हाय रुस्बे, हाय सैंडी, सोम बोल रहा हूँ.
7: हाय सोम, कौन सा गाना मन में आता है आपके जब भी आप रंग वाला गाना सोचते हो? तो
9: मेरा फेवरेट तो वो है, नीले नीले अंबर पे चांद जगा.
7: ओह, दैट इज आल्सो क्वाइट अ कूल सॉन्ग यार.
8: इट्स अ गुड वन एज वेल.
9: हाँ, बिकॉज़ उसका जब रिमिक्स निकला था, आई कांट रिमेंबर द गाइस नेम, जिसने उसका तो रिमिक्स वर्जन और ज्यादा अच्छा था अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल किशोर कुमार का.
7: हाँ, जो वो बहुत बढ़िया था, वो एल्बम वाला टाइम था ना 90s का.
9: नितिन बहल या समथिंग.
8: नितिन बाली,
9: दैट्स करेक्ट. 90s में आया था वो. दैट वाज इवन मच बेटर, बट या द किशोर कुमार वाज गुड एनीवे.
7: नितिन बाली ने बहुत ऐसे रिक्रिएटेड बनाया एक्चुअली में.
8: तो नितिन बाली की वो एल्बम आई थी बॉलीवुड, BALI, बॉलीवुड उनकी एल्बम आई थी. या तो उन्होंने उसमें सारे ऐसा रिक्रिएट किए थे.
7: और हमारे पास सारे गाने हैं उस बॉलीवुड के एक्सेप्ट दिस वन,
8: नीले नीले अंबर.
7: या कोई बात नहीं, बट थैंक यू सोम. थैंक्स यार, थैंक्स फॉर योर कॉल.
9: नो वरीज, थैंक यू. चीयर्स
7: भाई. एक और आया है, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु. मोनिका ने ये भेजा है.
8: रंग बरसे
7: doesn't fit into the category.
8: Yeah, because उसमें रंग नहीं है ना. रंग है लेकिन कलर स्पेसिफिक नहीं है.
7: स्पेसिफिक कलर चाहिए सैंडी को.
8: या
7: जैसे कि वो मोहे रंग दो लाल.
8: या लाल रंग आ गया, पीला रंग आ गया,
7: क्या है
8: काला रंग आ गया.
7: लाल इज यूज्ड मैक्सिमम.
8: या
7: लाल कलर बहुत यूज हुआ है.
8: लाल
7: एक जमाना था 90s का जब भी नीला बहुत ज्यादा यूज होता था. अभी लाल ज्यादा यूज हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई, थिंग्स हैव चेंज्ड.
8: अभी लाल या फिर लाल भी एक टाइम पे था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि
7: अभी तो केसरी है ना.
8: अच्छा, केसरिया. हाँ, केसरिया
7: के क्या है यार सैंडी.
8: मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने शुरू किया.
7: अरे
8: आसिफ ने भी आंसर भेजा, ये काली काली आंखें.
7: अच्छा, तो आप भी बताइए कौन सा ऐसा गाना आपके जहन में आता है. हम कोशिश करेंगे वो गाना आपके लिए आज प्ले करें.

0: ओए बादशाह के का गाना आप सुन रहे थे, ये काला चश्मा। बहुत ही टाइम के बाद मैंने सुना यार, ये धमाल गाना है ये। वैसे ट्रेंड मेकर्स में आज आप ऐसे गाने इसलिए सुन रहे क्योंकि आज हम आपको सुनाने वाले हैं इस घंटे रंग भरे गाने, मतलब जिस गानों में रंग का जिक्र किया हो वैसे गाने आपको सुनने मिलने वाले हैं। तो आपने पहला गाना जो सुना वो लाल दुपट्टा, दूसरा काला चश्मा, अब तीसरा क्या होगा?
1: तीसरा कौन सा कलर होगा?
0: कौन सा कलर होगा तीसरा?
1: कौन सा कलर है उसमें?
0: क्या लगता है आपको? मेरे को मालूम है कौन सा कलर है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना कि अभी तीसरा कौन सा कलर होगा।
1: तुमने लाल प्ले कर दिया,
0: कोई कॉल करके बताए
1: या काला
0: मैसेज करके भी बता सकते हो ड्राइव कीवर्ड पे,
1: या मैसेज करके भी यहाँ पे आप बताइए।
0: यहाँ पे तब तक मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, बहुत मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। रमनील ने कहा है ये लाल रंग, आज का आंसर वो कह रहे हैं ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। दूसरे किसी ने कहा है
1: ओके।
0: कृष्णदास मनुरेवा से मैसेज किए कि ये लाल रंग कब मुझे, अरे सब वही गाने आ रहे। अच्छा उन्होंने मैसेज किया है लाल दुपट्टा लुप, ये अच्छा गाना है। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम क्या है?
1: लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता,
0: तेरा नाम तो बता।
1: हाँ, ये वाला
0: उन्होंने मैसेज ऐसा किया है। एंड देन देयर इज, हाँ काला शक्काला भी आया है जवाब में। काला शक्काला भी बहुत अच्छा गाना है एक्चुअली, बट अभी के लिए द राइट आंसर इज, आपने पहला लाल सुना फिर काला सुना, अब आपको जो सुनाएंगे
1: वो क्या है?
0: अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में, सैफ अली खान के ऊपर फीचर था ये गाना।
1: सैफ अली खान के ऊपर?
0: मोहितेश ने बहुत क्लोज आंसर भेजा है, मोहितेश ने भेजा है ब्लू है पानी पानी। दैट्स आल्सो अ वेरी गुड सॉन्ग।

0: From climate change to a lack of loose change. From small changes to changes in global power. Change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News. Change is in the air.
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
3: हो गया हूँ माते घर ढूंढते ढूंढते
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा
5: अब हमारा क्या होगा
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना फालतू की बातों से बचना
4: तो क्या करें
7: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
8: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Busy day. Ah, looks like I'm on dinner tonight. With Woolworths Express Pickup, I can order what I need online and pick it up in under 60 minutes. Easy. That's my kind of Woolies.
10: T's and C's apply.
11: 35 minutes and we've moved 3 kilometres.
12: Welcome to peak hour commute, bae.
11: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
12: Over 18? Lived here for more than a year? And a resident for electoral purposes?
11: Yeah, that sounds like me.
12: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
11: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
10: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
13: The beat of Bollywood.
14: World's best. Hamari good brands nahi hai.
15: Are you ready to go home?
16: The Drive Show with Sandy and Ruzbe. Brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group. The home of GWM Havel and Omura Jaiku.
17: Aap sun rahe hum playing Bollywood's biggest hits. Aapke liye yahan pe ek se gaane hum lekar aate hain. Aur Trend Makers mein aaj hum rang bhare gaane aapke liye lekar aa rahe hain. Aise gaane jisme rang ka zikr kiya hai.
4: कलर्स के बारे में बात हुई है एंड मुझे ऐसा लगा था एक्चुअली में रुजबे कि बॉलीवुड के गाने ना भरे होंगे जहाँ पे कलर्स के बारे में बात हुई है ऐसा नहीं है दे आर नॉट की लिस्ट बहुत बड़ी है गानों की
17: एंड मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड कलर्स यूज हुए ना
4: हाँ लाल रंग काफी है एंड
17: गुलाबी रंग गुलाबी, अभी लेटेस्ट में बहुत आने लग गया है
4: गुलाबी इज वेरी ट्रेंडिंग या तो इट्स नॉट कि बहुत सारे गाने हैं बट या ऐसे गाने मेरे को लगता है कि और थोड़े और बनने चाहिए
17: कलर्स के ऊपर बनने चाहिए क्या
4: या
17: एवरी
4: कलर शुड बी देयर
17: राइट सही है
4: एनीवे गाइस तो या काफी लोगों ने यहाँ पे मैसेज किया लेकिन साथ ही साथ अपने ट्रिप के बारे में बता देते हैं
17: जी हमारे ट्रिप में अगर आप साथ देना चाहते हैं हमारा साथ में आना चाहते हैं हमारे और घूमना चाहते हैं फिरना चाहते हैं बाली बैंकॉक ले जा रहे हैं हम आपको इस बार एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक अ हॉलीडे ऑफ अ लाइफ टाइम बिकॉज हम धमाल करेंगे मस्ती करेंगे एंड एक अलग ही अंदाज में आपकी हॉलीडे होने वाली है जैसे पहले कभी नहीं हुई होगी ऐसे टाइप की हॉलीडे आप करेंगे क्योंकि सैंडी और रुजबे आपके साथ रहेंगे दोनों के बहुत अलग स्टाइल्स हैं एक्चुअली हॉलीडे के सैंडी इज क्वाइट अ सोलो ट्रैवलर काइंड ऑफ वाइब आई एम क्वाइट अ ग्रुपी एंड देन टुगेदर विथ योर सपोर्ट पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन मजा आएगा मुझे लग रहा है
4: ऐसा ट्रिप भी हो सकता है ना कि वहाँ पे कोई रूटेगा कोई मनाएगा मतलब समथिंग लाइक दिस
17: इमेजिन सैंडी इमेजिन करो अपन दोनों वहाँ पे झगड़ा करते हैं क्या एंटरटेनमेंट रहेगा यार
4: बहुत एंटरटेनमेंट बॉस बन जाएगा वो तो
17: आई लव यू होप नॉट बट एनीवे अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप ट्रिप लिख कर भेजिए 5599 पे
4: तो आप चाय पे चर्चा पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिस वीकेंड
17: जी तो हम इसी वीकेंड मिलने वाले हैं चाय पे चर्चा पे एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे लेकिन उसके डिटेल्स अगर आपको चाहिए आप ट्रिप लिख कर भेजिए 5599 पे TRIP एंड ऑन 5599 मैसेज कर लीजिए और अभी के लिए रंग की अगर बात करें तो इट्स बैक टू द सॉन्ग गुलाबी मतलब गुलाबी रंग नहीं अब तक मेंशन हुआ ना तो गुलाबी इस गाने का नाम ही है।

0: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में सुन रहे थे आप ये बहुत ही बढ़िया सा गाना। गेरुआ कौन सा कलर होता है सैंडी वैसे?
1: गेरुआ कलर मतलब वो ऑरेंजिश थोड़ा
0: रंग दे तो मोए गेरुआ।
1: या सनसेट टाइप ऑफ वाइब जिसमें आती है।
0: नाइस।
1: तो मेरे को आई थिंक वही कलर होता है गेरुआ।
0: गेरुआ
1: इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर।
0: बहुत ही ब्यूटीफुल गाना भी है वो। एनीवे अभी टाइम आ गया है कि हम आपको बाय बाय बोले। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए और आपके प्यार के लिए।
1: या इसी नोट पे आपको हम यहाँ पे टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब आपसे मुलाकात हमारी होने वाली है कल 3 बजे।
0: लेकिन जाने से पहले सैंडी इतने आसानी से थोड़ी हम जाने देंगे आपको। कमिंग अप नेक्स्ट इज करण औजला का गाना व्हाइट ब्राउन ब्लैक।
1: तीन कलर्स के बारे में बात कर दी इसने। इसमें
0: क्या है इस गाने के बारे में थोड़ा बताइए हमें यार।
1: अरे ये वही गाना है ना, कौन सी मूवी थी ये जिसमें जावेद जाफरी का बेटा है, डांस करता है वो। इट्स दैट सॉन्ग।
0: हुक स्टेप अलग है लेकिन कुछ।
1: हुक स्टेप थोड़ा अलग है उसका।
0: हुक जो है वो अलग है।
1: जावेद जाफरी भी आता है ना उसमें।
0: जावेद जाफरी भी आता है उसमें।
1: तो इज दैट पॉपुलर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, अजय देवगन की मूवी थी ना ये अभी।
0: दे दना दे दे प्यार दे।
1: दे दे प्यार दे। दे दे दना दे प्यार दे।
0: दे दे प्यार दे टू।
1: दे दे प्यार दे टू वाज ओके काइंड ऑफ मूवी। So, yeah.
0: Nice movie, yeah. It was actually quite nice movie.
1: Yeah.
0: Oh, movies के बारे में अगर बात करें Sandy, जाने से पहले बस ये एक movie के बारे में हल्का सा बात करता हूँ। Netflix पे आई है Oh My Dog।
1: मैंने लिस्ट में रखी है। I haven't watched it yet. How is it?
0: It is very emotional.
1: So that's why मेरी लिस्ट में ही है वो। मेरे को कुछ कुछ मूवीज को देखने के लिए ऐसा हिम्मत जुटानी पड़ती है कि भाई देखूँ या ना।
0: थोड़ा सा स्ट्रेच किया है।
1: मैंने गंधारी भी स्टार्ट की है पर देन अगेन वो ट्रिगर हो सकता है काफी लोगों के लिए।
0: अच्छा।
1: बिकॉज़ उसमें चाइल्ड अबडक्शन
0: वो इसमें भी है ऐसा सब कुछ। बट ओह माय डॉग इज गुड यार। इट्स अ वेरी स्वीट मूवी। इट्स अ वेरी नाइस मूवी।
1: ओके तो या आई थिंक एंड आई शुड आई विल वॉच इट।
0: क्यूट मूवी।
1: पंकज त्रिपाठी है ना इसमें।
0: पंकज त्रिपाठी बहुत बढ़िया काम किया है। उसमें एक छोटा सा लड़का है उसने भी बहुत बढ़िया काम किया। आई थिंक इट्स ऑल इन ऑल a nice watch.
1: Okay.
0: You should give it a try.
1: चलो देखेंगे ये मूवी।
0: Have a wonderful rest of your evening. आपको मिलेंगे बहुत जल्द।
1: Bye.
0: कल। Yo yo yo yo. Karan Aujla.

0: Happy Hour on Hum.
1: Hey ChatGPT, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
4: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
5: Lots.
4: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
5: Probably.
4: Am I paying for this free coffee?
5: Definitely.
4: Will they talk me into an upgrade?
5: No.
4: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.
6: Fall in love with your home again with an ANZ Reno Loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility, lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
7: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: Studio Reloaded on Hum.
1: वेलकम एवरीबॉडी, कोक स्टूडियो रिलोडेड में आपका स्वागत है, जिसमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो भारत के गाने आपके लिए पेश करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी लेकर आते हैं। कुछ टाइम से मैं आपको आर्टिस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज इनफैक्ट मैं उन आर्टिस्ट के बारे में जानकारी दूंगा जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना है और जो शायद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में नहीं गाते हैं या मेन स्ट्रीम पाकिस्तान फिल्मों में नहीं गाते हैं, लेकिन इन ये जो आर्टिस्ट है रीजनल सॉन्ग्स में बहुत पॉपुलर है, अपने ऑन राइट में ये बहुत ही मशहूर है, इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे। फिलहाल कुछ बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाता हूँ मैं शुरू करते हुए। दो ऐसे कोक स्टूडियो रिलोडेड के गाने मैं लेकर आया हूँ और फिर आपसे और भी बातें होंगी। फर्स्ट आतिफ असलम की आवाज़ में और फिर अली ज़फ़र और सईन तुफ़ैल की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे दो गाने।

Reloaded. You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे. इसके लिए बस आप हमारा साथ देते रहे. कनिष्क सेठ एक और ऐसा सिंगर है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. कंपोजर और प्रोड्यूसर है जो कंबाइन करते हैं इंडियन क्लासिकल फोक एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन. और ये हमेशा बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं जो इनको लेस रिकॉग्नाइजेबल बताया गया है देन फ्रंट लाइन सिंगर्स. लेकिन इनका कोक स्टूडियो भारत अगर देखा जाए तो इनका क्रेडिट इंक्लूड्स रेमन जिसमें कविश सेठ जिनके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था और श्रेया घोषाल के साथ ये दोनों नजर आए थे. इनका प्रोडक्शन स्टाइल इज मच मोर एक्सपेरिमेंटल देन कन्वेंशनल बॉलीवुड अरेंजमेंट्स. इनका जरूर आप सुने इनका इलेक्ट्रॉनिक टेक्सचर्स अंडरनीथ इंडियन अकोस्टिक और वोकल एलिमेंट्स जो आपको एकदम भाएगा और आप पसंद करेंगे. इनके काम को आप सराहेंगे बिकॉज ही इज ट्रूली अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और कोक स्टूडियो गाने आपके लिए.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: Award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
7: Legends, beats and soul.
9: Coke Studio Reloaded.
10: Coke Studio Reloaded आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ और ऐसे Coke Studio फनकारों को हम सलाम करना चाहेंगे। Coke Studio पाकिस्तान की ओर चलते हैं। अब्दुल वहाब बुक्ती, ये एक बलोची फोक सिंगर है, म्यूजिशियन है फ्रॉम बलोचिस्तान और इंटरनेशनली विजिबल ये हुए थे थ्रू Coke Studio's काना यारी विद कैफी खलील और इवबी। और इनका सिंगिंग हैज़ अ वेरी रो ट्रेडिशनल क्वालिटी जो कंट्रास्ट करता है शार्पली विद ट्रैक्स कॉन्टेम्प्रेरी प्रोडक्शन। और कहा गया है कि इनके पार्टिसिपेशन से बालोची म्यूजिकल कल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है टू ए मच वाइडर ऑडियंस। लिसन फॉर हिज स्ट्राइकिंग बलोची वोकल स्टाइल और अनयूजुअल फ्यूजन और मॉडर्न पॉप के साथ जो ये गाते हैं आपको बहुत भाएगा। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। कुछ और Coke Studio गाने आपके लिए।

0: Kaffe on Hum.
1: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits, Coke Studio Reloaded के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंचे हैं। जल्दी से एक और सिंगर के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। पाकिस्तान के सिंगर है जहूर, कंपैरेटिवली लेसर नोन पाकिस्तानी फोक ओरिएंटेड वोकलिस्ट है। इनको कोक स्टूडियो में देखा गया था विद रहमा ऑन द ट्रैक हर कले। इनका म्यूजिक काफ़ी हैविली ड्रॉ करता है रीजनल पाकिस्तानी ट्रेडिशंस, और कहा गया है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली कल्चरली स्पेसिफिक साइड ऑफ कोक स्टूडियो में अपना ये जो टैलेंट दिखा सकते हैं। और लिसन फॉर हिज ट्रेडिशनल वोकल कैरेक्टर और रीजनल इंस्ट्रूमेंटेशन, जो आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ कोक स्टूडियो रिलोडेड में। आज के लिए बस इतना ही।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew.
4: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 000010. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening to you with the latest at 9. I'm Jeff Bryan. The televised leaders' debate featuring National's Christopher Luxon and Labour's Chris Hipkins. Some sparring over whether existing taxes will increase. There was some tension when health outcomes and education were raised. Christopher Luxon again saying he wouldn't work with opportunity. So both National and Labour are stuck in the high 20s in a new One News variant poll, while the Opportunity Party continues to hold the balance of power. Firefighting operations have stopped for the night at Walter Peak, where a vegetation fire has been burning since this morning. Both ground and air operations will resume in the morning above Lake Wakatipu. In sport, a World Cup winning Blackfern and a Dally M medalist headline the Kiwi squads set to contest this month's Rugby League World Cup. Knights superstar Kalyn Ponga will finally wear the black jersey, and lining up for the Kiwi Ferns, two-time Rugby World Cup winner Stacey Walker. Rugby League with Machinery House and a league of their own. And the emblem for the 2032 Brisbane Olympics has been revealed officially after an embarrassing social media leak 3 days ago. The design is the crest of a pink cockatoo.
0: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
0: Night Cafe on Hum.
4: Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश बिल्कुल तैयार हूँ आपका साथ देने के लिए. अभी से लेकर 12 तक हमारा साथ रहेगा. और जैसे मैंने कहा आपसे, एवरी आवर टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट होता है. तुरंत उसके बाद 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक हम लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही हाईलाइट होता है हमारे इस प्रोग्राम का, क्योंकि हर कोई 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए सुनते हैं अपने फेवरेट नगमे, और वो भी बगैर कोई डिस्टर्बेंस, बगैर कोई इंटरफेरेंस के. तो सिर्फ गाने और हम और आप साथ निभाते हैं. तो ये दौर भी शुरू करते हैं आपके लिए 30 मिनट्स के लिए. आप एंजॉय करो योर फेवरेट सॉन्ग्स, जो कि नॉन स्टॉप आपके लिए बजेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. एंजॉय एवरीवन.

आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

Jay.

0: से करेंगे सबका स्वागत.
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
2: You're listening to number one, Humpling Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ नाइट कैफे में. वैसे इलेक्शन स्पेशल पर पॉडकास्ट तो आपके लिए जारी है रिज़्बी और सैंडी के साथ में, लेकिन अनफिल्टर्ड ड्राइव में आप शिर्ली सेतिया को भी सुन पाएंगे. एक कैंडिड और रिवीलिंग कन्वर्सेशन ये करेंगी विद सैंडी और रिज़्बी. Shirley opens up about her journey from New Zealand to India, the realities of navigating the entertainment industry as an outsider, aur kya challenges ka samna inko karna pada with trying to find her place in an industry jahan par connections or expectations or perceptions can play a huge role. Ye log baatein karenge about the good, the bad and the brutal honest side of the industry, from the pressures of being an artist to dealing with public opinion, to the struggles of being an outsider, और किस तरह से अपना करियर आपको बनाना होगा अपने ओन टर्म्स पर. तो इसके लिए आप अनफिल्टर्ड विद शिर्ली सेतिया ना भूले 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव. फुल एपिसोड का लिंक आपको मिल जाएगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हे चैट जीपीटी दिवाली आने वाली है ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ
2: बढ़िया है अच्छा ग्रोसरीज लेना है पूरे घर की पेंटिंग करवानी है नया सोफा लेना है इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए और हाँ कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए
3: इंटरेस्टिंग और कुछ
2: बस इतना ही
3: सर मैं चैट जीपीटी हूँ अंबानी नहीं हमसे ना हो पाएगा
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 एफएम और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स फ्यूल वाउचर्स होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स हैरिंगटन लिविंग मनोको ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स लॉजिक फाइनेंस and Guru Gandola, a household name in finance and insurance industry. And Fortune, bring home the fortune.
4: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right. Get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off. Experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry! Limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
5: पूरे शहर पे कब्जा होगा राज होगा
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
6: हम
0: नाइट कैफे ऑन हम
7: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits, Festival of Fortune. Win your share of $5,000 worth of prizes with hum. This Diwali, 30th October, ko draw hone ja raha hai. To abhi ek aur competition aapke liye shuru karenge hum, taki aap jeet sake $1,000 worth of fuel voucher. One winner ko milega. $1,000 of fuel voucher. Imagine कीजिए ये बहुत ही शानदार इनाम जीतने का मौका है. You'll have $1,000 worth of fuel voucher to yourself. IH text करें अपने नाम के साथ 5599 पर. अभी आपके पास मौका है. IH letter I और letter H text करें अपने नाम के साथ 5599 पर. To be in the draw to win Indelible Homes, your building experts. ये proudly आप तक लेकर आ रहे हैं ये प्राइज indelibleHomes.co.nz आप विजिट कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए तो याद रहे IH के साथ अपना नाम 5599 पर ड्रो में शामिल होकर $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर जीतने का मौका है और ये किसी एक विजेता को मिलेगा लकी विजेता को मिलेगा मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अभी बातें हो रही है फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जबकि ड्रो 30th अक्टूबर को होने को है. बहुत टाइम नहीं रह गया है, अनदर 3 वीक्स टू गो. तो जितना हो सके उतना आप अपना लक आजमाएं. विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस. आपको बस भेजना है IH अपने नाम के साथ 5599 पर, लेटर आई और लेटर एच अपने नाम के साथ 5599 पर, टू विन $1,000 ऑफ फ्यूल वाउचर. एक विनर को मिलेगा, किसी एक लकी विजेता को मिलने जा रहा है $1,000 वर्थ ऑफ फ्यूल वाउचर थैंक्स टू इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स. विजिट करें www.indelibalehomes.co.nz. टर्म्स एंड कंडीशंस hum.rova.nz पर आपको मिलेगा. यहां पर आप जाकर टर्म्स एंड कंडीशंस भी एक्सेस कर पाएंगे. मैं कृषि आपके साथ दे रहा हूँ.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle कीजिए अपना home loan of 500,000 या उससे ज्यादा Finance World के साथ. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. दो lucky winners. हर eligible home loan of 500,000 या उससे ज्यादा automatically आपको draw में enter करता है. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
2: Time check. Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800 00010.
3: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The televised Leaders Debate this evening featuring Labour's Chris Hipkins and National's Christopher Luxon. Some sparring over whether existing taxes will increase, some tension when health outcomes and education were raised. A new One News variant poll this evening, both the right and left blocks would have 58 seats each. Given Christopher Luxon's reluctance to consider working with Opportunity, it's interesting that this poll would put the Opportunity Party in the kingmaker seat. The election is 4 weeks on Saturday. Firefighting operations, both ground and air, will resume in the morning at Walter Peak, where a vegetation fire has been burning since this morning above Lake Wakatipu, the fire not yet contained or controlled. To sport, the Kiwis have named their final squad for this month's Rugby League World Cup. The men's event kicks off on Thursday week, the Kiwis and the Kangaroos, and the women's event starts the following night, Rugby League with Machinery House in a league of their own. And Argentine football superstar Lionel Messi will take the field in Argentina colours for the final time tomorrow at midday our time against Benin in Buenos Aires.
5: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill.
5: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Night Cafe. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
6: Welcome back everyone, you're listening to number one Hum, playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स तो मैं लेकर आता रहूँगा. जितने भी हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, तो स्वागत है आपका. नेक्स्ट जो 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक का सेगमेंट है, ये खास तौर पर आपको डेडिकेट कर रहे हैं. ट्रक ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स, साथ में फैक्ट्री ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर्स, मुझे पता है कि हम की गूंज आपके आसपास होती है और ऐसे ही एंटरटेन्ड होकर आप काम करते हैं और आपका कंपनी हमें मिलता है और हमारा आपको. थैंक यू सो मच. इस घंटे पर आप से बातें करेंगे अबाउट फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही धमाकेदार फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून जो इनाम देने का सिलसिला है आपके लिए. तो इसमें बस भाग लेने के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि वो भी बारी बारी से आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे, जिसमें बहुत ही ईजिली आप ड्रो में अपने नामों को शामिल कर पाएंगे. वेलकम बैक टू द शो एवरी वन. 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे में आपका स्वागत है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और ऐसे ही आपका साथ देता रहूँगा ऑल द वे टिल मिडनाइट. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. पॉडकास्ट की बातें करें तो ब्रेकफास्ट केचअप सुनना ना भूले. विजय और पूजा के साथ ये होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातें होगी. बियॉन्ड द डेट, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन. विजय और पूजा डाइव इन टू हाउ सोसाइटी मेजर सक्सेस फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज और क्यू लिसनर्स रीडिफाइन कर रहे हैं व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू बी सेटल्ड. बीएफ टेक्स करें 5599 पर. फुल ऑडियो आपको यहां पर मिलेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं. स्वागत है आपका. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी supermarket से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. हमारी कोई branch नहीं है.
3: Night Cafe.
5: You are listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और प्यारे गानों के साथ साथ interesting खबरें. वैसे Rover पर भी आप हम music stations का मजा ले पाएंगे. हम rewind में आपको मिलेगा Bollywood's golden era, 60s और 70s के hits. 80s jukebox में आपको मिलेंगे 80s era of Bollywood songs और Fiji Bhajans में आप world's first 24/7 free Fiji Bhajan streaming platform को enjoy कर पाएंगे, जिसमें Bhajans from Fiji's best artists एनी टाइम एनी वे आपको मिलेगा. चढ़ती कला पंजाबी हिट्स, बैक टू बैक पंजाबी हिट्स ओनली ऑन रोवा. फिजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट, अब हम फिजी कीर्तन संग्रह में आपको मिलेगा. ये भी हमारा एक हम म्यूजिक स्टेशन है ऑन रोवा. यहाँ पर न्यू पूल ऑफ कीर्तन को एड कर दिया गया है जो आप इन्जॉय कर पाएंगे. राहत फतेह अली खान के गाने, लव ऑफ सूफी और कवालीज अगर है आपका तो फिर आप चेकआउट करें म्यूजिक स्टेशन ऑफ राहत फतेह अली खान. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hu. Election special jari hai, to aise mein unfiltered drive sunna na bhule. Podcast mein alag alag mundo par baatein hoti hai aur jabki election special jari hai, to aise mein Sunny Kaushal se baatein hongi, Cindy aur Rizbain se baatein karenge, jisme discussion hoga about the pressures facing Kiwi businesses from rising crime, repeat offenders to immigration, workforce shortages or cost of doing business. Aur ye share karenge what he believes the next government should prioritize, chahe whether politicians are truly listening to small businesses or kya wo ek sawal hai jo every business owner ko कैंडिडेट से पूछने चाहिए बिफोर कास्टिंग देयर वोट. याद रहे शनि कौशल से बातें होंगी. ये चेयरमैन है एंड सीईओ है इंडिया न्यूजीलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेयरमैन है एथनिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलायंस मिनिस्ट्री ऑफ एथनिक कम्युनिटीज, चेयरमैन है डेयरी एंड बिजनेस ओनर्स ग्रुप और साथ में फॉर्मर चेयरमैन है मिनिस्टेरियल एडवाइजरी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड फ्रॉम 2024 टू 2026. ड्राइव टेक्स्ट करें 5599 पर फुल एपिसोड आपको मिल जाएगा. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: दिस इज अ विश रिफिक्स

0: Coffee on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बहुत ही धमाकेदार प्राइजेस जीतने का सिलसिला आपके लिए शुरू कर दिया गया है हम पर टू विन प्राइजेस दिस दिवाली विद हम। दिवाली बहुत ही करीब है तो ऐसे में ड्रॉ डेट भी बहुत ही करीब आ चुका है। 30 अक्टूबर को ड्रॉ होगा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून के जरिए आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। तो अभी $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग अगर आपको जीतना है, होम डेकोरेशन या फिर फर्नीचर वाउचर, वन विनर ओनली होगा। तो इसके लिए आप HL टेक्स्ट करें अपने नाम के साथ 5599 पर टू बी इन द ड्रो। हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ स्प्रिंग सेल शुरू कर दिया गया है, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री आपको मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। दिस इज ओनली अवेलेबल एट हैरिंगटन लिविंग मनुकाउ। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप भी अपना नाम HL के साथ 5599 पर भेजे टू बी इन द ड्रो।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होने को आया है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल एक बार फिर नाइट कैफे में. वेंसडे नाइट को आ जाएंगे बॉलीवुड की खबरों के साथ. अपना बहुत ही ख्याल रखें. गुड नाइट एवरीवन.

0: नहीं मानो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: गेट लॉस्ट।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ हाँ, नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक,

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: Now listen.
3: Get up.
2: That's right.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन प्रेजेंट।
2: नहीं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए।
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
4: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
1: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today. For expert advice you can rely on, TCs, fees and credit criteria apply.

0: 10 a.m.
1: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
2: Playing Bollywood's biggest hits. Night Flight

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
7: अब हमारा क्या होगा?
8: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
9: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

हमारी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: driving you home? Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उससे.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura J Crew.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.

0: ऑर्डर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
2: आई वाज टोटली वर्थ इट। ओके,
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नीयत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाह,

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: Glad I got my enrollment sorted the other day.
4: See, bhai, I told you it was easy.
5: Enrollment for voting? I still haven't done mine. The election isn't until November. I've got time, right?
4: No, not this year. You need to be enrolled by the 25th of October. You can't enroll and vote on the same day.
5: Really? What if I miss it?
4: Well, your vote won't count for this year's election.
5: Achcha, you've convinced me. I'll enroll tonight.
6: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
7: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
8: What do you make in kebab ko special, Chef Alex?
7: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
8: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
7: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
8: 100% authentic and pure as mother's love.
0: Time check.
9: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
10: Good morning, it's me, Theek Chhe Bajre Hain.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. The country's would-be prime ministers have gone head-to-head in the first leaders' debate, covering everything from fuel costs to the WAS. Labour's Chris Hopkins and National's Christopher Luxon put forth their case on TVNZ, sparring over inflation and the cost of living.
12: When you drove inflation up to a 32-year high,
13: it was a 32-year high all around the world.
12: Chris Hopkins,
13: you keep wanting to go backwards.
12: Interest rates are lower now.
13: Chris Hopkins, no plan to tackle the cost of living.
11: Gale force winds could complicate efforts to put out a huge vegetation fire on Walter's Peak above Lake Wakatipu. The blaze has grown to nearly 400 hectares, equivalent to about 550 rugby fields. Frustration from farmers as the average cost of diesel passes $3.20 at the pump. Federated Farmers Arable Chair Chris Dillon says other industries can pass on their costs.
14: Transport firms will do it as a fifth. Contractors can do it as a fifth. The farmer just expects to absorb the whole lot. The higher fertiliser price, the higher agrochemical price, and the higher freight price.
11: Waste Management has been called out over its, quote, dodgy treatment of rubbish truck drivers. Workers First Union says the company wants to get rid of 23 employees in Auckland so it can rehire most of them as contractors. It says the drivers are expected to buy their own rubbish trucks. To Rugby League with Machinery House in a league of their own, Jerome Hughes is back on board for the Kiwis for the first time in 3 years. The Storm halfback missed out on the NRL playoffs, but the upside is he's fully fit for the World Cup for coach Stacey Jones.
15: He's going to be fresh coming in. Yeah, there'll be some cobwebs that he needs to blow and that, but, you know, he knows what this is about. A player that, you know, is world class.
11: And tennis legend Novak Djokovic has secured the 102nd title of his career at the China Open.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: Hum par shok soochnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: Suchit kiya jata hai ki Vatumami Raki Raki ke Swargiye Shri Ram ki patni, yani गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शर्वीन प्रकाश, प्रवीणा और शैलेंद्र की माँ तथा राकेश चंद्र, सरिता प्रकाश और गेटवे लॉयर्स की रानी प्रकाश की सास शांतिबाई राम की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1:30 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शर्वीन प्रकाश, प्रवीणा और शैलेंद्र की माँ यानी वतुमामी राकी राकी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी और राकेश चंद्र, सरिता प्रकाश तथा गेटवे लॉयर्स की रानी प्रकाश की सास शांतिबाई राम की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1:30 बजे एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा।
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का वेदर बताया जा रहा है मॉर्निंग क्लाउड और फोग जो है ये तो रहेगा, लेकिन बाद में चलकर साफ मौसम का अनुमान लगाया गया। स्पेशली शाम के समय अच्छी खासी धूप जो है ये आज खिली रहेगी। आज सनराइज होगा इसी घंटे 6:48 AM पर, सनसेट 7:31 PM पर। टेम्परेचर फिलहाल 7.9 डिग्रीज है, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है। बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर 11 डिग्रीज तक रहेगा।
0: ब्रेकफास्ट कैचअप The Breakfast Show with VJ and Pooja.
19: पूरी की पूरी गैंग के लोगों, कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो।
10: Hello, Kia ora, good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. This is The Breakfast Show with Vijay and Pooja. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा ये मॉर्निंग शो, और अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक हमारा आप एक दूसरे के साथ बने रहेंगे ब्रेकफास्ट शो के आज के हमारे सफर में। डोंट फॉरगेट 104.2 FM यरोवा ऐप के जरिए अगर आप हमें सुन रहे हैं, आप सभी का स्पेशल वेलकम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, एंड आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
17: गुड मॉर्निंग जहां पर भी आज आप हैं, इस सुबह की ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आपको हम देना चाहेंगे। एंड बाय द वे यू नो, देखिए अब अक्टूबर महीने का पहला हफ्ता जो है ये खत्म होने को है।
10: आई नो एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फास्ट, लाइक समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो शुरू हुआ था अक्टूबर, ऐसा लग रहा है कि वेरी सून अभी ये भी खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स होगा तो, बट द फील इज नॉट देयर एज येट कि इतनी जल्दी जल्दी हम 2026 के एंड में आने वाले हैं ना।
17: बिल्कुल, तो आज क्या कुछ है खबरों में, क्या कुछ है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, और आपके गाने मनचाहे जो हैं ये भी हम पेश करते रहेंगे इस प्रोग्राम में। एंड टू टॉप इट ऑफ, जो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, आपको मौका मिलेगा टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस इस दिवाली के मौके पर।
10: यस, फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, कैसे इसमें पार्ट लेना है, कैसे अपना शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ इनाम आप जीत सकते हैं, जानने के लिए आपको बस सुनते ही रहना है।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Hey ChatGPT, Diwali aane wali hai. Aisa koi idea hai ki mera Diwala bhi na nikle aur Diwali bhi ban jaye?
3: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
2: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
3: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
2: बस इतना ही।
3: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
0: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग मोनाको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
4: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. Count the holes in a ceiling tile, or just count the edges and then multiply it. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products. Watch a round of darts. Take a small nap.
6: These are some of the things you can achieve in one blood or plasma donation at your local NZ Blood Donor Centre or mobile drive. Visit nzblood.co.nz to book your blood or plasma donation appointment.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudhima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor Weekend, 24th and 25th October. Limited tickets available at just $89 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12, half price. Under 5s, free. Book now at sudhimahotels.com/food festival.
8: What could I be? A teacher? A scientist? A builder? But first I need a chance. A chance to feel safe, to learn, to believe in myself. That's why Barnardos is asking you to invest in children. Because when you invest in a child today, you can help them build a future full of possibilities. Invest in children at investinchildren.nz. Because the returns last a lifetime.
0: The beat of Bollywood.
9: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco. Global Headlines.
10: सुबह के मुख्य समाचारों में, भारत में दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में कल रात एर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दिया है और इस पर अभी और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फ्रांस में टीचर्स और स्टूडेंट्स द्वारा स्टाफ की कमी और अंडर फंडिंग के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में एक बड़े संकट में बदल गया है। लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स ने सड़कों पर उतरकर वायलेंट क्लैशेस किए, जिसके बाद 100 से ज्यादा स्कूल्स डैमेज हुए और 5,000 से अधिक लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया। सेफ रिप्रेशन और लो रिस्पॉन्स के आरोप झेल रही सरकार से बातचीत नाकाम होने के बाद स्टूडेंट लीडर्स ने प्रदर्शन को और तेज करवाने की का ऐलान किया है। भारत में एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है। 3,500 घंटे से अधिक का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखने वाले ये वेटरन फाइटर पायलट एयर चीफ मार्शल बनकर सेना की कमान संभालेंगे। दीक्षित 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की जगह लेंगे। फिजी में नेशनल फेडरेशन पार्टी के लीडर प्रोफेसर बिमान प्रसाद ने प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रंबुका के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को फास्ट ट्रैक करके 9 दिसंबर को रेफरेंडम करवाने के फैसले को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। प्रसाद ने कहा कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिशियंस का नहीं बल्कि लोगों का है और पीएम का ये ऐलान सेक्शन 160 सब सेक्शन 3 के मुताबिक रिक्वायर्ड पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस के खिलाफ है। उन्होंने साफ किया कि बाय पार्टीसन पार्लियामेंट्री कमेटी के स्क्रूटनी और 30 दिन से ज्यादा के पब्लिक कंसल्टेशन के बिना जल्दबाजी करना 2013 कॉन्स्टिट्यूशन जैसी पुरानी गलतियों को दोहराना होगा। यूएफए नेशंस लीग के मैचेस आज एक बार फिर खेले जाएंगे। आज खत्म हुए एक मैच में कजाकिस्तान और फरोए आइलैंड्स 2-2 गोल से बराबर ठहरे। 8:15 से जो मैचेस होंगे उनमें क्रोएशिया स्पेन से खेलेगा, मोल्डोवा स्लोवाकिया का सामना करेगा, स्कॉटलैंड स्लोवेनिया से खेलेगा, स्विट्जरलैंड की भिड़ंत नॉर्थ मैसिडोनिया से होगी, एस्टोनिया वर्सेस आयरलैंड, इंग्लैंड वर्सेस चेचिया, अल्बेनिया वर्सेस सैन मेरिनो, बेलारूस वर्सेस फिनलैंड और लक्समबर्ग और बल्गेरिया का मैच खेला जाएगा। इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जो प्रथम T20 मैच है उसे 8 विकेट से जीत लिया है। कल हुए मैच में वेस्टइंडीज ने अपने इनिंग्स में 19.1 ओवर्स में 171 रन बनाए जबकि जवाब में इंडिया ने 14.4 ओवर्स में 2 खिलाड़ी खोकर 172 रन बना लिए थे। इस मैच में कैप्टन श्रेयस अय्यर ने 43 बॉल्स पर 102 रन बनाए थे। पिछली में एफएमएफ आईडीसी के पहले दिन के मैचेस के बाद सुपर प्रीमियर डिवीजन या प्रीमियर डिवीजन के जो मैचेस रहे उनमें नावुआ की जीत नांदी के खिलाफ 3-0 से हुई, रेवा ने नसीनू को 5-0 से हराया, बा की जीत लोटोका के खिलाफ 2-1 से हुई जबकि लंबासा ने सुवा को 2-1 से हराया। मैचेस आज एक बार फिर जारी रहेंगे और आज दिन में 2:30 बजे नांदी लोटोका से खेलेगा, 4:30 PM सुबह की भिड़ंत नसीनू से होगी, 6:30 PM पर मबा नावुआ का मैच खेला जाएगा जबकि 8:30 PM पर लंबासा और रेवा का मैच खेला जाएगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आज दिन भर आपके लिए हम पर बारी बारी से हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: Bollywood's most wanted.
11: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ।
12: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो आपके लिए लेकर आ रहे थे सुबह सुबह सोनू निगम, अरमान मलिक और साथ दे रहे थे इनका अमाल मलिक जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया विद नीति मोहन एज वेल अलोंग विद तुलसी कुमार। होपफुली यू एंजॉयड द सॉन्ग और आपके लिए इस गाने को हमने आज मुबारका फिल्म से शामिल किया। 2017 में ये फिल्म आई थी जिसमें प्ले किया था अर्जुन कपूर ने जुड़वा भाइयों का एक किरदार एंड अनिल कपूर प्लेड दिया चाचा। आई डोंट नो हैव यू सीन द मूवी और नॉट, बट अगर मौका लगे तो कभी ज़रूर देखिएगा। फिल्मों की बातें कर ही रहे हैं तो अपडेट्स भी आपको दे दें। आई थिंक जस्ट अर्लियर दिस वीक आपने शो के दौरान मेंशन किया था एक फिल्म तू है मेरी किरण, सोनाक्षी सिन्हा एंड जहीर खान ना ये इसमें दिख रहे हैं। तो फाइनली इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड इफ यू वुड लव टू गो एंड सी कि ट्रेलर जो है कैसा दिख रहा है तो आप जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं टू फिगर आउट फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट।
1: और उसके अलावा शाहरुख खान और उनकी फिल्म किंग को लेकर काफ़ी बातें जो है ये हो रही थी और अब ये खबर आ रही है कि 15 सालों के बाद शाहरुख खान और करीना कपूर खान एक साथ काम करने जा रहे हैं।
0: 15 सालों के लास्ट फिल्म कौन सी थी, रावण?
1: आई कांट रिमेम्बर।
0: आई देयर इज अ मूवी आई कैन रिमेम्बर दे वर बोथ वर्क्ड इन बट आई डोंट नो।
1: जो भी फिल्म थी लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं कि शी इज गोइंग टू प्ले द लीड।
0: क्या करने वाली देन?
1: करीना कपूर खान एक स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाली हैं। एक डांस नंबर होगा, स्पेशल सॉन्ग जिसको टाइटल दिया गया है डैडी कूल।
0: ओह नाइस।
1: इसमें करीना कपूर खान नजर आने जा रही हैं, नजर आएंगी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द मूवी।
0: वेरी इंटरेस्टिंग।
1: और 5 दिन उन्होंने दिए हैं इस गाने को शूट करने के लिए क्योंकि इसे काफी ग्रैंड स्केल पर प्लान किया जा रहा है।
0: तो द लास्ट टाइम दे बोथ वर्क टुगेदर वाज इन 2011 और फिल्म का नाम था रावण जिसमें इन दोनों ने एक साथ काम किया था।
1: सो 15 इयर्स। दूसरी तरफ आई थिंक अराउंड 13 इयर्स हो गए स्वनन किरकिरे जो है लास्ट जब इन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया था और उसके बाद अब आपको याद होगा वेरी ब्रीफली इस फिल्म का नाम कल हमने मेंशन किया था समूक। अक्षय कुमार और विपुल अमृत शाह की ये जो जोड़ी है इसमें स्वनन किरकिरे जो है ये शामिल हो चुके हैं और सनशाइन पिक्चर्स और आशीन ईशा मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसे करंटली लंदन में फिल्म किया जा रहा है और वो फिल्म पैडमैन में उनके साथ जराइटा काम कर चुके हैं।
0: ओके।
1: और उसके बाद उन्होंने चुंबक में काम भी किया विच वॉज प्रेजेंटेड बाय अक्षय विद समुख। द टू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू शेयर स्क्रीन स्पेस ऑल्दो डिटेल्स जो है स्वनंद किरकिरे के कैरेक्टर का ये अभी रिवील नहीं किया गया है। okay. मुझे मालूम नहीं चुंबक में इन्होंने क्या किया था,
0: मुझे नहीं पता। Probably कुछ प्रोड्यूस किया हो या लिखा हो, आई डोंट नो। बट एनीवेज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं बॉलीवुड से भी एज फार एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड और जो भी लेटेस्ट अपडेट हमारे हाथ लगेगा ये डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए इट्स टाइम की थोड़ी देर बाद लेकर आएंगे आपके लिए आज की

0: जानकारी अबाउट 7th of October, आज क्या कुछ मार्क किया जा रहा है, क्या कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ ही रहेगा. बट उसके अलावा आपके गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस भी आए हैं. एंड बिफोर यू मूव ऑन, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए. राज ड्राइविंग फॉर आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट, मिस टमाटा माटा, आपका भी मैसेज हमें मिला है. किसी ने मैसेज किया लेकिन नाम नहीं लिखा है अपना. एंड सलू है फ्रॉम गल्फ हाबा इन फंगपुरोवा. एंड ऑफकोर्स बॉबी मान जी, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने भी सुबह सुबह याद करते हुए अपना गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा है. सो थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए.
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: Fragrance and cosmetics clearance sale.
5: A fine one all day today. Lots of sunshine, patchy cloud and a high of 20. Coming into the city, still looking A-OK. Northern Motorway, 16 minutes in from Constellation Drive. It's fast the whole way. Northwestern, very similar. 18 minutes in from Massey, just starting to build. Southern, got a patchy spot. Papakura through to Manurewa, 22 minutes in from Manukau. Southwestern OK. Bit of traffic though on George Bolt heading to the airport.
4: Clearance sale this Saturday. Sacred Heart College, Glendowie from 9 a.m. While stocks last.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
10: India aa raha hai Auckland and the Blue Tigers need your voice behind them. Dekhiye India ko All Whites ki against Go Media Stadium Thursday 12th November ko. Ek rare chance apni national team ko New Zealand ki zameen par live dekhne ka. Bring the family, wear your colours and fill the stadium with pride. Adult tickets sirf $20 se shuru, kids $10 se plus booking fees. Book now at Ticketek and be there for a historic night.
11: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
12: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
13: ले ले तुम
14: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
15: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
16: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून. विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको, बिग ऑन स्टाइल, ग्रेट ऑन प्राइस, परफेक्ट फॉर योर होम. हैरिंगटन लिविंग मोनाको.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. फिलहाल 26 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में, और ठीक 7 पर तो न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा ही. फिर अगले घंटे मॉर्निंग वेलनेस की शुरुआत भी हम करेंगे. फिलहाल चलिए, आज है 7th of October और क्या कुछ आज मार्क किया जा रहा है.
17: आज के दिन को अगर देखें, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन.
0: ओके,
17: टुडे इज यू मैटर टू मी डे. और उसके अलावा आज के दिन को अगर देखें, इन ब्यूटी डे, ये भी आज मार्क किया जा रहे हैं. नेशनल फॉरगिवनेस एंड हैप्पीनेस डे, ये है आज. वर्ल्ड डे फॉर डिसेंट वर्क, ये मार्क किया जा रहा है. एंड वर्ल्ड कॉटन डे है आज. इसके अलावा इंटरनेशनल वॉक एंड बाइक टू स्कूल डे, ये आज मार्क किया जा रहा है.
0: वेरी नाइस.
17: बर्थडेज बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. जहीर खान, अपने समय के बहुत ही मशहूर इंडियन क्रिकेटर, ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. उसके अलावा अभिजीत सावंत, एक समय पर इनके गाने काफी पॉपुलर हुआ करते थे.
0: अभिजीत सावंत,
17: हाँ
0: हाँ, उन्होंने जिस दौरान वो जीता था ना इंडियन आइडल,
17: अभी तो पता नहीं कहाँ गुम है। इसके अलावा आज जो मिस वर्ल्ड 1999 पेजेंट जिन्होंने जीता था युक्तमुखी, आज उनका भी बर्थडे है। और उनके साथ एक ऐसे शख्स जिनका जिन्होंने बहुत ही कमाल के किरदार जो है कि बॉलीवुड में निभाए हैं और उतनी ही बढ़िया इनकी आवाज़ भी है, शरद केलकर।
0: ओके,
17: ये आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: तो चलिए इनके साथ अगर आज आपका भी जन्मदिन है हमें आप बता सकते हैं जरूर, और अपने ग्रीटिंग्स हमारे पास भेज दीजिएगा अगले घंटे से पहले, ताकि समय रहते आपको याद करते हुए आपको हम वेरी हैप्पी बर्थडे जो है ये जरूर विश कर सके। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत से अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर एक और आप जीत सकते हैं योर शेयर ऑफ $5,000 बोथ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली हमारे साथ। और इसके लिए आपको बता दें कि करना क्या होगा ये जानने के लिए आपको सुनते ही रहना है, क्योंकि जैसे ही हम एंट्रीज ओपन करेंगे वी लेट यू नो कि अच्छा ठीक है अभी ये कॉम्पिटिशन है, ये जीतना है और इसके लिए आपको ये चीज करनी है। एंड वंस यू गेट दैट डन यू विल बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ जहाँ पर आप हमारे साथ जीत सकते हैं यू नो बहुत से अमेजिंग इनाम, जिसमें $1,000 कैश है, $1,000 वोथ ऑफ शॉपिंग वाउचर्स है, न्यू वर्ल्ड के शॉपिंग वाउचर्स, इसके साथ साथ आप जीत सकते हैं $1,000 वोथ ऑफ माइटर 10 के वाउचर्स, एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू विन $1,000 वोथ ऑफ हैरिंगटन लिविंग के वाउचर्स जहां पर होम डेकोर एंड फर्नीचर वगैरह जो है ये आपके लिए रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर अपॉर्चुनिटी जहां पर आप जीत सकते हैं $1,000 वोथ ऑफ फ्यूल वाउचर्स। ये फ्यूल वाउचर्स आई थिंक सभी प्राइजेस बहुत ही अमेजिंग है, पर करंटली जब भी कोई पेट्रोल स्टेशन जाता होगा फिलअप करने के लिए या फिर पता करता होगा कि क्या प्राइस क्या है फ्यूल का, तो आई थिंक दिस इज वन दैट वन ऑफ दोज पर्टिकुलर इनाम जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता होगा ना।
17: मैं तो डर के मारे अभी जाता ही नहीं पेट्रोल स्टेशन।
0: अच्छा
17: हाँ।
0: क्यों?
17: बहुत महंगा है।
0: अच्छा डर लगता है आपको?
17: अरे भाई डर लगता क्यों नहीं लगेगा, कितने पैसे चले जाएंगे।
0: वो भी है, सही है। चलिए 22 मिनट बाकी इधर हमारे स्टूडियोज में 7 बजने में, और अब बारी है कि आज का हमारा सवाल भी आपके लिए लेकर आए। आज आपको एक मूवी पहचाननी है और इस मूवी के कुछ जो एक्टर्स हैं इनके नाम हम आपको बता दें, गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन और कादर खान। पूरी लिस्ट हमने दे दी आपको।
17: कौन कौन से थे?
0: गोविंदा, करिश्मा कपूर, मैंने और नाम क्यों बता दिए क्योंकि गोविंदा और करिश्मा कपूर ने बहुत से फिल्मों में साथ में काम किया ना। सो गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन और कादर खान।
17: यार गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में साथ, और हरीश कुमार और कौन है?
0: कंचन।
17: कंचन मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन है।
0: हरीश, जिन्होंने प्रेम कैदी फिल्म में काम किया था करिश्मा कपूर के साथ।
17: अच्छा वो वाला हरीश। आई नो हिम। उन्होंने क्या नाम है, करिश्मा कपूर के साथ ही काम किया था उस फिल्म में।
0: हाँ, प्रेम कैदी में।
17: हाँ, डेब्यू
0: पहली फिल्म थी उनकी। हाँ। राइट, तो अभी देखते हैं। मैंने तो स्टार कास्ट बता दिया, पर क्या आपको फिल्म का नाम याद आया? बहुत पॉपुलर फिल्म है, इनफैक्ट जिस साल में ये फिल्म आई थी उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है। और अगर आपको जवाब पता चल चुकी है तो हमारे पास अपने आंसर्स 5599 पर आप सेंड कर सकते हैं। जवाब देने के लिए आपके पास है 5 मिनट्स का टाइम।
3: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल

0: बहुत ही खूबसूरत ये गाना आपके लिए आतिफ असलम और साथ में श्रेया घोषाल की आवाजों में लेकर आ रहे थे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। रवैया वस्तवैया ये फिल्म आई थी जिसमें गिरीश कुमार और साथ में श्रुति हसन ने एक साथ काम किया था, उसी फिल्म का ये गाना आज आपके लिए रहा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में। सिंपल से सवाल हमने पूछा, फिल्म में जो एक्टर्स हैं उनके नाम हमने बता दिए, इनफैक्ट जितने भी एक्टर्स जिन्होंने जो मेन मेन कैरेक्टर्स प्ले किए थे सभी के नाम बता दिए, और उसके बाद हमने कहा कि आप अपने अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास टेक्स्ट कीजिए कि आज की हमारी बॉलीवुड मूवी कौन सी मूवी है। नाउ मैसेजेस तो आए हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों ने हमारे पास सही आंसर्स जो है ये भेजे हैं, और इनफैक्ट हीरो नंबर वन ये भी कुछ लोगों ने हमारे पास टेक्स्ट किया है। एज आई सेड कि करिश्मा कपूर, गोविंदा और कादर खान इन तीनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, हीरो नंबर वन बीइंग वन ऑफ दोज मूवीज, लेकिन आज की हमारी जो बॉलीवुड मूवी है इज नॉट हीरो नंबर वन। अगर मैं आपको कुछ क्लूज दूं, जैसे कि गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन, कादर खान ये तो है ही इस फिल्म में, लेकिन ये फिल्म जो है 1995 में आई और उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक रही। एक और क्लू अगर मैं आपको दूं तो जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने कई सालों बाद जाकर इसी नाम से एक और एक फिल्म जो है ये बनाई, सेम नाम से एक और एक फिल्म बनाई और उसका जो रीमेक है बेसिकली ये उन्होंने किया अपने बेटे के साथ।
1: अच्छा,
0: और ये आई थिंक अभी से करीबन 6 सालों पहले आई थी ये फिल्म, एक 1995 में आई, ठीक है ओरिजिनल, फिर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इसका रीमेक अभी से करीबन 6 सालों पहले अपने बेटे के साथ किया, सेम नाम के साथ, सेम कहानी बट मॉडर्न डे में थोड़ा ट्विस्ट लाकर।
1: ओके भाई, इतने सारे क्लूज भी आपको मिल रहे हैं तो कोशिश तो कम से कम आप कर सकते हैं, बताइए कि कौन सी ये मूवी जो है ये हो सकती है,
0: और अपना जवाब अपने नाम के साथ आप हमारे पास टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन 5599।
2: Breakfast show with VJ and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
4: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
5: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
6: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
5: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
6: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
5: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
7: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
8: हेलो एवरीबॉडी।
4: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
9: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
4: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
10: Beauty Mum at Bargain Chemist.
11: Fine today with a high of 20. A bit of traffic heading to the airport on George Bolt this morning, so add a couple of minutes extra to get there, but nothing too major. Southern Motorway, heavy at Papakura, slow to Manurewa, and patchy at Papatoetoe and Mount Wellington. 26 minutes in from Manukau isn't too bad. Northwestern, 22 in from Massey, patchy from Point Chev, slow through Greylin. Northern, 20 from Constellation, slow there to Waito Valley.
10: Treat yourself to big bargains on your beauty favourites this Beauty Month at Bargain Chemist.
12: Mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
13: Weber barbecue sales almost never happen, so don't miss this one. Join us at Auckland's only Weber store for our massive birthday sale this weekend. Get hands-on with the complete 2026 range, the new Weber Spirits, the upgraded Genesis range, and every colour of New Zealand's favourite barbecue, the Weber Q. The grills are blazing, the savings are real. See you at Weber store, 86 Lun Ave, Mount Wellington. Sale finishes Monday.
12: settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuko.
2: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: बस 10 मिनट ही बाकी है समय हमारी स्टूडियोज में 7 बजने में. इधर हमने जो सवाल पूछा था उसके आंसर्स आए हैं ज़रूर. और अश्मिता है, स्वास्तिका, रोनल्ड, फजीला, जेस, प्रीति, आप सबने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं. थैंक यू सो मच. कूली नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. हाउएवर अभी भी कुछ गलत आंसर्स आए क्योंकि कुछ ने जुड़वा ही लिखकर हमारे पास भेजा ना.
1: जुड़वा तो नहीं है. आई डोंट थिंक गोविंदा ने ऐसी किसी फिल्म में काम किया है.
0: जुड़वा में सलमान खान थे.
1: हाँ, सलमान खान और फिर इधर वरुण धवन जुड़वा 2 में थे.
0: हाँ, जुड़वा 2 में थे. या बट कूली नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें गोविंदा करिश्मा कपूर ने काम किया था. एंड रीमेक हुआ 2020 में, तो उसमें मेरे ख्याल से देयर वाज सारा अली खान एंड वरुण धवन.
1: ओके,
0: राइट. फिलहाल चलिए आपको याद दिला देते हैं कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें हम लेकर आते रहते हैं. रेडियो पर तो होता ही है आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम, लेकिन साथ ही साथ यू कैन गेट एक्सेस टू आवर पॉडकास्ट्स एज वेल.
1: बहुत सारे पॉडकास्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं जिन्हें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. और इनमें शामिल हैं जो सेंडी और रुजबे का इलेक्शन स्पेशल हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं. जिन्होंने उन्होंने अभी हाल ही में बातें की हैं सनी कौशल से, जो राइजिंग क्राइम, रिपीट ऑफेंडर्स से लेकर इमिग्रेशन, वर्कफोर्स शॉर्टेज और द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सभी चीज़ों के बारे में बातें की हैं. सुनना है आपको, ड्राइव लिखकर 5599 पर आप भेज सकते हैं. और जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: आज के मौसम fine weather रहेगा, apart from some morning fog. और शाम के समय तो बहुत ही खूबसूरत धूप खिली रहेगी. Sunset 7:31 PM पर temperature 9 degrees है फिलहाल. High 18 expected later today. Overnight 11 degrees आज temperature जो है ये रहने वाला है.

0: Excellence Experience. Call 0800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
3: 3 minutes हो रहे हैं 7:00 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग मैडनेस जो आपके लिए मेगा फाइनेंस की ओर से हम लेकर आते हैं परमेश और उनकी टीम से आप बातें कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की सर्विस की अगर आपको ज़रूरत है और इस घंटे तमाम चीज़ें होंगी बट किकिंग ऑफ विजय सलगांवकर और अजय देवगन अभी तो ट्रेंड कर रहे हैं सभी जगह पर क्या नाम है दृश्यम 3
4: द कंक्लूजन सॉरी या नॉट दृश्यम 3
3: उसके लिए और उसके साथ उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में एक खबर आई है जो उन्हें अब और भी ट्रेंडिंग बना रही है
4: किन के बारे में
3: अजय देवगन और काजोल
4: अच्छा क्या
3: उनकी फैमिली के बारे में इनका एक हॉलीडे होम है
4: ओके
3: विला एटेना और ये जो विला है ये गोवा में है नॉर्थ गोवा और इट्स अवे फ्रॉम जो क्राउडेड बीच और वो सारी चीजें हैं और यहाँ पर एक दिन रुकने का कॉस्ट मालूम है कितना है
4: कितना
3: 80,000 rupees
4: वाओ एक दिन का
3: हाँ
4: 80,000 rupees
3: हाँ
4: इट्स मोर देन 1,000 dollars न्यूजीलैंड डॉलर्स ना
3: न्यूजीलैंड डॉलर्स में अगर देखें इट विल बी अराउंड 1,400 dollars समथिंग
4: या दैट्स व्हाट आई सेड मोर देन 1,000 dollars इन न्यूजीलैंड या
3: हां 1,400 dollars पे नाइट स्टे यहां का हो सकता है
4: क्योंकि ये इनका घर है दैट्स व्हाई वो घर इज वेरी नाइस
3: घर मस्ट बी नाइस है विला है ना और ये 5-bedroom विला है 5 bathrooms और इसे लिस्ट किया गया है एज एन एंटायर विला रादर देन इंडिविजुअल होटल रूम्स और यहाँ पर 5 king beds कैपेसिटी ऑफ 10 guests बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए अवेलेबल हैं बट फोटोज जो हैं ये दिखने में तो कमाल के रख रहे हैं लग रहे हैं प्राइवेट स्विमिंग पूल एंड यू नो बहुत हाई क्लास आलिशान
4: जिस तरीके से आपने ये स्टोरी बेची थी शुरुआत में
3: हाँ.
4: ये कंटेंट वैसा नहीं है
3: खोदा पहाड़ निकला चूहा
4: या काइंड ऑफ बट जिस तरीके से एज़ सेइंग कि आपने बेची थी ना कि उनके फैमिली के बारे में खबर ऐसा लगा कुछ हो गया लाइक समथिंग बिग हैज हैपेंड
3: हां इट इज बिग ना
4: इट इज वेरी बिग एंड एक्सपेंसिव आई एग्री बट ये वैसा ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं है ना मुझे लगा कंट्रोवर्शियल है कुछ ऐसा कुछ हुआ है नेवर्थलेस इंटरेस्टिंग है और भी खबरें जो है आपके लिए हम जरूर लेकर आते रहेंगे इनफैक्ट अगर यही न्यूजीलैंड के बारे में बातें करें तो एक लार्ज वेजिटेशन फायर जो है इट हैज बीन स्प्रेडिंग अप द हिल्स बाय लेक वाकाटीपू और यहाँ पर फायर फाइटर्स ने कहा है कि दे हैव प्रोटेक्टेड द वॉल्टर पीक होमस्टेड एक हिस्टोरिक कॉलोनियल लेक साइड वेन्यू है ये अलॉन्ग विद सम अदर वेन्यू बिल्डिंग्स इन द एरिया और ये जो आग है ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है इट इज़ नॉट कंटेन्ड एंड ग्राउंड एंड एयर ऑपरेशंस जो है ये आज सुबह वापस से इन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश जो है ये करने काम करने की शुरुआत कर दी है ऑलरेडी
3: तो जो भी डिटेल्स होंगे ये हम आपको जरूर देंगे पाइनएप्पल ऑन पिज्जा ये तो बरसों पुराना डिबेट है
4: हिस्टोरिकल डिबेट है पता नहीं कब से होता आ रहा है
3: अब शुरू हो रहा है एक नया डिबेट
4: क्या
3: बताएंगे आज आपको ट्रेंड पेट्रोल में
4: ओके सो वी विल डू द डिबेट एज वेल बट फिलहाल के लिए याद रहे इस घंटे हमारे साथ 1,000 dollars कैश अगर आपको जीतना है ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून तो इसके लिए आपको करना क्या है 1,000 dollars डू यू वांट टू विन इट एंड इफ यू डू वांट टू विन इट तो सुनते रहिएगा क्योंकि मौका इसी घंटे हम आपको देंगे

0: 234234. Rashi Vibes.
1: सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आपको काम पर काफ़ी आप पर प्रेशर हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टिक टू योर प्लान्स. और बिजनेस में कोई लेन देन करते समय, कोई डील करते समय बहुत केयरफुल आपको रहना होगा. आज अपने खर्चों पर कंट्रोल करना भी जरूरी होगा.
2: प्रेशनी टोरस, आपके लिए कहा गया नौकरी में कुछ बड़ा बदलाव होगा जिसके साथ आपको एक अच्छा अवसर जो है ये भी मिलेगा. दूसरी ओर आपके लिए कहा गया है कि आज पार्टनरशिप के मामले में काफ़ी फायदा आपके हाथ लग सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं. एज फार एज रोमांटिक रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड, तो आज बात थोड़ी आगे बढ़ेगी और रिश्ते में एक मजबूती, एक इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ये भी आप नोटिस करेंगे.
1: मिथुन यानी जेमिनी, आज आपका टैलेंट खुलकर लोगों के सामने आएगा. फैमिली का सपोर्ट आपको काफी मिलेगा, इससे हिम्मत भी आपकी बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है.
2: और इसके बाद कर्क ने कैंसर, पॉजिटिव सोच और काम में सफलता आपको मिलेगी जरूर. मन लगाकर काम करें, बस ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चों के मामले में कहा गया है कि सफलता जो है ये आपको मिलेगा और इसकी वजह से यू विल फील वेरी प्राउड टुडे, काफी खुश रहेंगे आज आप.
1: सिंह यानी लियो, आज काम पर अपना जो संयम है, अपना पेशेंस जो है ये बनाए रखें, गुस्सा ना करें. बिजनेस डिसीशंस सोच समझ कर ही लें. घर की सुख सुविधाओं पर पैसे आप खर्च कर सकते हैं और आज जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उस पर अच्छी तरह से आपको सोचना और विचार करना है.
2: उसके बाद देखा जाए कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि जो क्षमता आप में है, मतलब जो कैपेबिलिटी आप में है, ये अब हाई टाइम है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पहचाने और उस पर काम करें. बिकॉज इफ यू कीप इग्नोरिंग तो कहीं ना कहीं आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जितना आप हासिल कर सकते हैं. परिवार में रिश्ते और मजबूत होंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको काफी राहत मिलेगी और इससे आपका मन भी खुश रहेगा.
1: तुला यानी लिब्रा, आज ऑफिस में आपके आइडियाज सभी को काफी पसंद आएंगे, उनको प्रेज भी किया जाएगा. बिजनेस में अच्छा खासा पैसों का फायदा हो सकता है और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी.
2: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आपके करियर में कुछ नए अवसर यानी मौके आपको मिलेंगे जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. बिजनेस है तो कोई बड़ी डील आप फाइनल करेंगे जिसके चलते यू विल बी वेरी हैप्पी. और निजी संबंधों में यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में और भी स्ट्रॉन्ग आप प्रेजेंस फील करेंगे और ज्यादा मजबूती आप महसूस करेंगे.
1: धन यानी सेजिटेरियस, आज पारिवारिक खर्चे बढ़ सकते हैं. पहले से आप बजट बना ले भाई कि क्या आप स्पेंड कर सकते हैं. काम पर केयरलेस ना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है अच्छी तरह से उन्हें पढ़ें और बिजनेस में सोच समझ कर ही आज अतिरिक्त पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो है ये आप इन्वेस्ट करें.
2: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि नौकरी में आपके जो जहां भी आप नौकरी करते हैं आपके जो कलीग्स हैं इनके सपोर्ट की वजह से आपका काम आज पूरा होगा. इनफैक्ट आज आपके लिए कहा गया है कि दोस्तों के साथ भी बहुत अच्छा समय बीतेगा, ऐसा मौका आपको मिलेगा. एंड दीज डेज ये पल जो होंगे आप अपने दोस्तों के साथ बिताने वाले हैं ये मेमोरेबल रहेंगे आपके लिए.
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, काम पर तो आज आपका ही बोलबाला होगा, आपका दबदबा होगा, एकदम तरक्की भी मिल सकती है. बिजनेस में कोई बड़ा डील जो है आपके हाथ लग सकता है. परिवार में आपके एडवाइस को माना जाएगा और फाइनेंशियली भी दिन काफी अच्छा और मजबूत रहेगा.
2: और आखिर में मीन एंड पाइसेस, किस्मत आपका साथ दे रही है जिससे कि आपका काम आसानी से पूरा होगा. बिजनेस के मामले में आगे बढ़ने का मौका है, बिजनेस को ग्रो करने का मौका है. धार्मिक कामों में भी आज आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा. आज बहुत रिलीजियस फीलिंग जो है ये आपको आएगी. तो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स. उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
4: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं है उसको.
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं. अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया.
6: अभी ब्रांड हो गया ना.
5: रुस्बे के बाल लगे उससे.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: Discover the magic at Go Bananas Childcare, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ye hamesha aapke paas hai. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. To jaldi join karo aur enjoy karo special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
8: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
9: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. लॉजिक फाइनेंस के गुरु कुंडला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
10: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई. कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु कुंडला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800 564424.
11: Hey you with the ears, your skinny phone plan now has rewards. So all your scrolling, tapping, babe, wake up, look at this meme. Ha-ha reacts and thumbs up from Dad will actually pay off. Join Skinny and renew 3 times in a row to collect up to 1,000 Everyday Rewards points. Skinny and Everyday Rewards accounts must be linked. See skinny.co.nz for eligible plans and T's and C's. Get the Skinny. Happy,
12: Shop fresh deals at New World North Island this week. Get skinless chicken thigh cutlets, $11.99 per kilo. Or avocado, $2 for $2.50. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manuku. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manuku.
0: Celebrity Alarm. Hit it.
2: 21 मिनट्स आफ्टर 7, आज जो आवाज़ आपके लिए लेकर आई ये तो बहुत ही जानी पहचानी है, बट जिस अंदाज में इन्होंने अपनी बातें कही हैं वो बहुत सॉफ्टली बोली है, तो थोड़ा ऐसे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा टू फिगर आउट. एंड अ वेरी पॉपुलर पर्सन, सो आई डोंट नीड टू से मच अबाउट हु दिस पर्सन इज. बस आवाज़ सुनिए और फिर अपने जवाब हमें बताएं आप.
13: मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में.
2: तो आपने आवाज सुन ली, अब आपको बताना है कि इसकी आवाज है.
1: वेरी पॉपुलर भाई, वेरी वेरी पॉपुलर.
2: इसीलिए तो मैंने बोला ना कि ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं.
1: हाँ बिल्कुल नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. आप सोचें कि ये कौन हो सकती है ताकि मुझे भी पता चले.
2: आई कांट बिलीव यू डोंट नो हु दिस पर्सन इज.
1: आई डोंट नो, इसमें बिलीव करने की क्या बात है.
2: इट्स शॉकिंग क्योंकि इनकी आवाज लोग बहुत आसानी से पहचान लेते हैं.
1: अच्छा फिर से सुनाइए जरा, देखिए मैं आसानी से.
2: हाँ, pay attention, you have to listen to it very carefully, ठीक है.
13: मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं है, पर उस मोहब्बत से दूर चले जाना वो हमारे बस में.
2: तो अब हमने आपको दोबारा ये आवाज सुना दी है, अभी भी आपको पता नहीं चला. लेकिन कुछ
1: किसने बोला मुझे पता नहीं चला?
2: आपने टेक्स्ट प्लेटफॉर्म देखा होगा तो पता चला होगा.
1: नहीं अभी टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे नहीं गया हूँ मैं.
2: ठीक है, तो अभी आप सब जितने भी लोगों ने सुन ली है इनकी आवाज, अब आप बताइए कि ये कौन है. इफ यू हैव एन आंसर टू योरसेल्फ तो जल्दी से हमारे पास आप टेक्स्ट कर दे. आपको 5599 पर अपना जवाब जो है ये भेजना है, ठीक है, 5599 पर. थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या किसी ने इनकी आवाज पहचानी है कि नहीं. एज आई सेड, ये जो भी है बहुत बहुत फेमस है, तो वुडंट गिव एनी क्लूज today or wouldn't say much about this person. Bas itna ki if you've identified, jawab zarur bheje hamare paas. Coming up very shortly,
1: news headlines aapke liye hum lekar aayenge.
0: Bollywood's most wanted.
14: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
3: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 1-800-634-234.
1: News headlines.
2: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, कल 2026 जनरल इलेक्शन से पहले प्रथम जो लीडर्स डिबेट है ये काफी दिलचस्प रहा। टीवीएनजेड लीडर्स डिबेट में क्रिस्टोफर लक्सन और क्रिस हिपकिंस के बीच ट्रस्ट वोदिनस, इन्फ्लेशन और रेस इश्यूज पर जोरदार बहस हुई, जिसमें स्टूडियो पैनल के 49% लोगों ने हिपकिंस को विनर माना। डिबेट के दौरान हिपकिंस ने नेशनल पर गलत वादे करने का आरोप लगाया, जबकि लक्सन ने लेबर के इकोनॉमिक और हेल्थ पॉलिसीज पर सवाल उठाए। इलेक्शन से एक महीने पहले हुए इस बहस में दोनों नेताओं ने जीएसटी ना बढ़ाने और AI रेगुलेशन पर साथ काम करने की बात की, जबकि फ्यूल प्राइसेस और हाउसिंग पर दोनों के विचार अलग रहे। फ्लाई दुबई फ्लाइट FZ1073 में कैप्टन पर हमला करके कंट्रोल लेने की कोशिश करने वाले अलेज्ड को पायलट हमाम अल हमामी 2018-2019 में न्यूजीलैंड में 175 दिन बिता चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर माइकल जॉनसन ने कंफर्म किया है कि हमामी यूके बेस्ड कंपनी के तहत अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग का एक हिस्सा पूरा करने के लिए न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीजा पर आया था। पैसेंजर्स और क्रू के जरिए को पायलट को ओवरपावर करने के बाद आगे आई इस बात के बाद न्यूजीलैंड पुलिस अब हमामी के पुराने रिकॉर्ड्स और

0: मामले की जांच कर रही है। रग्बी लीग वर्ल्ड कप अगले हफ्ते से शुरू होने को है। अभी पूल की ओर अगर देखें तो पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, फिजी और न्यूजीलैंड की टीमें हैं, जबकि पूल बी और पूल सी को कंबाइंड रखा गया है। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, लेबनान, पापुआ न्यू गिनी, सामोआ और टोंगा की टीमें हैं। पूल बी और पूल सी की टीमें जो हैं अपोजिंग पूल्स के तीन अपोनेंट्स के साथ खेलेंगी और उन मैचेस के बाद टॉप टू टीम्स सेमीफाइनल्स के लिए इस ग्रुप से क्वालिफाई होंगी। मैचेस की ओर अगर देखें तो रग्बी लीग वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है ये अगले बृहस्पतिवार को रात 10 बजे से अलियंस स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। रग्बी लीग वर्ल्ड कप पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau. Hum. Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: A little cloud, mainly fine with a high of 20 today. Into the city at the moment, so looking mostly okay. Southern 35 minutes Manukau to town. Slow Papakura on and off to the city. A little heavy from Mount Wellington. Northwestern, 28 minutes Massey to the city. Slow from Te Aratu, heavy Te Aratu South and St. Luke's. Northern, 22 from Constellation. Slow at Silverdale and most of the way Constellation to the bridge.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. KitchenMania.co.nz. T's and C's apply.
5: Coffee? The usual?
6: How about the unusual?
7: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
9: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000. Yeah. उससे ज्यादा फाइनेंस वर्ल्ड के साथ एंड यू ऑटोमेटिकली इन द ड्रॉ टू विन अ ट्रिप टू बाली फॉर टू 5 days 4 nights दो लकी विनर्स हर एलिजिबल होम लोन ऑफ 500,000 या उससे ज्यादा ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ में एंटर करता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। विजिट financeworld.co.nz/bali। फाइनेंस वर्ल्ड लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
10: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Get there in Apex world-class comfort with Fiji Airways, where the luxuries start from the moment you book. Get fast-track security, extra baggage and priority check-in. Once you're there, enjoy even more time to relax with resort check-in. Complete your flight check-in from various Fiji resorts with your luggage transported securely to the airport. Travel in style with one of the world's top 10 airlines. Visit fijiairways.com.
11: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
1: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera hi birthday hai, chalo line mein aa jao.
12: Happy birthday to you.
0: A very very happy birthday, many many happy returns of the day. Aaj 7th of October, sabse pehle Manjulaben Oza ji Buckland Beach Road mein aur Nisha Kapoor Mount Wellington mein apna birthday aap celebrate kar rahe hain. Khushi ke is mauke par aapke tamam parivar walon ki or se shubhkamnaen aur badhaiyan mili hain. Hamari or se bhi aaj ka ye special day aapko anek bar shubh aur mubarak ho.
14: Happy birthday, many many happy returns of the day aapko hum zarur wish kar rahe hain. On the other hand, aaj agar dekha jaye to apna birthday
5: सेलिब्रेट कर रहे हैं डेनियल इरव डेनियल जॉर्ज जो कि हो चुके हैं 7 साल के एंड सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू डेनियल. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. पापा एडविन, मम्मी है आपकी रवीना और जितने भी परिवार वाले हैं स्पेशली आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उधर फीजी में, आपके ग्रैंड फादर हैं, इनकी ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और समस्त परिवार वालों की ओर से एंड ऑल योर फ्रेंड्स इनकी ओर से भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हम जरूर विश कर रहे हैं.

0: 1800-634-234.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपकी लिमडी किरा रहे हैं. It's 23 minutes away from 8 for now. आज का सेलिब्रिटी अलार्म आपके लिए हमने प्ले किया और हमने कहा कि अनुमान लगाइए कि ये किसकी आवाज है. So we've got a few people. कवनीत है, मोविन, साथ में शाइना, माली, सनीता है, आरना है, जशिका है, अजय का भी मैसेज आया है, एनजी है, लीना है, सनी ने भी अपना जवाब भेजा है. अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया इनका आंसर तो.
2: Okay.
1: उसके अलावा कविता है, शीतल है, क्रिस्टीन है, प्रतिका ने भी अपना जवाब भेजा है, दीपाशना फ्रॉम पापाकुरा, इनका भी मैसेज आया है. तो जितने भी लोगों ने हमारे पास अपनी अपनी मतलब अपने अपने आंसर्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच. आप सभी का नाम या आप सभी के नाम हमने चेकआउट कर लिए हैं. कुछ लोगों ने जवाब भेजे लेकिन नाम नहीं लिखा है, पर शुक्रिया आपने आंसर्स हमारे पास भेजने के लिए. सो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. आज की हमारी सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म वाज नन अदर देन ऐश्वर्या राय बच्चन. इनफैक्ट इनके बारे में खबर भी आ रही है कि रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ये गए थे अपनी बेटी आराध्या के साथ अरियाना ग्रांडे का शो जो है ये देखने के लिए. अपेरेंटली अभिषेक बच्चन ने सेड कि उन्हें अरियाना ग्रांडे के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना तो उनके किसी भी गाने का एक लाइन तक वो जानते हैं, पर फिर भी अपनी बेटी के कहने पर वो गए और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया ये शो अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ. राइट नाउ गेटिंग बैक ऑन टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, दिस इज मॉर्निंग मैडनेस. और ऐसा करते हैं अभी आपको सुनाते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इन्जॉय दिस वन, क्योंकि इसके ठीक बाद आपके लिए लेकर आएंगे एक बहुत ही बेहतरीन मौका ऑफ यू गेटिंग अ चांस टू गो इन अ ड्रॉ टू विन $1,000 कैश, ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून.
3: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपर.

0: बहुत ही खूबसूरत ये आज का हमारा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आपके लिए हम लेकर आ रहे थे, और इतना खूबसूरत गाना ये है कि जब भी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दीपाली सहाय की आवाज़ में आपके लिए इस गाने को हमने आज सुबह सुबह पेश किया फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊँगा। उम्मीद है यू एंजॉयड द सॉन्ग। और अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था ना कि मौका आपको देंगे $1,000 कैश जीतने का। फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून, विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस दिस दिवाली विद हम, जहां पर फ्राइडे 30 अक्टूबर को सारे ड्रोज होंगे और पता चलेगा किसने क्या जीता है। पर अगर जीतने के लिए अपना नाम आपको सुनना है व्हेन द ड्रोज हैपन, तो एटलीस्ट आपको कॉम्पिटिशन में हिस्सा तो लेना पड़ेगा। और हिस्सा लेने के लिए आज का जो पहला मौका हम द शो हम आपको दे रहे हैं वो है ऑल थैंक्स टू फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एसेंशियल विटामिंस। Fortune fuels every win, big or small, bring home the fortune. Aur fortune ki or se, we are giving away $1,000 cash, जो आप में से किसी एक के हाथ लग सकता है अगर आप हमारे साथ पार्ट लेते हैं फेस्टिवल फॉर्च्यून में।
1: जस्ट इमेजिन दिवाली से एक हफ्ते पहले आपके नाम ये पैसे हो जाएंगे। आएगा कब आपके अकाउंट में वो तो जो प्रोसेस है पूरा होने के बाद, लेकिन गारंटीड अगर आपका नाम निकलता है तो दिवाली जो है ये नवम्बर महीने के पहले हफ्ते में है और ड्रो जो है 30 अक्टूबर को होगा, तो उससे एक हफ्ते पहले ही आपको पता चल जाएगा भाई दिवाली आने से पहले ही लक्ष्मी आ गई।
0: बिल्कुल। तो अगर आपको हमारे साथ इसमें हिस्सा लेते हुए जीतना है $1,000 कैश, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स का टाइम, और विद इन 5 मिनट्स आपको हमारे पास लिखकर भेजना है सबसे पहले फॉर्च्यून, FORTUNE, फॉर्च्यून इज द कीवर्ड, ये लिखें। फिर उसके बाद में आप स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और हमारे पास सेंड कर दीजिए ऑन 5599। वी ट्राई टू कीप इट सिंपल ताकि आपके लिए पार्ट लेने में आसानी हो। तो फॉर्च्यून लिखें, अपना नाम लिखे 5599 पर सेंड कर दे, और 5 मिनटों का समय है आपके पास इसमें पार्ट लेने के लिए। इट्स 7:45 राइट नाउ, और 7:50 पर शार्प हम ये कॉम्पिटिशन रैप अप कर देंगे।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं एंड फॉर्च्यून की ओर से आप जीत सकते हैं $1,000 कैश दिस दिवाली फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में हमारे साथ ऑन हम, जहां पर आपको ये मौके हम जरूर दे रहे हैं। और हमने कहा था कि अगर आपको फॉर्च्यून की ओर से ये $1,000 कैश जीतना है इस दिवाली, तो फॉर्च्यून लिखकर FORTUNE सबसे पहले ये लिखकर अपना नाम लिखकर हमारे पास सेंड करें 5599 में या 5599 पर। और ऐसा करने के लिए आपके लिए पास फाइनल 2 मिनट्स है,
2: अंतिम 2 मिनटों का समय जो है ये आपके पास है, तो जल्दी से फॉर्च्यून और अपना नाम लिखे 5599 पर भेजें। अ वेरी गुड मॉर्निंग, योगेंद्र हैं पुकेते हैमिल्टन से
1: जी,
2: पहली बार इनका मैसेज जो है ये मैं पढ़ रहा हूँ ऑन द ब्रेकफास्ट शो, इट्स नाइस टू हैव यू ऑन द शो। अच्छा लगता है जब ऑकलैंड के बाहर से भी मैसेजेस हमारे पास आते हैं।
1: और ये जो हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून है इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया कि इट्स नॉट अ मस्ट दैट यू हैव टू बी इन ऑकलैंड टू पार्टिसिपेट, आप आउट ऑफ ऑकलैंड से भी भाग ले सकते हैं, इफ यू विन तो आपके प्राइजेस आप तक पहुंचाए जाएंगे।
2: सो रिमेंबर फाइनल 2 मिनट्स, फॉर्च्यून लिखें,
1: अभी तो 1 मिनट बचा है।
2: हाँ, फॉर्च्यून अपना नाम बस भेजने का नंबर 5599 है।
1: Right, I'm waiting till that 1 minute time is up ताकि हम कंपटीशन रैप अप करें, और जब तक कि ये 1 मिनट पूरा होने वाला है तब तक अपने मैसेजेस आप भेजते रहे। रिमेम्बर टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए आप hum.rover.nz विजिट कर सकते हैं, एंड ये भी याद रखें कि जब भी आप टेक्स्ट करते हैं तो स्टैंडर्ड कैरियर रेट अप्लाई। 30 seconds to go, let's see 30 seconds के अंदर अंदर कितने लोगों की एंट्रीज आती है जहाँ पर there is a chance for you to win $1,000 cash all thanks to fortune this Diwali festival of fortune में, जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हम पर $5,000 worth of prizes जीतने का मौका। Final 15 seconds to go, let's see आपके messages आ तो रहे हैं, and here we go 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and that's it, रैप अप कर रहे हैं फॉर्च्यून की ओर से $1,000 जीतने का जो मौका आपको हम दे रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो इस कंपटीशन को यहीं पर। और जितने लोगों ने हमारे साथ पार्ट लिया थैंक यू सो मच, रिमेंबर कि अभी भी आपके पास बहुत से मौके हैं, इनफैक्ट ऑन द ब्रेकफास्ट शो एक और एक शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसे जीतने के लिए आपको क्या करना है जानने के लिए यू हैव टू कीप लिसनिंग, स्टे विद अस, क्योंकि हम आपको टाइम टाइम पर अपॉर्चुनिटी जो है ये जरूर देते रहेंगे। बाय द वे सुबह सुबह हम फ्यूल के बारे में बातें कर रहे थे ना, तो आज वेंसडे है और आज बीपी सर्विस स्टेशंस जो है दे आर डूइंग अ 20 सेंट्स ऑफ पर लीटर ऑन फ्यूल टुडे, और कालटेक्स जो है दे आर डूइंग 12 सेंट्स ऑफ पर लीटर ऑन फ्यूल, और भी बड़े बड़े स्टेशंस हैं जो ऐसे सिमिलर डील्स दे रहे हैं। सो अगर आज आप फिलअप करने वाले हैं, फ्यूल भरने वाले हैं अपनी गाड़ी में, चेक कर लीजिएगा आसपास कहां पर आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। एंड वी हैव स्पोकन अबाउट दिस ऐप सो मेनी टाइम्स, क्या नाम है इसका, गैस पाई GASPY। अगर आप ये ऐप डाउनलोड कर ले अपने फोन पर एंड इसके जरिए यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि आपके आसपास जो सर्विस स्टेशन है वहां पर सबसे चीपेस्ट में फ्यूल आपको कहां पर मिलता है ऑन द डे दैट यू आर प्लानिंग टू फिलअप, एंड उस हिसाब से आप यू नो अच्छा खासा जो यू कह सकते हैं सेविंग्स ये कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फ्यूल्स फ्यूलिंग अप रादर देन दैट। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ रहिएगा, बने रहिएगा जहां पर। क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं?
2: मैं ढूंढ रहा हूँ फ्यूल कहाँ सस्ता है ना।
1: अच्छा अभी बताइए कहाँ पर सबसे सस्ता दिखा आपको सोफा।
2: अभी तक तो मुझे हेंडरसन में दिख रहा है, आई डोंट नो
1: कितना है, 91 कितना है?
2: अरे मैंने चेंज कर दिया, मैं अब बाकी सब इसमें चेक कर रहा हूँ कहाँ सस्ता मिलेगा ना, तो मैं वही जाकर आज फ्यूल अप करूंगा।
1: ठीक है, तो अगर आपको भी अपनी गाड़ी में फ्यूल भराना है,
2: आप भी बताइए हमें आपको सबसे सस्ता फ्यूल जहाँ मिलता है वो भी टेक्स्ट करके हमें बता दो। आई नीड टू फ्यूल अप टुडे अदरवाइज टुमारो आई वोंट कम टू वर्क।
1: या यू नीड टू हेल्प अदर्स ना, आपको कहीं पर पता हो सस्ता मिलता हो तो जरूर बताइए। एंड ऑन द अदर हैंड फ्यूल की बातें हमने की है, तो फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में $1,000 फ्यूल वाउचर भी जीतने का मौका है, और ये अपॉर्चुनिटी हम आपको देंगे वेरी सून ऑन द ब्रेकफास्ट शो।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Super City Auckland में आज का मौसम fine रहने वाला है, apart from some morning fog, और उसके बाद खूबसूरत मौसम experience करेंगे, bright sunny afternoon. 7:30 PM पर होगा आज का sunset. 10.9 degrees है temperature, 18 degrees high and 11 degrees overnight रहेगा आज का temperature.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grain and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, big on style, great on price, perfect for your home. Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: तो चलिए आज का ट्रेंड पेट्रोल जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं, और ट्रेंड पेट्रोल में आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में बातें करना चाहते हैं. इट्स ट्रेंडिंग एंड देयर आर टू रीजंस व्हाई इट्स ट्रेंडिंग. पहली चीज़ तो मैं आपको बता दें कि दिल्ली में काफ़ी प्रोटेस्ट जो है ये फ़िलहाल चल रहे हैं. एक महिला है या फिर महिलाओं ने इनफेक्ट मिलकर एक प्रोटेस्ट जो है ये शुरू किया है, ताकि वो फील कर सके मोर सेफ. एंड ऑफ कोर्स इन अ सिचुएशन जहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले जो है ये सामने आए हैं, तो इसको लेकर चलते भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, अपना जो राय व्यक्त किया है कि दिस इज़ नॉट राइट एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग. बट आज ट्रेंड पेट्रोल में इसके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं हम,
3: पता नहीं,
1: क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ये तो ऑफ कोर्स फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जारी है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने जिस तरीके से अपने आइडियाज जो है ये व्यक्त किए हैं. सो महिलाओं ने प्रोटेस्ट के दौरान कई स्लोगन्स लिखे, जैसे हमारी मांगे पूरी करो,
3: मजदूर यूनियन हाय हाय.
1: मजदूर यूनियन हाय हाय नहीं होता है, मजदूर यूनियन जिंदाबाद होता है.
3: अच्छा हाँ, मजदूर यूनियन.
1: जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट या जिसके अगेंस्ट खड़े के प्रोटेस्ट करते हैं उनको हाय हाय बोलते ना. प्रोटेस्ट में जाने लायक नहीं है, माफ कीजिए, आप प्रोटेस्ट में नहीं शामिल हो सकते. एनीवेज, सो ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट बहुत से स्लोगन्स हैं जो महिलाओं ने यहाँ पर बोले और जो बहुत वायरल हो रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं अपेरेंटली. उनमें से एक, शर्म नहीं है मर्दों में, औरत क्यों है पर्दों में, ये एक स्लोगन है जो जिसके जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं.
3: सही है, हाँ.
1: देश की बेटियों जाग जाओ, मर्द दिखे तो भाग जाओ.
3: ना ये नहीं,
1: ये सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है. बस एक कोक दो आइस, मर्दों पे भरोसा थिंक ट्वाइस, बिकॉज इट्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिचुएशन, राइट. अच्छा हाँ, उसके बाद दादा लड़ गए गोरों से, हम लड़ेंगे छोरों से.
3: दिस इज गुड टू.
1: उसके अलावा
3: लिख कौन रहा है ये सब,
1: ये पता नहीं कौन लिख रहा है. आई जस्ट केम अक्रॉस बिकॉज़ दीस आर क्वाइट ट्रेंडिंग राइट नाउ. हमारे कपड़े हमारी मर्जी, मर्द जात क्यों बन रहे हैं दर्जी. ये मैंने बोला थोड़ा गड़बड़ तरीके से, बट दिस इज आल्सो वेरी कैची. एक जो बहुत वायरल हुआ, एक स्लोगन बहुत ज्यादा वायरल हुआ, विच वॉज एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वन?
3: मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बट आई हैवंट गोन एंड सीन एनी वीडियोस ऑफ थिंग्स.
1: तो ये, अरे ये तो पूरा वाइब, मतलब लोगों ने इसके गाने तक बना दिए, लाइक फुल ऑन डीजे डिक-चिक म्यूजिक के साथ, एंड पीपल आर एक्चुअली नॉट जस्ट प्रोटेस्टिंग बट प्रोटेस्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे,
3: म्यूजिकल
1: वे, आई वुड से. आई मीन इस प्रोटेस्ट में नहीं, लोग जो वीडियोज बना रहे हैं उनको मैं बोल रही हूँ, दे आर सपोर्टिंग द प्रोटेस्ट बट इन वेरी क्रिएटिव म्यूजिकल वेज. एंड पीपल हैव सेड कि यार ये जो प्रोटेस्ट चलते हैं, ये जो क्रिएटिविटी के मामले में स्लोगन्स जो लिखने चाहिए, ये औरतों को ही दे देने चाहिए स्लोगन्स लिखने के लिए, बिकॉज क्या लिखते हैं वो,
3: क्या क्या क्या पता, शायद किसी मर्द ने लिखा हो.
1: नहीं, प्रोटेस्ट में औरतों ने लिखा बोला है.
3: We as men, we are supporting the protest.
1: यहाँ पे भी क्रेडिट ले लो आप.
3: नहीं,
1: इट्स ओके.
3: मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं बोल रहा हूँ कि वी एज मेन आर प्रोटेस्टिंग, आई मीन सॉरी सपोर्टिंग.
1: यस, मेन हैव सपोर्टेड द प्रोटेस्ट.
3: तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मर्द नहीं लिख सकता?
1: बिकॉज़ ये जो महिलाओं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, दोज वर द पीपल हु आर देयर हु आर सेइंग इट, हु हैव एक्सप्रेस्ड इट, वहां से ये बाकी जगहों तक पहुंचा, जिसके बाद चलकर पीपल हैव सपोर्टिंग इट एंड बीइंग पार्ट ऑफ इट. एनीवेज, लेट्स नॉट गेट into that, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लाइन है, मैंने लिखे नहीं है, पर मुझे ये मिला तो मैंने सोचा ये मैं आपको सुनाऊंगी। गौर फरमाइएगा। छोलो छोलो
3: छोलो भटूरो इतने ध्यान से मैं सुन रहा था यार।
1: अच्छा दोबारा से टेक टू। गौर फरमाइएगा। छोले भटूरे दही का गिलास, मेरा पति ही मेरी सास। एक और एक है। हरी चटनी के साथ पकोड़े, सारे वादे इसने तोड़े।
3: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
1: लास्ट वाला इज सो रिलेटेबल एंड आई रिलेट इट विद अ लॉट, एंड ये मेरी ओर से आपके लिए, ठीक है। अचार के साथ एक पराठा, मुझसे लड़कर खुद सो जाता। ये अच्छा था ना?
3: Nice.
1: But anyways,
3: you made me laugh this morning.
1: I made so many people laugh. पता नहीं ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ. But anyways, so yeah, these slogans are trending quite a lot, and it's a good thing in a way as well, क्योंकि exposure जो है ये तो मिल ही रहा है, but people are actually putting their point across. Putting aside all the tension, but really want to say कि वो क्या feel कर रहे हैं, but लोगों तक भी ये बात पहुँच रही है। But on the other hand, creativity की तारीफ बहुत हो रही है, and I think that one line, एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, बहुत ज़्यादा trend कर रहा है।
3: और कौन कौन सी लाइनें थी इनमें?
1: अरे यार मैंने तो वो बंद ही कर दिया, इसमें बहुत सी लाइनें थी, but मुझे तो वही वाला अच्छा लगा।
3: मुझे दूसरा वाला कोई अच्छा लगा था।
1: नहीं मुझे तो ये वाला अच्छा लगा था ना, अचार के साथ एक
3: मजदूर यूनियन हाय हाय अच्छा।
1: एनीवेज नहीं, चलिए तो आज का ट्रेंड पेट्रोल आपके लिए हम लेकर आ रहे थे। 9 मिनट हो चुके हैं 8:00 हमारे स्टूडियोज में। दिस इज द रश आवर। थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक आपके लिए हम लेकर आएंगे।

0: हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
1: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
0: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
1: इंटरेस्टिंग। और कुछ?
0: बस इतना ही।
1: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
2: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, a household name in finance and insurance industry, and Fortune. Bring home the fortune.
3: The savings are still going big at Rebel's end of season sale. Score up to 50% off big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Grab huge savings for back to school. Race into store today. Only at Rebel Sport. See you online for T's and C's.
4: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
5: MediaWorks Complaints, how can I help?
6: Yeah, hi, you guys made some ads for my local business.
5: Nice.
6: And you talked me into creating this funny character.
5: Great.
6: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
5: Are you?
6: Yes.
5: Are you Bobby the Baker?
6: Yes.
5: What's that thing you do again?
6: Stop it.
5: You bring the mouth.
6: Stop it.
5: I'll bring the pie.
6: Stop it, please.
5: Okay.
6: Yeah, sure, I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
5: So what's the problem?
6: My name's Bruce.
7: Advertise with MediaWorks.
5: New Zealand listens to us.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
9: No particular justice to you.
10: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है.
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा.
12: Now when you're on the loop with ANZ and take the train, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT trains with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
15: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: What's your take?
17: 18 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है. आज टॉपिक तो मैं कुछ और लेकर आया था, लेकिन आपने घंटे की शुरुआत को ही इतना हल्का फुल्का कर दिया दैट आई डू नॉट फील लाइक गोइंग इनटू दैट हैवी टॉपिक.
18: ओके, सो वी गोना कीप इट लाइट,
17: वेरी वेरी लाइट. बस जो कुछ बातें अभी ट्रेंड पेट्रोल में हुई थी उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे.
18: ओह नो.
17: और आपको बस इतना ही बताना, और डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं, प्लीज इस चीज को सीरियसली ना ले. You know, जिस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है मजाक में, उसी तरह से इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं.
18: राइट.
17: तो जो टॉपिक है या जो सवाल है आपके लिए, आप ये बताइए कि वो कौन सा सिचुएशन था जिसमें आपके पति या आपके घर में कोई मैन स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सास.
18: लाइक अ सास. ओह, मेरा क्या सिचुएशन है, आई हैव नॉट लिव्ड विद माय मदर इन लॉ. मैंने उनके साथ ऐसे आई हैवंट स्पेंट लाइक माय एंटायर लाइफ इन अ हाउस ऑल टुगेदर, बट मैंने ब्रीफ टाइम उनके साथ जब भी वो हॉलीडेज के लिए आती थी आई स्पेंट सम टाइम एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मदर इन लॉज टू बी विद. लेकिन मेरा पति ना उनसे ज्यादा डिफिकल्ट सास होता अगर होता तो. माई मदर इन लॉ इज नॉट लाइक दिस द वे माई हस्बैंड इज. तो इसीलिए आई वॉज लाइक कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, बिकॉज इफ आई से पीपल विल थिंक माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, वो ऐसी थी नहीं. शी वॉज वेरी नाइस, वेरी काम, वेरी कम्पोज. लेकिन माई हस्बैंड
17: इज नॉट वेरी नाइस, नॉट वेरी काम, नॉट वेरी कम्पोज.
18: इज नाइस, काम एंड कम्पोज, लेकिन वेरी पोकी. लाइक हर चीज में ऐसे नाक घुसेड़ने वाला जो होता है ना, स्पेशली वेन इट कम्स टू कुकिंग. ओह माई गुडनेस, इतना तेल क्यों डाला, इतने मसाले क्यों डाले, ये क्या कर रहे हो, धीरे से मतलब क्या बोलते हो, गैस का आंच जो है ये थोड़ा कम करो, मीडियम पे करो, जल जाएगा, एक साथ इतने सारी चीज़ें करो, जल्दी जल्दी कर लो, यू नो सो मेनी थिंग्स ऐसे. बट मैं मदर इन लॉ नेवर सेड ऑल दोस थिंग्स. मैं जो भी बना के खिलाती थी शी वुड ईट विद अ लॉट ऑफ लव, सो उनकी ओर से कभी नहीं आया. बट हाँ, इफ आई वुड वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर कि कैसे बनाते क्या, वो बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बताती है ना कि ये डाल दिया वो डाल दिया इतना कम, ऐसा कभी नहीं. माई हस्बैंड डज दैट, इसीलिए आई वाज थिंकिंग कि मैं कैसे बोलूं, पर मैंने बोल दिया.
17: तो लो भाई, इतना टाइम आपको मिल गया होगा इनके प्रवचन के दौरान
18: टू अंडरस्टैंड कि आपको बताना क्या है.
17: कोई एक ऐसा ओकेजन, क्या आपके पति जो है या आपकी फैमिली में कोई मेल जो है does behave like a sass, और अगर वो बिहेव करते हैं तो किस सिचुएशन में ऐसा करते हैं?
18: राइट, तो मैंने तो बताया कुकिंग के मामले में यू हैव टू लेट अस नो व्हाट योर थॉट्स आर या व्हाट योर एक्सपीरियंस इज. और आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 0800 00 हम 0800 00 4866 पर, अगर आप लाइव होने आकर नहीं बताना चाहते
17: तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं बता सकते.
18: नहीं, हर किसी के पास मेरे जैसा वो नहीं होता ना कॉन्फिडेंस. हाँ. मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी, बट आई थिंक यू गेव अ बेटर आंसर. ट्रू. राइट, 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है, इस पर भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं. कोई नहीं कॉल कर रहा है. किसी की हिम्मत नहीं है.
17: किसी ने कहा यू आर रॉकिंग पूजा जी, आयरिन ने ये मैसेज किया था. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, आई लव दिस लाइंस,
18: मेड मी लाफ.
17: ज्योतिका ने ये मैसेज जो है भाई, आप भी हमें बताओ, अकेले हम कितना बताएं आपको, क्या क्या बताएं, पूरी दुनिया का टेका हमने नहीं ले रखा.
18: हम बात करेंगे ना फिर लोग मैसेज करना शुरू कर देंगे, बहुत बातें कर रहे हो, गाना बजाओ.
17: हाँ, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप भी बताओ, आपके घर में भी कोई ऐसा मर्द तो होगा हु बिहेव्स लाइक अ सास,
18: लाइक टिपिकल बॉलीवुड सीरियल टाइप सास. हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि सास जो होती है, मदर इन लॉज जो होते हैं हमेशा वैसे ही होते हैं जैसे दिखाया जाता है. दे आर वेरी डिफरेंट.
17: हाँ भाई, जो भी है कम से कम कुछ तो बताओ,
18: कुछ तो बोलो. अच्छा, आया किसी का,
17: इतनी मेहनत,
18: हम इतना भीख मांग रहे थे तो किसी को दया आई हम पर. गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग,
18: बढ़िया जी, आप कैसी हो?
9: बिल्कुल ठीक.
18: बहुत दयालु हो आप.
9: नहीं, दयालु की बात नहीं है, जो आपने अभी थोड़े देर पहले वो बोला था ना, लड़के सो जाता है.
18: जी जी.
9: और छोले भटूरे वाला,
18: छोले
9: वो बिल्कुल सच है. मैं आपको एक बात बताऊं, 100% सच है. मेरा हस्बैंड बिल्कुल ऐसा है, मेरे से लड़ाई करेगा, गलती भी उसकी होगी और इतरा के वो सो जाता
18: है. ये घर घर की कहानी आई गेस.
9: ये घर घर की नहीं, ये हर औरत की कहानी.
18: True.
9: तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा पति बिल्कुल मेरे साथ बोलता है.
17: ये आप ऐसे धीमे धीमे क्यों बोल रही हैं?
9: और नहीं, क्योंकि ना मेरे को धीमे की बात नहीं है, वो कहता है कि थोड़ा ना धीरे बोला करो.
18: नहीं, आपकी आवाज
9: धीरे बोला नहीं,
18: आपकी आवाज रेडियो पर भी बहुत धीमी आ रही है. एंड वी लाइक ट्राई टू पुट द वॉल्यूम राइट अप, बट फिर भी है बहुत धीमी आ रही है.
9: तो मेरा हस्बैंड बिल्कुल मेरी सास है. वो कोई मौका नहीं छोड़ता, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसको ऐसे क्यों करा, उसको वैसे क्यों करा, ऐसे क्यों नहीं करा, वैसे क्यों नहीं करा, आज सफाई नहीं करी, आज टेस्टिंग नहीं करी. मतलब इंडिया गई हुई थी मेरी मदर इन लॉ, उसकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई मुझे. बिल्कुल नहीं. वो उसका बाय डिफॉल्ट वो सास और हस्बैंड का मूड होता है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जब जरूरत है पति बन जाता है, जब जरूरत है सास बन जाता है।
18: तो आज आप जाके अपने पति को सुनाइएगा ये लाइन।
9: आई थिंक उसने ऑलरेडी सुन ली होगी, वो अभी कार नहीं चला रहा था, बेटी को ड्रॉप करने गया था।
18: अच्छा, तो सुन ले।
9: तो मैं उसको बोलूंगी, वो सुना था ना तूने, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। फिर वो बोलेगा मेरे जैसा सीधा मिला ना तुम्हें कदर नहीं है।
18: ये लाइन भी सुनने को मिलता है, ट्रू
9: बहुत। और फिर मैं बोलूंगी अगर सब तुम्हारे जैसे सीधे हुए ना तो फिर टेढ़ों की जरूरत ही नहीं है।
18: वाह वाह वाह, क्या क्रिएटिविटी है भाई,
16: नेक्स्ट लेवल।
9: बिल्कुल, मैं तो उसको कहती हूँ तू तो जलेबी की तरह सीधा है, जलेबी की तरह सीधा, जलेबी नहीं इमरती की तरह,
18: इमरती इमरती जलेबी से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनती है। विजय गेव दिस एक्सप्रेशन बिकॉज ही डजंट नो कि इमरती क्या होती है, बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच,
9: थैंक यू
18: आपके कॉल के लिए, बड़ा एंटरटेनिंग कॉल था ये, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। तो इन्होंने तो भाई हिम्मत दिखा के बता ही दी कि इनकी सास जब गई हुई थी छुट्टी पर एंड इन्होंने उनकी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं की। वो लाइन सबसे बढ़िया थी। तो 0800 हम 0800-4866 पर, एंड एज वी सेड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर डूइंग ऑन अ सीरियस नोट और ट्राइंग टू ब्रिंग एनी पर्सन और रिलेशनशिप डाउन, वी जस्ट हैविंग
16: फन।
18: या मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ, आज
16: मेरे को
18: बहुत डर लगता है,
16: मेरी
18: हालत खराब हो जाती है कुछ बोलने से पहले, बिकॉज आई एम लाइक यू डोंट रियली नो हु गेट्स ऑफेंडेड ना, क्योंकि हम कभी कभी किसी डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचते हैं पर जरूरी नहीं हमारे जैसा सब सोचते हो ना, तो इसीलिए डर लगता है मुझे।
16: अब क्या है, अगर डरते रहेंगे तो हर दिन सीरियस बातें ही करनी पड़ेगी,
18: फिर लोग परेशान हो जाएंगे कि आप लोग कितना सीरियस बातें करें, थोड़ा मस्ती मजा करो, बट फिर डरना शुरू हो जाते हैं हम कि भाई करे तो करे क्या। गुड मॉर्निंग।

0: तब खत्म हो जाए सब कुछ आपके हाथों का खा पी लिया,
1: बस बस बस बस बस हाँ।
0: तब फिर
1: फिर यही सब टोका टाकि, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है।
0: आप क्या बोलती उनको?
1: मैं भी यही बोलती हूँ, तुम्हें मिल गई है मेरी जैसी, अगर कुछ मिल जाती ना कुछ खराब सी पता चलता।
0: सो तो है,
1: अच्छा अच्छा तू ही मिली है, अच्छा इससे ज्यादा खराब भी कोई और है।
2: Oh goodness,
0: that's good, it's good to have that sense of humor.
2: Yeah,
0: पति पत्नी के बीच में बढ़िया मैम,
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: थैंक यू,
2: हैव अ नाइस डे, बाय। ऐसे करते हैं कि अभी ना हम लोगों को मौका देते हैं टेक्स्ट करने का।
0: हाँ, क्योंकि हमारे पास तो टाइम बचा नहीं है, आप अपनी स्टोरी सुनाना नहीं चाहते हैं, आप
2: और सभी मैं सब चीज बताना शुरू करती हूँ ना, तो मेरे जो ससुराल वाले भी सुनते रहते हैं, फिर वो भी बोलते हैं कि मतलब घर का सारा पोल तुम रेडियो पे ही बता दो। मैंने बोला मैं करूँ क्या, कॉन्टेंट के लिए आजकल बहुत कुछ करना पड़ता है ना।
0: तो ऐसी दो ही लेडीज हमें मिली है जिनके पति,
2: तीन, मैंने भी तो बताया था आई एम ऑल्सो लेडी।
0: अच्छा,
2: वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते। अरे एक मैसेज आया इधर, चलो देख लेते फटाफट, ठीक है। आई होप इट्स अ गुड वन। इन्होंने लिखा है, आई हैव अ बिग इन लॉ फैमिली एंड माई ओन फैमिली, बट नन ऑफ देम एवर मेड मी फील ऑफ सांस वाली। 10 years ऑफ माई मैरिज, आई हैव नेवर हैड टू वरी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एट होम। आई वाज स्पॉइल्ड बिफोर मैरिज एंड ओनली गॉट मोर स्पॉइल्ड After marriage, I think ये लिखना चाहती हैं। So nice, very nice. Thank you आपके भी call, I mean sorry message के लिए।
0: कम से कम आपने share तो किया।
2: Exactly.
0: आप भी बताना चाहते हैं तो 5599 हमारा number है।
3: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आऊं?
5: मैं लाऊं अपना A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: Fine today with sunshine dominating, a high of 20 degrees. Fine enough on the Northern Motorway if you're coming in 28 minutes from Constellation Drive to town, 43 from Silverdale. Little slow at Silverdale, heavy patches, Constellation to the bridge. Northwestern 33 in from Massey, we're slow from Te Aroha to south, heavy patches are frequent. Southern 40 in from Manukau, slow from Waitahu, heavy a lot of the way. Southwestern slow northbound at Whitty.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि drying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: Moisture और ventilation का problem लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
8: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे.
9: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
8: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
10: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
11: A Kogan monitor is just like a monitor. Both monitors do very similar monitor things, but with slightly different little logos, cords, and stands. One's a Kogan 34-inch curved ultra-wide monitor. The other monitor has a price you won't be able to stand. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
12: It's New Zealand Wool Month, so don't miss sheepishly good deals on wool carpet at Flooring Extra. Shop the wool sale now and save on a range of luxurious New Zealand wool carpet. Warm, durable and beautifully sustainable. Plus, you can enjoy 36 months interest-free. So discover the comfort and style of wool that suits your space and budget. Visit your local Flooring Extra showroom today for expert advice you can rely on. TC's fees and credit criteria apply.
13: Flooring Extra. Adore your floor.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Papatoy and Hamilton.
15: Let's go.
0: Straight from the heart.
16: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
17: समय की ओर देखें तो फिलहाल अभी 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने में. 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. और हम बातें कर रहे थे जो आज का हमारा व्हाट्स योर टेक है. किसी ने मैसेज किया है, चाय लो, बिस्किट लो, इन मर्दों से डिस्टेंस लो.
18: अरे वाह.
17: बिरयानी में दम, मर्दों में क्या गम. घर का राजा बनता है, बर्तन देख के भागता है. ये आलिया ने लिखा है.
18: अच्छा, ये अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही है.
17: आलिया ने अपना लिखा है.
18: वेरी नाइस.
17: आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो हम बातें कर रहे थे फ्यूल प्राइसेस के बारे में. मैंने बोला था कि भाई आज मुझे फ्यूल अप करना पड़ेगा, वरना टुमारो आई विल हैव टू वॉक टू
18: व्हिच इज नॉट क्वाइट पॉसिबल राइट नाउ.
17: पैदल मुझे ऑफिस आना होगा क्योंकि गाड़ी में फ्यूल खत्म होने वाला है. तो आप बताओ ऑकलैंड में कहाँ पर सबसे सस्ता फ्यूल जो है ये आप ने देखा है. रजनील ने बताया है $3.27. सुरेंद्र उबर ड्राइवर $3.25. यार गैस पाइप पे मैंने इससे सस्ता देखा. तो अभी जो आपने नोटिस किया है उसके मुताबिक $3.25 सबसे सस्ता. इससे सस्ता फ्यूल अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उसे हमारे पास टेक्स्ट करना है. आपको सबसे पहले लिखना है IH, उसके बाद पेट्रोल का जो प्राइस आपने देखा, जो सबसे सस्ता आज मिल रहा है, वो लिखे और कहाँ पे और अपना नाम.
18: जैसे कि आप लिखेंगे IH फिर लिखेंगे 275 अगर 275 में कहीं भी आपको फ्यूल दिख रहा है
17: एक्स सर्विस स्टेशन
18: हाँ
17: Sandringham.
18: If you don't even, oh नहीं, but you can write the location ताकि हम भी लोगों को बता सकते ना कि यहाँ पे सस्ता है.
17: अरे किसी को बताए नहीं बता कम से कम मैं जाकर fuel up कर लूँगा.
18: Right, तो IH लिखना है जैसे 275 लिखना है Sandringham लिखना है फिर उसके बाद में अपना नाम और भेजना है 5599 पर. Now why you have to do this is क्योंकि एक और तो जहाँ पर आप हमें बता भी रहे कि कहाँ पर सबसे सस्ता फ्यूल है लेकिन while doing this you will go into a draw. फेस्टिवल फॉर्च्यून में जहाँ पर इनडेलेबल होम्स की ओर से योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स जिनके बारे में डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं indelibleHomes.co.nz और इनकी ओर से $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर आप जीत सकते हैं सिर्फ इतना बता के
17: कि आज सबसे सस्ता 91 पेट्रोल कहाँ पर मिल रहा है ये आप बताएं एंड हम आपका नाम ड्रो में डालेंगे एक तो हमारा भी काम बन जाएगा
18: हाँ.
17: और आपका भी काम बनेगा क्योंकि आपका नाम ड्रो में शामिल होगा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून में
18: $1,000 वो तो फ्यूल वाउचर जीतने के लिए
17: बड़ा आसान है भैया और क्या चाहिए आपको लेकिन टाइम लिमिट हमने कहा है कि
18: वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद टाइम लिमिट दिस टाइम अराउंड तो आपको सिर्फ 5 मिनट हम दे रहे हैं याद रहे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ $1,000 का फ्यूल वाउचर चाहिए तो इसके लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको और ये $1,000 का फ्यूल वाउचर जस्ट टू लेट यू नो विल नॉट बी डिवाइडेड अमंगस्ट मल्टीपल विनर्स ये किसी एक को ही मिलेगा
17: हाँ आप में से किसी एक को ही ये मिलने वाला है सो दैट्स प्रीटी सिंपल और अभी तक किसी को इस लगता है बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया हमने
18: इतना डिफिकल्ट पूछा किसी का मैसेज नहीं आया
17: किसी को पता ही नहीं कि आज किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि आज सबसे सस्ता 91 पेट्रोल जो है ये कहाँ मिल रहा है
18: अश्विन आपका मैसेज आया पर अनफॉर्चुनेटली एंट्री आपकी इनवैलिड हो जाती है बिकॉज यू हैव टू राइट द कीवर्ड IH यानी इनडेलेबल होम्स का शॉर्ट फॉर्म I for ice cream, H for house, IH लिखे फिर space दीजिए फिर price बताइए और फिर उसके बाद location अब सिर्फ city, suburb ये जो चाहे वो लिख सकते हैं और फिर अपना नाम लिख कर आपको भेजना है You've missed majority of the details and the most important one, keyword भूल गए हैं आप
17: The first thing, the very first thing you write is IH
18: Right
17: I और H के बीच में कोई space नहीं होगा IH आप लिखेंगे और बाकी की चीजें लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजेंगे आपका नाम ऑटोमेटिकली ड्रो में शामिल हो जाएगा
18: राइट एंड ये करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स है आपके पास इट्स 8:45 राइट नाउ 8:50 विल रैप अप द कॉम्पिटिशन अगर 1000 का फ्यूल वाउचर जीतना है आपको तो जल्दी जल्दी अपनी एंट्री सेंड कीजिएगा

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
3: Patchy cloud on a fine and sunny one today, a high of 20. Southwestern motorway, slow northbound through Whitty, and once you get up to the airport link, there's a breakdown there which is slowing it down that link as well. Southern, 40 minutes, Manukau to town, fine to Otahu, but heavy on and off from there to the city. Northwestern, 30 in from Massey, heavy patches from Te Aroha to south. Northern, 26 from Constellation, heavy patches from there.
2: From a school run to the weekend getaway, insist on Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights. Two lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
5: It's Farmer's Sleep Sale with super deals across all Sleepyhead Queen beds. Get the chiropractic firm mattress now $1,199, or the Balance Plus Queen bed set now $2,699. Great bed deals now on at Farmer's Sleep Sale. Conditions and exclusions apply.
6: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardo's is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
7: Now there's a better way to a new phone with Spark Upgrader. Combine our huge phone deals with great trade-in savings, plus look out for exclusive offers just for you. See what you could save on a new phone at spark.co.nz/upgrader. Available interest-free, credit criteria and terms apply.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Big on style, great on price, perfect for your home, Harrington Living Manukau.
8: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: अभी 8 मिनट रह गए हैं 9 बजे में. नो पर न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट. अभी पेट्रोल के जो प्राइसेस आप भेज रहे हैं, जो मुझे दिखने में लग रहा है उसके मुताबिक तो
10: $3.07 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
9: फेनोपाई इज लुकिंग टू बी द चीपेस्ट एट द मोमेंट. अरे किसी ने कहा है $2.26
10: ग्लेन इनिस में.
9: ये तो नहीं हो सकता हिमांशु.
10: 226 इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल हिमांशु.
9: आई मीन 3 की जगह 2 लिख दिया गलती से आपने.
10: या प्रोबेबली
9: $3.26 शायद आप लिखना चाहते थे.
10: बट हिमांशु प्लीज इफ यू लिसनिंग एंड इफ यू कैन कंफर्म कि इज इट एक्चुअली 226 या फिर आपने मिस्टेक में 3 की जगह 2 लिखा है. बिकॉज इफ दैट इज करेक्ट, 226 इज करेक्ट, ये तो सबसे चीपेस्ट है और सभी यही जाएंगे.
9: हाँ तो अब हाँ, जब जितने भी लोग जाएंगे अगर वो सच है तो कम से कम एक टैंक पेट्रोल छोड़ देना
10: आपके लिए,
9: मेरे लिए छोड़ देना.
10: राइट,
9: थोड़ा कंफ्यूजन था शायद आपको, तो थोड़ा सा टाइम हम आपको देंगे. सबसे पहले आपको लिखना है IH, इनडेलिबल होम्स का शॉर्ट फॉर्म IH, I और H के बीच में कोई स्पेस नहीं. उसके बाद कौन सा वो पेट्रोल स्टेशन है जहां पर फ्यूल 91 फ्यूल आज सबसे सस्ता है और कितने डॉलर्स सेंट्स पे लीटर है, वो आपको लिखना है और अपना नाम. ये लिखकर 5599 पर हमारे पास टेक्स्ट करना है.
10: Right, these are the three things that you have to send it across ताकि आपका नाम हम ड्रो में शामिल कर सके. Because Indelible Homes की ओर से this Diwali Festival of Fortune में $1,000 worth of fuel voucher जीतने का मौका है. Terms and conditions apply. हम .rover.nz आप विजिट कर सकते हैं. Standard carrier rates apply. जब भी आप हमारे पास text करते हैं. So final 3 minutes. IH लिखे, फिर किस जगह पर आपको सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है 91 जो है, ये जगह का मतलब लोकेशन लिखे, प्राइस कितने में मिल रहा है वो लिखे और अपना नाम लिखकर 5599 पर भेजें.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: New tasty rise bars and bites in supermarkets.
3: A sunny one all day, patchy cloud, a high of 20. Northern motorway, 25 minutes, Constellation Drive to town. Heavy patches from there to the bridge, but it's easing. Northwestern, 28 in from Massey. Slow from Te Ara to south, a lot of heavy patches. Southern, 38 Manukau to the city, we're fine to Otahu, but heavy from there. Southwestern, we're a bit slow northbound at Whitty, and a breakdown's been slowing the airport link.
2: New tasty rise, low carb protein bars and bites. Less carbs, better snacking.
4: 3, 2, 1, rush!
5: The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre, max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards-rush.
6: 35 minutes and we've moved 3 kilometres.
7: Welcome to peak hour commute, bae.
6: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
7: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
6: Yeah, that sounds like me.
7: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
6: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
8: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
9: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
0: Time check.
10: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800 00 00 10.
11: Good morning, Ismatik Nobajre hai.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Auckland rubbish truck drivers may soon have to buy their own vehicles if they want a job. Workers First Union claims waste management is looking to make their employees contractors. Spokesperson Justin Wallace says it's a money-saving exercise.
13: They don't have to pay things like annual leave, sick leave, bereavement leave. They don't have to find cover for them.
12: David Tamahiri will find out this morning if he will be retried for the 1989 murders of two Swedish tourists. He spent 20 years behind bars for the crimes before the charges were quashed by the Supreme Court earlier this year. A new study shows oral nicotine pouches are not the stop smoking tool some believe them to be. They legally can't be sold over the counter, but they can be imported. Professor Chris Bullen says they shouldn't be made readily available.
14: The minister is claiming that they're to help people quit smoking, but we've got no research evidence anywhere in the world to date that shows that for a fact.
12: Crop growers are taking a second look at what to plant as fuel prices rise. 12-month pricing contracts are forcing most to absorb costs. Federated Farmers Arable Chair Chris Dillon says it's unsustainable.
15: We're contracted in for this year. Next year there has to be a significant increase in the prices of feed or there will be no one growing it.
12: To sport, where it's been 40 years since Australia last beat the All Blacks at Eden Park, Wallabies flanker Fraser McWright says they can't afford to focus on history ahead of Saturday night's clash.
16: Can't really think about Eden Park and trying to win the Bledisloe or trying to break, you know, the curse or the hoodoo or whatever people call it.
12: The All Blacks reveal their team at midday tomorrow, and emotional scenes are expected when football superstar Lionel Messi plays his last game for Argentina in Buenos Aires at midday today.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
11: Super City Auckland में आज का मौसम आपको बता दें ज़्यादातर खूबसूरत रहने वाला है, bright sunny day. तो अगर आज कपड़े वगैरह धोने का plan है आपका, good day to get your washings hanged outside on the line. और धूप का खूब मजा लीजिए with the outdoor plans. Oh goodness. Oh my god. Sunset 7:31 PM पर होगा. Temperature right now is 12.6 degrees. High of 18 expected later today. Overnight temperature 11 degrees रहने वाला है.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
18: Brought to you by 4th Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
19: What's going on? क्या बकते हो?
20: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: अच्छा तो आज हम दोनों के पास एक एक स्टोरी है. पहले आप अपना क्या बकते हो स्टोरी सुनाइए.
21: मेरी जो स्टोरी है ये यूएसए की एक डॉक्टर के बारे में है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी हाल ही अपनी ये स्टोरी जो है ये शेयर की. डॉक्टर क्रिस्टा एडलमैन और उन्होंने इंस्टा पर जाकर अपना एक्सपीरियंस जो है ये शेयर किया कि एक दिन वो सो रही थी और नींद में उन्हें एक ख्वाब आया.
11: तो नींद में तो ख्वाब आते हैं ना.
21: कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ख्वाब के लिए नींद की जरूरत नहीं होती.
11: अच्छा, ओके.
21: तो और उसके सपने में वो उन्होंने देखा एक छोटा सा चूहा था. और वो छोटा सा जो चूहा है वो उनके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा था.
11: सपने में देखा ना.
21: हाँ, सपने में उन्होंने देखा. तो अचानक उनकी नींद खुली. सपना एकदम फ्रेश. बीच में शायद नींद उनकी टूट गई. तो उन्होंने अपने मुंह को फील करने की कोशिश की.
11: ओके.
21: और मुंह को जब फील करने की कोशिश की तो उन्हें सच में लगा कि उनके मुंह के पास कुछ है.
11: ओके.
21: और ऐसे उन्होंने पकड़ी वो चीज.
11: हाँ.
21: और मुंह के पास से हटाने की कोशिश की. हटाया.
11: हाँ.
21: तो देखा एक उल्लू उनके मुंह में घुसने की कोशिश कर रहा था.
11: उल्लू कहाँ से आ गया यार? I could feel it.
21: मुझे पता नहीं कहाँ से आया वो. उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो सो रही थी.
11: हाँ.
21: उन्होंने देखा नहीं कि उल्लू आया कहाँ से.
11: ओके, इंटरेस्टिंग. अच्छा, मेरे पास आज की जो ये थोड़ा ऐसे मेरे शरीर में ऐसे सनसनाहट सी फील हुई आपकी
21: सनसनाहट.
11: हाँ, सनसनाहट फील हुई बिकॉज मेरे को ऐसे स्टोरीज नहीं जमते यार जहाँ पे जानवर वगैरह इन्वॉल्व हो. पहले चूहा फिर उल्लू. बट मेरे पास आज जो स्टोरी है आज की ये क्या बकते हो स्टोरी इज ऑल द वे फ्रॉम द वेरी फेमस बिहार. बिहार में दरअसल एक जगह है, विलेज है, सीतामढ़ी. ये जो जगह है ये डिस्ट्रिक्ट है सॉरी, वहाँ पर एक विलेज है सोहरवा विलेज. और यहाँ पर क्या हुआ, फ्राइडे नाइट को लास्ट वीक पुलिस के पास एक कॉल आई.
21: अच्छा.
11: और कॉल पर उनको बताया गया कि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो रही है. और पुलिस को बुलाया गया ऑफकोर्स लड़ाई रोकने के लिए. पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे जो भी इंफॉर्मेशन मिला था उसके हिसाब से, वाइल दे वर अटेम्प्टिंग टू इंटरवीन और पूरा का पूरा सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे थे, एक ग्रुप ऑफ लोग जो है वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उल्टा पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया. दे दनादन उनकी खूब कुटाई और पिटाई की. और इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर है पुनीत कुमार और अन्य पुलिस कर्मचारी भी थे जो काफी इंजर्ड भी हुए. लेकिन एडिशनल पुलिस फोर्सेस जब यहाँ पर आए तो उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया पूरे मामले को कंट्रोल में लाने के लिए. पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में. और इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि क्यों उन्होंने ऐसा किया वर्स, क्योंकि एक मामला सामने आया था जहाँ पर कहा गया कि पुलिस वालों ने अपेरेंटली इनको रोका था गाँव वालों को कुछ मामले में इन रिगार्ड्स विद हाई स्पीडिंग और समथिंग. और उनको रोककर उनके ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे. राइट. फिर उनको जाने दिया, आई थिंक चलान वलान काट कर उनको जाने दिया समथिंग. तो बदला निकालने के लिए उन्होंने ये फेक डिस्प्यूट का मामला जो है क्रिएट किया, ये पूरा माहौल कि लड़ाई हो रही है.
21: अच्छा.
11: उनको बुलाया और फिर उनको पीटा.
21: अरे अपने गाँव में बुलाकर पीटा.
11: हाँ. गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब इमरजेंसी कॉल करके बुलाया
21: जो आप करने की कोशिश कर रहे थे कुछ नहीं हुआ.
11: आई नो बट इट वाज अ वेरी वेरी बिहार काइंड ऑफ स्टोरी आई वुड से. बट एनीवेज, तो काफी बातें जो है इस मामले में हो रही है. और अपेरेंटली कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है सामने आया है खबरों में.
21: क्या बकते हो, उन्होंने अपने गांव में झूठ बोलकर उनको बुलाया.
11: हाँ यार,
21: और पीटा. ओह माय गॉड,
11: है ना इंटरेस्टिंग. एनीवेज, तो 7 मिनट हो रहे हैं 9:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा. आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा ये व्हाट्स गोइंग ऑन का सफर इस घंटे, जहां पर थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ऑकलैंड में एक खास मेहमान से होंगी कुछ खास बातें. बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में इन बातों से वाकिफ रहना. और ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए पर्टिकुलरली, हर एक इंडिविजुअल के लिए. तो कौन है आज के हमारे खास मेहमान, क्या बातें हम इनसे करने वाले हैं, जानने के लिए हमारे साथ ही बने रहिएगा.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: कम्युनिटी की खबरों का वक्त अब हो चुका है और देखें तो कई चीज़ें हो रही हैं जिनकी जानकारियां आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहते हैं। नवरात्रि की पूजा अनेक जगहों पर इसी सप्ताह अंत से आरंभ होने वाली है और कहां कहां पर आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकेंगे इसकी जानकारियां हम पर आपको हम देते रहते हैं। और सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि का पर्व इसी संडे से मंगलवार 20 अक्टूबर तक मनाया जाएगा द केव 5x57 कैवेंडिश ड्राइव मेनुकाऊ में।
4: और साथ में रामकृष्ण मंदिर 25 ओम्स लो एव मेनुकाऊ पर ये इसी संडे 11 अक्टूबर से ट्यूजडे 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा।
3: उसके साथ श्री आदिशक्ति दुर्गा माता मंदिर 38A वॉम्सली रोड ओटाहूहू में भी इसी रविवार से मंगलवार 20 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा जिसमें आप जाकर जरूर हिस्सा ले सकते हैं।
4: और इसके अलावा आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि होने जा रहा है एक और एक इवेंट विच इज बेसिकली दुर्गा पूजा और ये रहेगा सांप्रीति दुर्गा उत्सव 17th and 18th अक्टूबर को यानी कि नेक्स्ट वीकेंड। इस दुर्गा पूजा में आप भी भाग ले सकते हैं, फ्री एंट्री है और के लिए ओपन है। आप यहां पर जा सकते हैं ट्रेडिशनल दुर्गा पूजा जो है ये विटनेस करने के लिए। बहुत से कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगे ऑन बोथ इवनिंग्स फ्रॉम 7 PM। सिंदूर खेला और अदर ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस भी यहां पर होंगे और आपके पास मौका है फॉर बीइंग कनेक्टेड विद द वाइडर बंगाली कम्युनिटी और इसका हिस्सा जो है ये आप जरूर बन सकते हैं।
3: श्री हनुमान मंदिर पर 14x Park Place बिगडेल नोचो में नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और यहां पर आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। देवी पूजा था शाम 6:15 से आरंभ होगी और 13th और 17th अक्टूबर को शाम 6:30 से माता की चौकी भी लगने वाली है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो आ गए।
6: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual?
9: Can't wait for coffee? Then don't! Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: Moisture और ventilation का problem लगता है।
11: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
12: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
13: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
14: Bunnings has what you need to give your home a proper spring clean. Get your indoor sparkling with our range of vacuums and mops or clean up outside with our pressure washers and window cleaners. Start cleaning up for less at Bunnings.
15: Bunnings Warehouse.
14: Lowest prices are just the beginning.
16: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
5: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havelit 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
15: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
4: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं 104.2 एफएम पर एंड रोवर ऐप पर भी अगर आप हमारे साथ शामिल हैं. हमने इस घंटे की शुरुआत में एक आपसे कहा था कि आज हमारे साथ जुड़ जाएंगी एक बहुत ही खास मेहमान और इन खास मेहमान से हम करने वाले हैं कुछ बहुत ज़रूरी बातें. सो दिस अक्टूबर एशियन फैमिली सर्विसेज इज रिमाइंडिंग आवर कम्युनिटी दैट मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. Joining me today is Mithila Gadkari from Asian Family Services. Mithila, why is this message important?
18: Well, thank you, Pooja ji. मुझे ये मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. This message is important because mental health is part of our overall health. जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है.
4: And on the other hand, what might someone notice if they or someone close to them needs support?
18: Someone may feel overwhelmed or may be struggling to manage their emotions. Kabhi-kabhi aise hota hai ki log andar hi andar bahut kuch jhel rahe hote hai, right? So important message is that you do not have to face it alone. So support available hai aur asking for help is a positive step.
4: What support can people access through Asian Family Services?
18: Asian Family Services free, confidential और professional emotional support offer करते हैं. तो जो लोग काम करते हैं वो अपने culture को और अपने experience को समझते हैं. So you can call Asian Helpline free on 0800-862-342. अगर आप या आपका कोई जानने वाला तुरंत खतरे में है तो 111 पर कॉल करें.
4: एंड मिथिला, व्हाट इज योर क्लोजिंग मैसेज फॉर द लिसनर्स टुडे?
18: प्लीज रिमेंबर दैट मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ. इट इज ओके टू सीक सपोर्ट फॉर योर माइंड. इफ यू फील ओवरवेल्म्ड और आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज योर इमोशंस, यू डू नॉट हैव टू फेस इट अलोन. So call Asian Helpline free on 0800-862-342. If there is immediate danger, then call 111.
4: Thank you so much for your time. And I am very happy that aapne itni sari zaruri cheezon ke baare mein aaj baatein ki hain. And of course, aapse aane wale kuch aur dinon mein bhi aur zaruri baatein hum zarur karne ki koshish karenge. Par filhal ke liye ek baar phir aapke samay ke liye Mithila, bahut bahut shukriya.
18: Thank you so much, Pooja ji. Thank you.
2: Bollywood's most wanted.
19: Gundi khadao. Ya seedha andar aao.
20: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: तो अभी भाई नवरात्र शुरू होने वाले हैं इसी रविवार से, और फिर ऐसे बहुत से कमाल के जो गरबा और डांडिया वाइब वाले गाने हैं आपके लिए हम पर भी हम लेकर आते रहेंगे, जिसका मजा हम और आप एक साथ जरूर लेंगे। फिलहाल आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें जो है ये हम शामिल करते रहते हैं, बातें होती रहती हैं अलग अलग चीजों के बारे में। तो आपको ये भी हम याद दिला दें, बहुत सी चीजें जो ये हो रही हैं, आज हमने बातें की थी अबाउट फ्यूल एज वेल, कहाँ कहाँ पर यू नो कम प्राइजेस में फ्यूल जो है ये आप फ्यूल जो है ये आप भरा सकते हैं एंड डिस्काउंट जो है ये आपको मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड एक और एक खबर जो है ये आ रही है, विद हॉस्पिटैलिटी क्लोजर्स अप बाय 49% ईयर ऑन ईयर, एक नया ऐप न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया है आज, दैट विल हेल्प कीप रेस्टोरेंट्स फुल एंड गिव डाइनर्स अ चीपर वे टू एंजॉय द सिटीज बेस्ट रेस्टोरेंट। ईट क्लब जो है ये आज लॉन्च हो रहा है ऑकलैंड में और वेलिंगटन में, ब्रिंगिंग द डायनेमिक प्राइसिंग, जैसे कि सिमिलर टू जैसे एयरलाइंस एंड होटल्स वगैरह जो वर्कआउट करते हैं फार एज प्राइसेस आर कंसर्न, उस हिसाब से। एंड दिस इज ब्रिंगिंग टू द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में, जहां पर इसके जरिए कीवीज विल बी एबल टू गेट हाफ प्राइस ऑफ देयर रेस्टोरेंट बिल्स। सो ईट क्लब ये आप जाकर चेकआउट कर सकते, जस्ट लाइक फर्स्ट टेबल, जहाँ पर जो जितने भी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके साथ अगर आप फर्स्ट टेबल के थ्रू बुकिंग कराते हैं तो आपके पहले बिल पर आपको 50% ऑफ मिलता है।
1: ओके।
0: और ईट क्लब अभी आज जबकि लॉन्च हो रहा है तो सिर्फ ऑकलैंड और वेलिंगटन में हो रहा है, बट यू कैन गो एंड चेकआउट कि उसके क्या कुछ यू नो कंडीशंस है, व्हाट आर द रूल्स अराउंड इट। बट इमेजिन जब इतने सारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, वी विश टू गो आउट एंड ईट ना, और हम प्लान करते हैं कुछ डिनर वगैरह, पर ऑन द अदर हैंड कभी कभी ऐसे ही बिना कारण भी जाने का दिल करता है। बट कीपिंग दिस इन माइंड कि आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, लोग यही चीज़ पर सबसे पहले कमी करते हैं ना।
1: या एग्जैक्टली, सो यू कैन चेक आउट कि क्या कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं अगर इफ़ यू आर इन ऑकलैंड और वेलिंगटन। एक और चीज़ जो है ये खत्म हो रही है वो है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन टू।
0: ओ, खत्म हो रही है।
1: हाँ,
0: ओ, गुड।
1: एक साल स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करने के बाद इट्स गोइंग टू एंड, और आई थिंक 2025 में प्रीमियर इसने किया था एंड इट आल्सो मार्क्ड स्मृति ईरानी की वापसी
0: टेलीविजन पर।
1: टेलीविजन पर काफी समय के बाद अमर उपाध्याय, हितेन तेजवानी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे, और जो प्रोग्राम है उसकी जगह पर एक नया सुपर नेचुरल ड्रामा जो है ये आने वाला है जिसका नाम होगा अप्सरा।
0: अप्सरा?
1: Yes.
0: इसमें कौन है?
1: समीक्षा जायसवाल और पारस कलनावत।
0: ओके।
1: मुझे नहीं मालूम ये कौन है।
0: I know पारस कलनावत but I don't know समीक्षा जायसवाल।
1: कि वही पारस है जो बिग बॉस में थे?
0: नहीं नहीं, ये पारस जो है ये अनुपमा में थे मेरे ख्याल से।
1: ओके, तो ये दोनों आ रहे हैं, और अप्सरा जो है ये 21st अक्टूबर को शुरू होगा और इट विल टेक ओवर द स्लॉट जो करंटली ऑक्यूपाई किया जा रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 द्वारा।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। आई मीन इतने सारे शोज आजकल है, शोज तो छोड़ दो, इतने सारे चैनल्स है ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे किस चैनल पर क्या आता है। एंड आई डोंट रियली नो कि यहाँ न्यूजीलैंड में हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग दीज शोज, how many people are really interested in watching these shows, but agar aapko ek aisa particular show dekh rahe hain that you are enjoying it and you feel like ki ye kuch aisa hai jo logo ko actually check out karna chahiye, to aap hame bata sakte hain, send a message on 5599, send your recommendations, aur agar samay raha to hum zarur check out karenge. Maine wo dekhna shuru kiya tha, अरे मैं भूल ही गई इसका नाम, खैर छोड़ो नाम ही भूल गई मैं, बट एक शो था
1: वो, हाँ, नहीं, वो किसी कोई और नहीं देख रहा, सिर्फ आप ही देख रही
0: हैं। मैं ही देख रही हूँ शायद, बट रिसेंटली आई मीन आई नो कि आई एम क्वाइट लेट विद दिस, मैंने नेटफ्लिक्स पर द क्राउन देखना शुरू किया एंड दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली है उसमें कैसे कौन किंग बना, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो डिटेल्स है ये सारी चीज़ें जो है ये दिखाई, बट आई एक्चुअली गॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस व्हेन आई केम अक्रॉस रील ऑन इंस्टा आई थिंक, और उस रील में एक कंपैरिजन जो है ये किया गया था, सो सीजन 5 एंड सीजन 6

0: There's this particular actress जिन्होंने लेडी डायना का जो किरदार है ये प्ले किया था, और जो रिजेम्बलेंस था उनके लुक में, उनके हाव भाव में, उनके बात करने के तरीके में, उस रिजेम्बलेंस ने मुझे इतना एंटाइस कर दिया कि when I went and I started watching The Crown Netflix पर, मैंने सीजन 5 से देखना शुरू किया जहाँ से इस एक्ट्रेस ने लेडी डायना का किरदार प्ले करना शुरू किया था.
1: Okay.
0: And she played the character of hers when she was in her later years, like 30s mein thi wo apni, tab se unhone ek kirdar play karna shuru kiya tha. And I watched the final two seasons, 5 and 6 first. Maine final two seasons pehle dekhe. And then I kind of got hooked to it. Phir maine season 1 se dekhna shuru kiya. So okay. I went backwards. But I'm enjoying it. And it's quite nice to watch. So agar aapne Netflix par The Crown nahi dekhi hai, it's something, if you like to watch it, you like to keep updated. I mean, abhi bhi kafi debatable hai kuch cheeze jo isme share ki gayi hain. Kuch aise baatein jo dikhai gayi hain, wo kafi debatable hai. Kuch had tak kaha ja raha hai ki ye, you know, it's not 100% accurate. Aur kuch cheezon ko lekar bhi bataya gaya hai ki shayad thoda idhar-udhar hua ho. But it's something that you'll definitely enjoy watching. And Prince Charles, unka jo kirdaar hai, unki jo development rahi hai as a prince and then later on as a king, uske baare mein bhi kafi baatein hui hain. I think अभी शायद और सीजन्स आएंगे, नॉट श्योर, बट प्रोबेबली इन दीज लेटेस्ट सीजन्स प्रिंस विलियम, द प्रिंस ऑफ वेल्स, इनके लाइफ पर शायद कुछ ज़्यादा फोकस रहे.
1: Okay.
0: एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा कि अलायंस प्राइम पर ये आप देख सकते हैं, एंड यू, इन्होंने कहा कि गॉट हिंच्ड विद द कंटेंट. मैंने अलायंस देखी है. इसमें रवि किशन आए थे.
1: Okay.
0: बट आई हैवंट वॉच्ड द एंटायर सीजन. मैंने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखा है, गॉट अ बिट बोर्ड लेटर ऑन.
1: मैंने अभी हाइच से एक नाम हुंकार, हुंकार जो है ये एक सीरीज है, ये
0: Amazon पर. हाँ,
1: that was really nice.
0: अच्छी थी, पर थोड़ी लंबी थी. नहीं,
1: ना
0: 50 minutes episode आजकल.
1: It was good.
0: Yeah,
1: it was
0: okay.
1: Good. Worth the time.
0: Right, तो आप भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन हो तो जरूर बताइएगा.
2: Mornings made better.
3: Two frienda, char toast, butter jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja. Keep calm because Punjabi swag is on.
4: Hey, hey, maje diye, maje diye, mo batti hai hai. Pahle dino tere utte akh rakhiye hai. Tere bina area ch, aur kudi da na dal mangiye

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: 3, 2, 1, Rush! The Rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre. Max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
3: Home and contents belong together, and insuring them together makes life easier. Switch to Tower and save $200 on new home insurance and $100 on new contents insurance. Use promo code EASYSAVE. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: A lot of injuries happen on the weekend. So if you're out and about, or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: Hi, I'm Murray Harris, head of KiwiSaver at Milford. We're delighted to have just won Canstar's KiwiSaver Provider of the Year and Outstanding Value KiwiSaver Scheme Awards for a record 7th year in a row. Canstar recognised us not just for our long-term returns, but also for the support and confidence our members say we provide. And that's another really good reason to choose Milford.
6: Past performance is not a reliable indicator of future performance. Milford Funds Limited is the issuer of the Milford KiwiSaver Plan. Please read the product disclosure statement at milfordasset.com.
7: Diwali aayi, khushiyan aayi. BFSL special offer lekar aaya hai. Apne dream home ka sapna sajaye. BFSL ke saath home loan karwaye. $400,000 ya usse zyada ka eligible loan settle kare aur $250 ka gift card ghar le jaye. 50-inch TV ke lucky draw mein bhi entry paaye. To is Diwali khushiyan badhaye. BFSL ke saath apna dream home sajaye. Search BFSL or call 09846-9934. Terms and conditions and lending criteria apply.
8: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
9: Kya banate hain kebab ko special, Chef Alex?
8: Perfect blend of spices, tender meat and fresh vegetables. Har kebab banta hai with love and passion.
9: Wow, these kebabs are amazing. Spices ekdam right and meat is so juicy.
8: Ye hai Amma's Kebab's promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
9: 100% authentic and pure as mother's love.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
12: What's going on?
13: Let's go.
10: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
14: तो चलिए आज के डेली राउंडअप शुरू करने से पहले एक और एक मैसेज आया. रिकमेंडेशंस की बातें हम कर रहे थे व्हेन इट केम टू शोज एंड ऑल. किसी ने मैसेज किया, उन्होंने लिखा है, आई लव द रुकी लूसी चेन एके मेलिसा ओनिल, शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर. किसी ने लिखा है, आई हैव सीन आई थिंक बिट्स एंड पीसेस ऑफ इट ज्यादातर ऑन सोशल मीडिया, बट येस आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज वेरी गुड शोज टू यू नो एंजॉय. राइट, डेली राउंडअप की बारी आई है.
15: सबसे पहले तो क्वींसटाउन में जो आग लगी हुई है लेक वाकतीपू के पास, उसके बारे में खबर आ रही है कि ये 1200 हेक्टर्स में फैल चुकी है, विच इज रफली द साइज ऑफ ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर 1700 रग्बी फील्ड्स के बराबर जगह में ये आग जो है ये ऑलरेडी फैल चुकी है. और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो है निक मैक्विलन का कहना है कि इस बात की संभावना है कि ये आग जो है और बढ़ेगी अगर इट बिकम्स मोर एक्टिव ड्यू टू वेदर कंडीशन. चार हेलीकॉप्टर्स जो इक्विप्ड हैं मनसून बाकेट्स के साथ ये हॉटस्पॉट्स को कूल कर रहे हैं, और फिफ्थ हेलीकॉप्टर जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज एन एरियल प्लेटफॉर्म टू डायरेक्ट द एयर अटैक. 11 फायर फाइटर्स अभी भी बैटली ऑन ग्राउंड है विद एडिशनल क्रूज जो है थ्रू आउट द डे आते जाते रहते हैं, ब्रिंगिंग द नंबर टू 25. ये भी कहा जा रहा है क्वींसटाउन एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि आग का असर जो है अभी किसी भी तरह से क्वींसलैंड या क्वींसटाउन एयरपोर्ट के संचालन पर नहीं कर रहा है.
14: और इसके अलावा खबर मिल रही है दैट एक इन्वेस्टिगेशन फिलहाल जारी है जहां पर पुलिस रिव्यू कर रहे हैं 57 चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड अडल्ट सेक्सुअल असोल्ट केसेस, जिसमें ये बात सामने आई है कि कुछ डीप कंसर्निंग फाइंडिंग्स जो है ये पाए गए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, जिसे ऑपरेशन हार्क के नाम से जाना जा रहा है. इट बिगेन आफ्टर कंसर्न्स वर रेज्ड अबाउट हाउ एक हिस्टोरिकल सेक्सुअल अब्यूज केस जो है ये नॉर्थलैंड में हैंडल किया गया था. एंड पुलिस हैव नाउ found 11 cases jahan further alleged offending occurred after an initial report had been made. Is mamle mein do log jo hai inhe charge kiya gaya hai as a result of the reinvestigation aur police ne kaha hai ki aur prosecutions are expected. Extradition proceedings jo hai have also started in 3 cases involving suspects believed to be overseas.
15: एक लाश जो फकतानी के पास पाई गई है को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ वुमन जो पुलिस से बचने के लिए रविवार को ओपतिकी के पास नदी में कूद गई थी. स्टफ की एक रिपोर्ट के अनुसार रविवार की तड़के सुबह अराउंड 3:45 AM एक ड्राइवर जो है वो रेड लाइट पर रुकने में नाकाम रहा और जब पुलिस ने सिग्नल किया तो भी गाड़ी नहीं रोकी. द व्हीकल केम टू ए स्टॉप जब रोड स्पाइक्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए ओपतिकी से लगभग 10 किलोमीटर दूर सुबह 4 बजे के वक्त. द कार केम टू अ स्टॉप डाउन स्नेल रोड ओटारा रिवर माउथ के पास और वहाँ पर एक मैन और एक महिला जो है ये पानी में कूद गए. पुलिस ने कहा कि 33 वर्षीय व्यक्ति जो है उसको गिस्बन के एक एड्रेस पर पाया गया जहां उसे अरेस्ट किया गया और बाद में महिला की लाश जो है फकताने के पास मिली थी.
14: और इसके अलावा एक और एक खबर, टूरिस्ट एंड माइग्रेंट्स हैव रैक्ड अप मोर देन $70 million इन अनपेड पब्लिक हेल्थ केयर कॉस्ट्स इन न्यूजीलैंड. हेल्थ न्यूजीलैंड ने कहा है कि इट एक्सपेक्ट्स टू रिकवर मोस्ट ऑफ द मनी बट बिटवीन 25% and 30% इज टिपिकली रिटन ऑफ एज अनरिकवरेबल. और ये बात सामने आई है कि जो डेट है इट हैज जम्प्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 45.6 मिलियन इन 2022 से लेकर 2023 के पीरियड में एंड इज ऑल्सो फार हायर देन 18 मिलियन रिकॉर्डेड बैक इन 2019 से लेकर 2020 के पीरियड में. मोस्ट विजिटर्स ऑन वीजाज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर. Although जो exceptions होते हैं जिनमें reciprocal arrangements होते हैं with Australia and UK and certain Pacific agreements as well. एक ऐसा केस भी सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति involved है who built up to 174,000 hospital debt after failing to disclose एक serious kidney disease और एक previous criminal conviction अपने visa application में. Health New Zealand ने कहा है कि tries to recover unpaid bills through payment arrangements, sponsors or issue insurers or debt collection agencies. Lekin recovering money can be difficult when people leave the country and have limited insurance ya fir financial hardship agar wo face kar rahe hote hai to. There are also concerns about visitors arriving with serious pre-existing conditions. Officials ne identify kiye hain 7 aise logo ko who needed urgent dialysis ya fir renal treatment shortly after arriving on visitor visa. Health New Zealand ने कहा है कि clinical decisions are not based on whether someone can pay. Treatment जो है ये तब दी जाती है जब इसकी जरूरत होती है.
15: UEFA Nations League के मैचेस जो आज सुबह खेले गए, results as follows: Spain 2, Croatia 1, Slovakia 4, Moldova 0, Bulgaria 2, Luxembourg 0, Belarus 1, Finland 0, Albania 2, San Marino 1, Estonia 0, Iceland 0, England 3, Czechia 0, Switzerland 3, North Macedonia 0, Slovenia 2, Scotland 1.
14: और ये थे आज के डेली राउंडअप जो आपके लिए लेकर आ रहे थे ऑन हम. फिलहाल समय की ओर देखें तो 14 मिनट बाकी है इस समय हमारे स्टूडियोज में 10 बजने में.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chupo jao, papi ho. Chupo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें
2: आज की दो बातें जो हैं ये रिश्तों से ये काफी मुतल्लिक हैं।
3: अच्छा मुतल्लिक है।
2: हाँ पहली कहते हैं कि रिश्ता निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि चाहिए।
3: ओह नाइस।
2: और दूसरी बात
3: जी
2: ये इसके बारे में आप जरूर आज दिन में सोचेंगे। अब रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं।
3: कैसे?
2: बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं।
3: गुड वन यार, गुड वन, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो चलिए आज की दो बातें आपके नाम हम छोड़े जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि अब आपसे मुलाकात होगी कल ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा आज का वेंसडे और रिमेंबर हमारा फेस्टिवल ऑफ फॉर्च्यून जारी है तो जब जब मौका मिले पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा फॉर अ चांस फॉर यू टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस।

0: Sports Adda.
1: तो एक्सपर्ट अड्डा की जब मैं बात करती हूँ, मेरे पास कॉल पर आना चाहते हैं नन अदर देन नितेश हीरा जी. आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद हिम एंड लेट मी सी इफ़ ही एक्चुअली कम्स ऑनलाइन. बट यस, इससे पहले कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मुझे लगता है शायद उनकी लाइन काफ़ी टाइट बिजी चल रही है. बट दैट डजंट मैटर. सो आई विल डू वन थिंग, आई विल ट्राई एंड गेट हिम टू बी ऑन कॉल इन अ बिट. बट मीन वाइल भाई, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर. जब दिवाली आने लगती है ना, हमारा काम रहता है एक आपके चेहरे पे हम मुस्कुराहट लेकर आएँ. अब जब वो मुस्कुराहट की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं अबाउट फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून. इसका इस बार एक नए एंगल से हमने आपको उसमें भाग लेने के लिए कह रहे हैं, और वो भी एक विनर होता है. अब तरह तरह के विनर्स जो होते हैं वो नहीं होंगे इसमें, लेकिन एक विनर होता है. अब ये एक विनर जो है, इसे क्या मिलने वाला है? $1,000 वर्थ ऑफ हैरिंगटन लिविंग. अब ये हैरिंगटन लिविंग जो है, होम डेकोर या फर्नीचर वाउचर आपको मिल सकता है. इनके बारे में बता देती हूँ आपको. हैरिंगटन लिविंग मैनिकाओ, इनकी स्प्रिंग सेल अभी चल रही है. बहुत ही ज़बरदस्त फर्नीचर है, 60 मंथ्स का इंटरेस्ट फ्री चल रहा है. टर्म्स एंड कंडीशंस आप समझने के लिए आप बिल्कुल हमारी और इनकी भी वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं, और साथ साथ हैरिंगटन लिविंग मैनिकाओ भी आप पहुंच सकते हैं, जो सुपर सेंटर में ये लोकेटेड है. ओके, इन तक पहुंचने के लिए, यानी कि इनके इस वाउचर तक पहुंचने के लिए आपको करना है HL लिखना है. HL लिखिए, बताइए कि अगर आपको ये वाउचर मिल जाएगा तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हैरिंगटन लिविंग से जाके खरीद के लाएंगे अपने नाम के साथ. ऐसी कौन से फर्नीचर का पीस है जो आपको लगता है, या फिर कोई सपोज़ कीजिए होम डेकोर, ये भी हो सकता है आपको चाहिए. डेफिनेटली आपको बता देते हैं, हमारी जो कंपटीशन है, बस अब से लेके जब तक मैं आपके लिए ऑफिस शाउट आउट लेकर आऊँगी, थोड़ा उसके बाद एक गाना मैं बजाऊँगी, 5 मिनट का टाइम आपको देती हूँ. नाउ द थिंग इज, स्टैंडर्ड कैरियर चार्जेस अप्लाई जब आप 5599 पे टेक्स्ट करते हैं. तो याद रहे, आपको कीवर्ड है HL. आपको सिर्फ ये बताना है ऐसा कौन सा फर्नीचर की पीस है जो आपको अगर मिल जाए वाउचर, तो एक $1,000 का वाउचर है. तो किसको, जिसको भी मिलेगा बहुत ही लकी रहेगा, क्योंकि इनका शोरूम मैंने देखा हुआ है. क्या क्लासी फर्नीचर, हैरिंगटन यानी UK रिलेटेड है ना, तो फर्नीचर हैज़ टू बी क्लासी. हमारी वैसे टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हम .rova.nz पर आप क्लिक कर सकते हैं और डिटेल्स जानकारी हासिल कर सकते हैं. ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद नन अदर देन नितेश हीरा जी.
0: माय टाइम विद कशिका,
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, अभी तो नहीं.
3: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
4: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
3: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
3: 2 शहर, 1 सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है, और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
9: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
10: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
9: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
11: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800 4 NZPMI.
6: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
13: Get the bold new flavors of Subway rice balls, like chicken teriyaki or green goddess falafel, packed with protein, fiber, warm brown rice and your choice of salads from just $11. Eat fresh with new Subway rice balls.
14: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havil Jolion, Havilet 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
15: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: Eat better, live better. And of course, हमारे साथ साथ telephone line पर आ चुके हैं none other than Nitesh Hira ji. And a very, very good morning to you, Nitesh ji. कैसे हो?
16: Good morning, Kashika ji. I'm very good.
1: Okay. मुझे आपसे एक बात पूछनी है और वो है कि, you know, this is a सवाल coming from me, actually, from my friend Biraj. और इन्होंने बताया है व्हाट आर इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंट बूस्ट वीजा एज आई एम लुकिंग टू ब्रिंग माय पेरेंट्स टू न्यूजीलैंड ऑन दिस वीजा.
16: जी, एक्सेलेंट क्वेश्चन. सो पेरेंट बूस्ट वीजा जो है, दैट्स अ रिक्वायरमेंट. उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, मैं वो आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ. जो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड ने ये पेरेंट्स के लिए 10 साल वाला वीजा खोला है, उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये कि आपको इंश्योरेंस चाहिए which covers you minimum at least 250,000 New Zealand dollars per year. मतलब अगर कोई भी हेल्थ इवेंट होता है पेरेंट्स के लिए यहाँ पे, तो एटलीस्ट $2.5 लाख तक का उनका न्यूजीलैंड का कवर है. दैट इज बेसिकली टू कीप इन माइंड कि भाई यहाँ का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रेन में ना आए, नंबर वन. दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योरेंस जो है, दैट हैज टू बी टेकन एटलीस्ट फॉर 1 year मिनिमम एट अ स्ट्रेच. मीन्स वो मंथ ऑन मंथ आप नहीं ले सकते. ओके, लाइक अदर नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज आप मंथली पे कर सकते हैं, बट उसकी जो है वो एनुअल ही है वो पॉलिसी. क्योंकि लोग, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि लोग इंश्योरेंस खरीदें, पेरेंट्स को यहाँ पे बुला के कैंसिल कर दें, एंड देन देयर पेरेंट्स हैव अ हेल्थ इश्यू, देन दे आर स्ट्रगलिंग इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. सो टू कीप दैट थिंग राइट. जो रिक्वायरमेंट है उसकी ये है कि आपका जो इमिग्रेशन मेडिकल होता है वीजा के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंडिया से आ रहा है, इंडिया का जो डॉक्टर इमिग्रेशन मेडिकल करेगा उसकी फुल रिपोर्ट चाहिए होती है उस इंश्योरेंस के लिए, नंबर वन. और दूसरा, आपको वीजा इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए होता है इमिग्रेशन से. प्रिंसिपल अप्रूवल जब आ जाता है वीजा का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट देती है कि भाई हाँ, यू कैन गेट दिस इंश्योरेंस. सो देर आर 2-3 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और सिर्फ 2 ही इंश्योरेंस है न्यूजीलैंड में जो ये इंश्योरेंस देते हैं. एंड अश्योर वन एज अ बिजनेस, वी वर्क विद बोथ द इंश्योरर्स. They are Unimed and Orbit. Okay, so we have partnership with both of them.
1: Wow.
16: But they have very specific requirements. So if anyone is looking for a parent boost visa, bring their parents. We are happy to absolutely consult and guide them. Ke us insurance mein covered kya kya hai, sari cheeze.
1: Wow, fantastic. And Assure One mein aap definitely call karke baat kar sakte hain Nitesh Hira ji se. He sounds so convincing. And I'm very sure jitne log struggle kar rahe hain apne thode aged parents ko lekar aane ke liye, Nitesh ji is going to be the right person to talk. 0800-77-HIRA, 0800-77-HIRA is the number where you can give a call and talk to him. Mujhse bhi yahan pe aap call karke unka otherwise number le sakte hain, 021-279-3040. assureone.co.nz की वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं. थैंक्स नितेश जी, एंड
16: थैंक यू कृतिका जी. थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स एज वेल.
1: माय प्लेजर. टेक केयर. बाय बाय.
16: थैंक यू. बाय बाय बाय.
17: ऑफिस शाउट आउट.
1: जब मैं ऑफिस शाउट आउट की बात करती हूं, तो वेलिंगटन, ऑल द वे फ्रॉम वैली, हमारा कैपिटल, आ रहा है एक टेक्स्ट. उन्होंने बताया, वेरी वेरी हैप्पी स्पेशल अकबर के दरबार की बहुमूल्य रत्न जैसी हमें जताने वाली, स्पेशल फीलिंग करवाने वाली प्यारी काशिका जी को शुभ प्रभात. फ्रॉम एश फ्रॉम वेलिंगटन. अ बिग थैंक यू टू यू. आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है. थैंक्स वंस अगेन. एंड चलिए अगला गाना आप लोगों के लिए, बहुत लोग ऐसे हैं खास तौर पे, आई गॉट अ फ्रेंड नीलम, और आप शायद स्टफ के लिए काम करती हैं. आप जब भी इस गाने को सुनती हैं और आप कहती हैं इस गाने को दोबारा बजाओ. अब भाई दोबारा तो नहीं, जब जब हमारे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं वो यहाँ पे गाने फिक्स करती हैं कि भाई स्पेशली ये करंट सॉन्ग्स जो होते हैं ना, जो अभी नंबर वन चार्ट्स पे चल रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर सॉन्ग्स जो होते हैं वो ही करते हैं. बाकी रेस्ट वी ट्राई एंड हेल्प यू विद योर मूड्स.
15: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: ब्रांच तो हमारी नहीं, लेकिन 5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं, 4 विद मॉनसून बकेट्स, इनको रीइन्फोर्स किया गया है क्रू को, जहां पे एक बैटल चल रहा है फॉर द लार्ज ग्रोइंग वेजिटेशन फायर जो सदर्न शोर्स में है ऑफ लेक फाकाटिपू नियर क्वींस टाउन. आज सुबह की ये खबर है. और ये ब्लेज जो है लगभग ओवरनाइट बढ़ता चला जा रहा था एंड ब्रोक आउट नियर वॉल्टर पीक स्टेशन कल दोपहर के समय की ये बात है. एंड कहा जाता है कि 1800 मीटर्स की पीक पर ये जो स्मोक है ये पूरे क्वींसटाउन की तरफ फैल रहा है. अब ग्राउंड एंड एयर ऑपरेशंस जो है इन्होंने साइट पे आज सुबह 7 बजे से फिर से काम शुरू कर दिया है. कंडीशंस आर रिलेटिवली काम, सो नो पैनिक एट द मोमेंट, बट वी एक्सपेक्ट कि ये चैलेंजिंग टाइम हो सकता है अगर हवा तेज़ हुई. सो लेट्स जस्ट प्रे फॉर क्वींसटाउन. जितने भी लोग क्वींसटाउन के फैंस हैं, भाई इतना ही कह सकती हूँ, Let's just pray for our country.

0: better.
1: वे उन सबको तो सराहना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इतना टाइम निकाल के एफर्ट निकाल के सुनते हैं और जब सुनने के बाद टेक्स्ट करते हैं. तो अश्विन चंद, मैंने आपका नाम ऐड कर लिया हैरिंगटन लिविंग के एक जो $1,000 का जो वाउचर मिलने वाला है उसमें. पुष्पा फॉर द बेडरूम फर्नीचर टॉल बॉय, नीलेश दयाल फॉर बेडिंग्स.

0: साक्षी फॉर रिक्लाइनर, आउटडोर सोफा के लिए पूजा, HL करके काउच लिख के भेज दिया, नाम भी नहीं लिखा काउच, ओके। अमन फॉर सोफा, सोफा बेड धारा आपने, विशाल आपने डाइनिंग टेबल लिख के भेजा है, और टॉल बॉय एंड बेड्स अश्विन चंद आपने, साइड ड्रॉअर मोहितेश आपने भेजा है, एंड आई नो दैट यू आर फ्लाइंग एयर फ्रॉम फॉर ए न्यूजीलैंड, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई आपको अभी क्वींसटाउन के बारे में पता नहीं चला, बट अब तो पता चल गया, आपका कॉल आया था, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल।
1: Ladies and gentlemen, unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं, और उनका हमसे कोई लेना-देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real, और conversations होते हैं बिना mask के।
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
3: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
4: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
5: Nolimit's massive sellout is in its final days. Massive deals on thousands of products from leading brands. TVs, whiteware, computers, smartphones, small appliances, plus loads more priced to sell out. Big brands, hot prices, end to end stay. Conditions apply. Only at Nolimit.
6: Taking part in the 2026 general election feels easier when you know what to expect. If you are disabled, a caregiver, or a support person, then you may have questions about the accessible options available to enrol and vote. Join one of our online sessions to get practical information and ask the questions that matter to you. Find session details at vote.nz or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
7: When you've got roads, rain and traffic, you get potholes.
8: Oh man, potholes are the worst.
7: Yes, we know. That's why we have the Auckland Council Pothole Promise.
8: Huh, how does it work?
7: Well, someone alerts us to a pothole via the website. Then our crews head out, spot the pothole, catch it and release it somewhere where it won't be a nuisance.
8: Really?
7: No. We fill them with an approved asphalt premix, usually within 24 hours. It's how we keep the city moving. Search Pothole Promise. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
9: My future is still being written. I don't know what I'll be when I grow up, but I know I want the chance to find out. Your investment in children can help me get there. With the right support, I can feel safe, learn, grow, build confidence, and discover what I'm capable of. That's why Barnardos is asking Aotearoa to invest in children. Invest in children at investinchildren.nz. And invest in me.
10: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. Hi, मैं हूँ गुरु खंडोला from Logic Finance. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं, उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूँ. Logic Finance के गुरु खंडोला बातों में नहीं, काम में विश्वास रखते हैं.
11: Terms, condition, fees and credit criteria apply. Call Logic Finance ke Guru Kendola ko on 0800 Logic G, which is 0800-564-24.
1: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary. Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: So thank you so much. Aapka call hai. Dekho, maine apna tag hi miss kar diya, sweeper. Lekin Roshni, aapko dressing table chahiye. HL likh ke aapne bhi bhej diya. Yaad rahe, ye 5 minute ka time hota hai. Aur in 5 minuton mein aapko humare paas ye entry bhejni hai. Now, coming to the ड्रीम, अब ये ड्रीम की बात करते हैं. आग से रिलेटेड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, बताया कि क्वींसटाउन में क्या हाल है, क्या चल रहा है क्वींसटाउन के पास. तो अगर यू नो, कभी कभी ड्रीम्स जो आते हैं जहां आप पे आपको लगता है कहीं फायर हो रहा होता है, तो दैट्स बेसिकली सिंबलाइजिंग कि आपके इंटेंस इमोशंस क्या हैं, आप किस तरह से वो आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कोई पैशन होती है या कोई अंडरलाइंग वार्निंग है जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, और कभी कहते हैं कि कभी आप किसी के घर को जलते हुए अगर देखते हैं, इट ऑफन पॉइंट्स आउट कि सीवियर स्ट्रेस चल रही है, या डीप सीटेड एक फियर होता है कि यू आर लूजिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फैमिली स्टेबिलिटी. सो आई होप आई हैव रीच्ड समवेयर टू गिव यू द मैसेज व्हाट वी कैन. बट यह जब हम बात करते हैं फैमिली की स्टेबिलिटी के बारे में, तो मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताना पड़ेगा आपको. इट्स पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ, है ना. जिस तरह से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, इट्स ओके कि अगर हम अपने माइंड का भी ध्यान रखें और किसी से बात करें, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको लग रहा है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू फेस इट ऑल अलोन. एशियन फैमिली सर्विसेज एक फ्री, कॉन्फिडेंशियल और प्रोफेशनल इमोशनल सपोर्ट देते हैं उन लोगों को जो आपके कल्चर के साथ जुड़ जाते हैं या आपकी भाषा में आपसे बात कर लेते हैं. तो चलिए आपको ये नंबर दे देती हूँ, आप इनसे बात करें ऑन 0800 862 342. एशियन फैमिली सर्विसेज जो है आपकी मदद कर सकती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा डेंजर में है इमीडिएटली, तो 111 पर भी आप कॉल कर सकते हैं.

0: Do you buy 0800 Rachna? Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो 800 रचना का नंबर जिस पर आप इनसे कॉल करके रचना के साथ बातें भी कर सकते हैं. बस अगले घंटे पर मेरे पास और भी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. एक और गिव अवे का मौका मिलेगा जहां आपका नाम ड्रॉर क्यों लिखा बोला मैंने, यहां लिख के भेजा होगा आप में से किसी ने ड्रॉर. और मैंने लास्ट में जब पढ़ा ऐसा हो जाता है माफ़ कर दिया करते हैं. ओके, सिक्स वर्ड स्टोरी. अब ये सिक्स वर्ड स्टोरी का जो थीम था मेरा था किड्स, बच्चे. तो आप 5599 पर मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर सकते हैं. आपको पता है फ्राइडे के दिन मैं स्टोरीज़ जो है इकट्ठी करती हूँ और उन स्टोरीज़ का एक वीडियो बनाती हूँ. तो कोशिश यही है कि ये मेरी एक प्रथा जो चल रही है मैंने वो कामयाब रहे, और वो आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती. तो चलो फिलहाल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनते हैं. बहुत दिनों के बाद ये गाना रेडियो पर मैं सुन रही हूँ, एंड आई प्रेफर दैट यू टू इन्जॉय द सेम.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: for your home. Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m. आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. 140cc quality lawnmowers, just $249. Cordless leaf blower and battery, just $70. Cordless weed eater and battery, just $70. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products.
6: These are some things you can achieve in one blood or plasma donation appointment. Visit nzblood.co.nz to book.
7: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
8: Check.
9: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
8: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A fire on Queenstown's Walter Peak has now torn through 1,200 hectares. Concerns are growing about the wind picking up today as well. 5 helicopters are supporting firefighters on the ground. An exclusion zone's been set up and residents are urged to keep their doors and windows shut. David Tamahere will not face a retrial over the murders of two Swedish backpackers here in 1989. His convictions, which he spent 20 years behind bars for, were quashed earlier this year. As RNZ reports, Justice Simon Mount this morning discharged Tamahere on the two charges of murder and said he was free to go. An Air New Zealand flight has landed safely at Napier Airport after a steering alert. The plane received an indication relating to its front wheels mid-air. The Ombudsman's Office has released new guidance to combat a rise in AI official information requests. John Allen says the tech is producing pages of unnecessary paperwork.
11: So what is it that I am complaining about? What is the agency that I am complaining about? What do I think would put it right?
10: And Paramount has officially taken over Warner Brothers in a massive deal worth just shy of $200 billion New Zealand dollars. The move will bring outlets ranging from HBO to Comedy Central under one roof. In sport, football first, and Cristiano Ronaldo has declared himself available to play for Portugal again. The football superstar walked out on the national team, frustrated he wasn't used against Norway, but Ronaldo's released a statement saying he's apologised for his actions and will accept any punishment. And in rugby, Black Ferns captain Ruahe Dumont is poised to return from a calf injury for this month's 3-match home test series against France.
12: Sports News.
8: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन
14: सूचित किया जाता है कि प्रवीण शैलेंद्र और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शार्वीन प्रकाश की मां राखी राखी फिजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांतिबाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1:30 एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशन में किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ सूचित रहें। सूचना दोबारा सुने, प्रवीणा शैलेंद्रा और गेटवे चार्टर्ड अकाउंटेंट के शार्वीन प्रकाश की मां राखी राखी फिजी के स्वर्गीय श्री राम की पत्नी शांति बाई राम की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1:30 एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस में किया जाएगा।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 15 degrees and the highs of 18 overnight, temperature of 11. आज का फॉरकास्ट बताया जा रहा है सदलीस जो है थोड़ी थोड़ी सुबह के समय आपने डेवलप करी हुई ठंडी हवाओं के साथ महसूस कर ही ली होगी. 7:31 पर सनसेट बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Ladies and gentlemen, dil tham ke baithi, kyunki aa rahi hai.
3: My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है जहाँ पर आपके साथ मिलकर मैं ये 10 से 12 का समय जो है निकालती हूँ. और अब तो चलो यहाँ पर अब एक ही घंटा बचा है. मेरी कोशिश यही है कि आपके साथ साथ ऐसी बातें शेयर करूँ जो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहें. और अब जब फ़ायदेमंद की बातें करती हूँ तो सबसे पहले तो फ़ायदा आप उठा लीजिए जो आपके लिए वीकेंड की डील्स लेकर आ जाते हैं नन अदर दैन कशिश फूड्स. इनके प्रोडक्ट्स और कमाल की चीज़ें आपको शेल्फ्स पर ज़रूर मिल जाते हैं जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं. सो आपका टाइम कैसे गुजरने वाला है हम वार पर आप ऑलरेडी प्लान अपना वीकेंड का रेडी कर चुके होंगे. मैं भी अपना प्लान रेडी कर चुकी हूँ लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ज़रूर टकराऊंगी आपके साथ. कहीं ना कहीं आप मुझसे हेलो हाय करिएगा ज़रूर. ओके सेल्फी भी लेंगे. ओके सो हियर वी गो. लेट मी प्ले द फर्स्ट सॉन्ग ऑन अ पर्सनल रिक्वेस्ट एंड लेट्स सी इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ द सेम सॉन्ग एज मी टू. क्योंकि मुझे अरिजीत सिंह जो थे पहले ओके अच्छे लगते थे. जब उनसे आईफा में हम मकाओ में मुलाकात हुई तो उस समय ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अस विद आर हम टीम एंड वी डिड नॉट रियलाइज कि दिस मैन विल बिकम अ वंडर सिंगर. और हम लोग प्रीतम दा की वर्कशॉप में गए हुए थे. वहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमें नहीं पता था कि वो हमारे बगल में बैठे हुए थे. एनीवे उनका एक ही गाना आया था और ओके सब राबता एंड ठीक है राबता में सुन लिया तुम हो इस तरह के गाने उनके चले थे. मगर वो जब एक हिट हुए और जो मेरे दिमाग को हिट किया वो गाना मैं आपके लिए आज लेकर आ रही हूँ जिसके बाद से मैं समझती हूँ नोबडी हैज बीन एबल टू रिप्लेस हिम टिल नाउ.
0: मिड मॉर्निंग मज़ा बचाओ क्या

0: यू नो हमारे फोन्स, इनके बिना हम रह नहीं सकते. आजकल की लाइफ ही ऐसी हो गई है कि बिना फ़ोन के हम, मुझे याद ही नहीं है कि हमारे पेरेंट्स के पास ऐसे फ़ोन्स होते थे या कुछ. हाँ, हम उन्हें कॉल मिलाते थे, ट्रैवल ट्रंक कॉल्स होती थी, या फिर एसटीडी बूथ पे जाके कॉल्स करना था, या फिर अपने घरों के फ़ोन्स के साथ हम लोग जुड़ जाते थे और फ़ोन पे बात कर लिया करते थे. बट अब तो खैर इतना इजी हो चुका है. वैसे आपके फ़ोन्स के बारे में बता दूँ, आपके ख़ास तौर पे फ़ोन की बैटरी के बारे में बता देती हूँ. द केमिस्ट्री जो आपके फ़ोन की बैटरीज को रिचार्ज करती है, इस कॉल लिथियम आयन बैटरीज, और इसका एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है और ये शॉर्टन होती चली जाती है अगर रिपीटेडली आपका फ़ोन जो है ज़ीरो बैटरी तक पहुँच जाता है. ऐसे में आपको फ़ोन जो है आप जब चार्ज करने लगा देते हैं, रात को भी लोग लगाते हैं कि चलो ठीक है आप फ़ोन को रात भर आप लगा देते हैं, बट इट इज़ एडवाइज्ड दैट डोंट लीव योर फ़ोन चार्जिंग ओवरनाइट एंड अवॉइड बैटरी को टू मेक इट इनटू 100%. इससे लाइफ स्पैन जो है कम होना शुरू हो जाता है. इन प्रिंसिपल ये एक साउंड एडवाइस है जो कि एक फंडामेंटल केमिस्ट्री है और बैटरी जो आपके फ़ोन के अंदर है वो चेंज नहीं होती है. रेगुलरली इसको आप जब ड्रेन करते हैं, ज़ीरो पे लेकर आते हैं, तो उसके 100% लाइफ स्पैन से वो कम होता चला जाता है. हाउएवर जो मॉडर्न फ़ोन्स हैं उनकी हेल्थ मैनेजमेंट बैटरी की अच्छी रहती है, चार्जिंग कंट्रोल रहता है. एज अ रिज़ल्ट यू नो आपके फ़ोन जो अगर प्लग्ड इन होते हैं ओवरनाइट, इट्स ओके, इट्स रेडी टू एक्सेप्ट. बट रादर देन सिंपली टेलिंग पीपल कि आप ओवरनाइट चार्ज मत करो, मॉडर्न फोन्स अब ये इंक्रीजिंगली जो होता है कि बैटरी जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम के जो आवर्स होते हैं क्या होता है. अब एप्पल ऑफर करता है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग सिंस 2019. सैमसंग एंड गूगल पिक्सल के जो फ़ोन्स होते हैं सिमिलर फीचर्स देते हैं. पिक्सल फोन्स जो हैं इनके पास दे हैव अडेप्टिंग चार्जिंग विच इज़ ऑल्सो चार्जिंग हैबिट्स, किस तरह से स्लोली ओवरनाइट चार्ज होता है और उससे फिर 100% बैटरी चार्ज हो जाती है. सैमसंग के फ़ोन्स हैव द स्लीप प्रोटेक्शन टाइम, स्लीप टाइम प्रोटेक्शन, जहाँ पे कुछ स्टॉप चार्ज करना बंद हो जाते हैं एट 80%, और फिर आपके नींद के साथ आपके स्लीप के टाइम के साथ एडजस्ट कर जाते हैं. ऐसा हुआ है. बाय द वे जो नया आईफोन 17 जो है उसमें एक अडेप्टिव पावर मोड है जो टिपिकल बैटरी के कंजम्पशन और को बता देता है. कोशिश कीजिए उसको आप ऑन रखिए. अपनी चार्जिंग की लिमिट को सेट ज़रूर कीजिए अप टू 80%. सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर ईवी कार्स एज वेल. डोंट चार्ज इट 100% एज दैट्स व्हाट दे से. मोस्ट ऑफ द फोन्स हैव गॉट, मॉडर्न फोन्स हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ फैसिलिटी, लेकिन कुछ लोगों के पास ये बैटरी की फैसिलिटीज मतलब जो है कम होती है कि मोस्टली क्या होता है फ़ोन हीट होना शुरू हो जाता है. अब द केमिकल्स इनसाइड दी इन जो लिथियम आयन बैटरीज जो है वो सेंसिटिव होती हैं टू हाई टेम्परेचर, और फिर एट टाइम्स वो हॉट कंडीशंस के टाइम पे स्पेशली आप सन में रख के देखिए आप फ़ोन को, आप फ़ोन को उठा ही नहीं पाएंगे, फ़ोन डेड हो जाएगा आपका. फ़ोन्स अपने आप हीट को रिस्पॉन्ड करते हैं और ये चार्जिंग की लिमिटेशन जो है वो कम कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं. सो Can you charge your phone overnight or not? Well, this is a question we definitely you need to check आपके फ़ोन के जो ऑफर्स होते हैं जिस समय आप अपने फ़ोन्स खरीदते हैं कि उसकी बैटरी की क्या लाइफ है, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं.
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुज़बे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे, ओनली ऑन हम.
7: क्या आपका लोन डिक्लाइन हुआ है? क्या आप हिम्मत हार चुके हैं? तो एक मौका मुझे देके देखिए. हाय, मैं हूं गुरु खंडोला फ्रॉम लॉजिक फाइनेंस. जो लोन्स डिक्लाइन और डिफिकल्ट होते हैं उनके अप्रूवल का मैं स्पेशलिस्ट हूं. लॉजिक फाइनेंस के गुरु खंडोला बातों में नहीं काम में विश्वास रखते हैं.
8: टर्म्स कंडीशन फीस एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई। कॉल लॉजिक फाइनेंस के गुरु केंडोला को ऑन 0800 लॉजिक जी विच इज 0800-564-424।
9: Media Works Complaints, how can I help?
10: Yeah, hello?
9: Hi.
10: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
9: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
10: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
9: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
10: Great, sing it to me.
11: Advertise with
12: Media Works.
11: New Zealand listens to us.
13: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
14: Can't you just use my line from the TV ad?
13: Well, let's just do it again, please, Pepper.
14: Phone dollars are for phones. Obviously.
13: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
14: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
13: QTs and Cs.
14: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
13: Cool, and the end bit.
14: One New Zealand. Let's get connected.
15: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
16: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
17: I need justice to you.
18: I need justice. Badla chahiye.
16: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar, and many more.
19: Is baar khatra kab, kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
16: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
19: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
20: Now when you're in the loop with ANZ and take public transport, money loops back. Get 50% cash back on Wednesdays and weekends in October when you tag on and off AT public transport with a personal ANZ Visa card. Eligibility terms and conditions, fees and exclusions apply.
21: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
0: All right, Six Word Story. Mere paas ek story aayi hai, and this is very pretty, and I'd love to thank you. So, Jim, I don't know what's your full name, but Jim, aapne likhe bheja. Born late, loved forever, grew quickly. And he said he was the youngest child in his family with a big age difference between his sister and him. So, the sister is more like a mother, and so that's why he has justified it, his story. Born late, loved forever, grew quickly. Iska matlab aapne jaldi jaldi responsibilities utha li hain. Maine ek banaya, and I said, quiet house, how I miss chaos. Quiet house, how I miss chaos. Bacche bade ho jate hain na, uske baad phir wo ek jo kolahal hota hai, ek jo unki shararte hoti hain, jo unki baatein hoti hain, wo nahi hoti, sab apne apni jagah busy ho jate hain. Hai ki nahi? Lekin abhi main aapko busy karne wali hu. Poochho kyun, kyun, kyun? Kyunki isliye mere paas aa chuka hai Festival of Fortune mein, jahan paas hai $5,000 worth ke prizes hum is Diwali pe aapke saath share karne wale hain. To ab mauka aa raha hai phone uthane ka. Phone uthaiye, $1,000 worth ka Mitre 10 ka voucher aap jeet sakte hain. Thank you to NZPMI, jahan NZPMI aapke properties ko unlock karte hain aur true sale value NZPMI aapko bata deta hai. Aapke local development expert bhi hain, free site assessment bhi aapke liye karte hain. Aap visit kar sakte hain nzpmi.co.nz ya call kar sakte hain 0800 4, that is a numeric 4 number, and NZPMI. So 0800 4, NZPMI is the number. Aapka keyword hai NZPMI. NZPMI, आप किस एरिया में आपका घर है, बस आपको यही बताना है जो आप असेस करवाने वाले हैं या करा सकते हैं. NZPMI लिखिए, आपका घर कौन से एरिया में है, और अपना नाम लिखना मत भूलिएगा 5599 पे. हमारी टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए हम .rova.nz पर आप पहुंच सकते हैं. याद रखिए, अब से लेके इन द नेक्स्ट मैं गाना बजा रही हूँ आतिफ असलम एंड शालमली तेरा नाम दूं, जब तक वो गाना शुरू होता है तब तक के लिए टाइम आपके पास अवेलेबल है. अरे वाह, NZPMI तो आपने लिख दिया 5453, अपने नाम लिखना भूल गए. सनिल, थैंक यू. मोहितेश, फ्लैट बश, फैंटास्टिक. Vayuku Navi, aapne message ke NZPMI, not BMI. Kyunki jab hum ye aapka naam agar suppose karo draw mein dhoondna hota hai na hame, to hum us hisab se chalte hain ke ha keyword hum dalte hain NZPMI search mein. To jitne sahi correct NZPMI likh ke keyword aata hai, wahi link हमारे पास आ जाते हैं. तो सुनील फ्रॉम पापा टोय टोय, वायु को से नवी आप भी हैं, लेकिन आपने एनजेड बीएमआई लिख दिया.
21: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

हम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वैसे मैं आपको बताना चाहती हूं अबाउट एनजेड पीएमआई के लिए भी मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे मैंने आपकी एंट्रीज लेनी थी। तो आप रितेशनी लता, आप मानुरीवा में रहती हैं एंड आपने दो बार टेक्स्ट किया है। अली, आप पापटोए में हैं। न्यूलैंड से नेहा है, टाकानिनी से चरण आप हो, मैसी से धारा एंड साक्षी फ्रॉम वेस्ट ऑकलैंड, विशाल फ्रॉम पापटोएटोए, सुनील फ्रॉम पापटोएटोए एंड साथ वायुकु से, जैसे कि मैंने पता है बीएमआई आपने गलत लिख के भेजा था, देखो ना पकड़ लिया, बट डजेंट मैटर। अब मुझे आपको एक और ख़बर देनी है। कह रही हूँ कि क्या इतनी खबरें देती हो। एक स्कूल था क्रिम्सन एजुकेशन, जिन्होंने रिलीज़ किया अपनी रैंकिंग फॉर न्यूजीलैंड्स टॉप स्कूल्स।

एसीजी टोरंगा, इन्होंने अर्न किया डिस्टिंक्शन, जहाँ पे इन्होंने बताया कि दे आर बियॉन्ड द बे ऑफ प्लेंटी। इनको 14th नेशनली रैंक किया गया था। इट वॉज द हाइस्ट रैंक्ड स्कूल आउटसाइड द कंट्रीज मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी बात है कि क्रिम्सन एजुकेशन को 2026 की रैंकिंग मिली, एंड इट कैन बी रैंक्ड एज द हाइस्ट रैंक्ड स्कूल आउटसाइड द मेजर सिटीज़। इट्स कमेंडेबल। किस तरह से उनका रिकग्निशन होगा, इनकरेज करते होंगे, बच्चों के गोल्स वो बढ़ाते होंगे। आई एम श्योर इट मस्ट बी ऑल वेरी वेरी कमेंडेबल।

0: अनुष्का।
1: वाह,
2: हाउ
1: अद्भुत।
3: अनुष्का शर्मा और विराट कोहली आर बैक इन द न्यूज की उन्होंने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर वृंदावन के आश्रम में अगर वो वहां गए थे तो 5 करोड़ उनको दिए गए थे फॉर अ प्रमोशन। रियली ऑनेस्टली ऐसा मैंने नहीं सुना, बट इट्स ओके। ये बात का भी खंडन बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन उनके बारे में एक और खबर आई है कि गोदरेज के स्काई शोर जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है यारी रोड विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस। आई मीन बाहर निकलो रोड के तो लेफ्ट में जाओ तो यारी रोड, तो मुंबई के वर्सोवा एरिया में लगभग 14.9 करोड़ का वो एक रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है। भाई मुझे जाके इस बार बॉम्बे जा रही हूँ, देख कर आऊँगी। सो 8 जुलाई को उन्होंने रजिस्टर भी किया। आई एम सो एक्साइटेड, दे विल बी माई नेबर्स नाउ। सो दिस अपार्टमेंट इज़ लोकेटेड ऑन द 24th फ्लोर ए टावर में। टोटल अप्रॉक्सीमेट एरिया इज 2,153 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया। कार्पेट एरिया इज अराउंड 2,026 स्क्वायर फीट और एक एक्सक्लूसिव बैल्कनी टेरिस एरिया है, कमाल की जगह है। एक वन स्टॉप जो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का डेवलपर है उन्होंने इसको दिया है, अग्रीमेंट करा है और कहा जाता है कि 2031 तक ये जो अपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग हैं, वो रेडी हो जाएगी। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। पता नहीं हम कहाँ हों कहाँ ना हों, लेकिन कहा यह जाता है एक और घर अनुष्का के पेरेंट्स के लिए भी जो है वो भी रेडी किया जा रहा है। Isn't that interesting?

0: हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.
1: I was 11 when I was put into an induced coma and airlifted to Starship. I have a rare lung condition, and my family gathered to say their goodbyes. But instead,
2: I woke up. The people at Starship saved my life. And now I have two beautiful kids of my own. Looking back, seeing how far I've come, I think little me would be so proud.
3: Mercury, helping Starship turn little into big for 25 years.
4: दिवाली आ रही है और फॉर्चून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्चून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्चून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. T's and C's apply.

0: रेस्क्यू मी रिसाइकल मी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग घर में बना लेते हैं और उसके बाद हमें पता नहीं होता क्या करें। अब जैसे उस दिन चिकन पुलाव के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बनाएगा, ठीक इसी तरह से आपने उसी दिन मैसेज किया था और आपने कहा था अरे काशिका बताना मत भूलना, काले चने आपने घर में बनाए थे और आपने कहा उन काले चनों को आपने काले चने की सब्ज़ी जो थी उसके बाद वो दूसरे दिन खाया नहीं जा रहा था, बच्चे नहीं खा पा रहे थे, तो छोटा छोटा प्याज काटा, टमाटर काटा और आपने क्या किया उसको काले चने को सुखा डाला, उसकी जो करी थी सुखा दी और उसके अंदर फिर आपने ये सब चीज़ें डाल के नींबू डाल के उसकी चाट बना दी और वो फटाफट ऐसे झटपट ख़त्म हुआ कि पूछो मत। ऐसी ही चीज़ें जब ख़त्म होती है ना तो लगता है कि भाई बहुत बहुत हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है। बाय द वे अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, buzz@humfm.com के ज़रिए हमें आप इन्फॉर्म करें एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि हम आपकी कम्युनिटी की आवाज़ भी बनना चाहते हैं। चलिए एक गाने की तरफ आपको लेके चलते हैं।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया. थैंक यू सो मच. मैंने तो इन्जॉय किया, पता नहीं आपने इन्जॉय किया कि नहीं किया, लेकिन आई रियली लुक फॉरवर्ड टू कमिंग डाउन ऑन इन द स्टूडियोज़ एंड फिर हम आकर जब आप और हम मिलकर एक साथ बात करते हैं ना, बस समझ लीजिए मेरा दिन इस तरह से खूबसूरती के साथ, म्यूज़िक के साथ निकल जाता है, क्योंकि पूरा दिन बहुत हेक्टिक हो जाता है. दिवाली आ रही है, जब दिवाली आ रही है बहुत सारे काम होता है हमारे सिर के ऊपर. हाँ, हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में सब अपना अपना काम करते हैं, तो चाहे वो विजय भाई हों, चाहे वो सैंडी हो, चाहे वो पूजा हो, या फिर मैं हूँ, हमारे अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं. हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बहुत बिज़ी होते हैं, पर जब इन सब को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट इतना बड़ा खूबसूरत सामने आता है. तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है हम्पवार या बुधवार, मेरी मुलाकात होगी वो दिन कहलाएगा बृहस्पतिवार, वीरवार, या ओके. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. लुक आफ्टर योरसेल्फ.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो।
2: ये गलत बोल दिया यार।
1: और पहनता भी नहीं उसको।
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी ब्रांड हो गया ना
1: रुस्बे के बाल लगे उससे
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuku and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us, Manuku and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J Crew.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279499 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
8: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
7: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
9: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
10: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं। कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342। अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें।
11: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
12: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 weeks at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 weeks! On now at Pack and Save.
13: Time check.
14: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800-00010.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Residents near a massive fire at Walter Peak near Queenstown are being urged to keep their windows and doors shut. The blaze has grown to around 1,200 hectares. Additional fire crews will be arriving throughout the day. Christopher Luxon is touting a raft of new policies for small businesses if National is re-elected. The 47-point plan, including changes around employment disputes and seasonal hiring, Luxon says it's about cutting red tape.
16: So that small businesses aren't bogged down in compliance. It's about simplifying our employment settings, streamlining planning rules, driving trades, and of course, investment boosts.
15: The PSA union warns looming budget cuts at IRD will mean job losses and reduced activities. The department says they'll need to reduce costs by 20% over the next 3 years, but insists no calls have been made as of yet. The union claims IRD is leaving thousands of workers in the dark. And overseas, student demonstrations in solidarity with striking teachers have escalated across France. The protests have turned violent, with police using tear gas and water cannons against crowds. A teenager has even had his hand blown off accidentally during one confrontation. In sport, rugby first, and it's been 40 years since Australia last beat the All Blacks at Eden Park in Auckland. Wallabies flanker Fraser McWright says they can't afford to focus on history ahead of Saturday night's clash.
17: Can't really think about Eden Park and trying to win the Bledisloe or trying to break, you know, the curse or the hoodoo or whatever people call it.
15: The teams are out tomorrow. The All Blacks are revealing their team at midday. And in football, All Whites defender Tim Payne's viral fame in South America continues. He's the face of a new limited edition McDonald's burger in Paraguay, where he plays now for Club Olympia.
0: Sports
18: Breakfast News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: वेदर के हाल चाल, आज 20 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 11 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, 10% चांस है बारिश के आज वैसे, लेकिन यस सनसेट होगा आज 7:31 पे।

0: क्या ओ नमस्ते सस्त्रीकाल अस्सलाम वालेकुम बुल आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। वेरियस बने रहिए आप अंटिल थ्री। अभी से लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो आपके आपको बतानी है, लेडीज खबर से लेके कुछ स्टोरीज एंड कुछ और भी तरह तरह की चटपटी खबरें, तो आप बस बने रहिए। शुरुआत करेंगे बहुत ही खूबसूरत गाने से एंड यस इस आर में आप सभी के लिए लेटेस्ट खबर तो लेके ही आऊँगा, साथ में हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड भी एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स भी जिसमें आप हिस्सा लेके जीत सकते हैं ढेरों इनाम। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस कनेक्टेड रहिए, सुनते रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में। लेट्स प्ले दिस म्यूजिक।
1: बचाओ क्या

0: होमसिक रेमेडीज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। एक मैसेज आया, उसे मैं पढ़ लेता हूँ। वी स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप इन माउंट एल्बर्ट यस्टरडे इवनिंग इन द फ्रीजिंग रेन, द एटी एप शोड मी बस वॉज 2 मिनट्स अवे। आई केप्ट स्टेयरिंग डाउन द रोड बट 2 मिनट्स पास्ड एंड सडनली द बस स्टेटस जस्ट डिसअपीयर एंड चेंज टू कैंसल्ड ऑन स्क्रीन, लीविंग मी स्ट्रैंडेड फॉर 45 मिनट्स। Back home in Latuka, it was one bus missed, another local minibus or shared taxi rolled up within 2 minutes with music blasting and you could hop in and for $1, standing wet and freezing on a dark Auckland street with no ghost bus in sight made me feel so stranded and homesick. How do you deal with it? Well, काफ़ी टाइम हो गया, मैं खुद यहाँ पे डील नहीं किया है। डील तो सिंपल यही है, गाड़ी खरीद लो, देन यू डोंट नीड टू वेट। बट अगेन डिपेंड्स कि भाई क्या चीज़ है। आदत हमारी यही होती है कि एक बस अगर छूट भी जाती है तो पीछे ऑटो रिक्शा या फिर मिनी बस, ये सारी चीज़ें आ जाया करती थी बैक होम। सेम स्टोरी विद माइन एज वेल। इंडिया की भी मैं अगर कहूँ तो यही चीज़ स्टोरी थी। पर समीर भाई, इस गोस्ट वाले ट्रॉमा से बचने के लिए एक मस्त देसी जुगाड़। सबसे पहले ऐप में सिर्फ स्केड्यूल टाइम मत देखो, हमेशा लाइव मैप ट्रैकिंग भी चेक किया करो, और ताकि पता चले कि बस सच में चल रही है या नहीं, रास्ते में कहीं अटक तो नहीं गई है या फिर घूम तो नहीं रही है। दूसरा, अपने ऑफिस या यूनी बैग में हमेशा एक छोटा फोल्डेबल अम्ब्रेला को हमेशा अपने साथ रखो, बिकॉज यू नेवर नो कब किसकी जरूरत पड़ जाए। राइट, लंच बॉक्स विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का। हे चैट जीपीटी, दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई आइडिया है कि मेरा दिवाला भी ना निकले और दिवाली भी मन जाए?
2: अगर आप अपना लिस्ट शेयर करेंगे तो मैं आपको पैसे बचाने के आइडियाज दे सकता हूँ।
1: बढ़िया है। अच्छा, ग्रोसरीज लेना है, पूरे घर की पेंटिंग करवानी है, नया सोफा लेना है, इतनी भाग दौड़ करनी है तो नेचुरली गाड़ी में फ्यूल भी तो चाहिए। और हाँ, कोई ऐसा स्कीम है क्या कि मेरे पैसे अकाउंट से जाए नहीं बल्कि अकाउंट में आए?
2: इंटरेस्टिंग, और कुछ?
1: बस इतना ही।
2: सर, मैं चैट जीपीटी हूँ, अंबानी नहीं, हमसे ना हो पाएगा।
3: दिस दिवाली लिसन टू हम ऑन 104.2 FM और रोवा एंड टेक पार्ट इन फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून एंड गेट इन द ड्रॉ टू विन योर शेयर ऑफ $5,000 वर्थ ऑफ प्राइजेस लाइक ग्रोसरी वाउचर्स, फ्यूल वाउचर्स, होम डेको एंड फर्नीचर वाउचर्स, बिल्डिंग एंड गार्डन सप्लाई वाउचर्स एंड कैश। फेस्टिवल ऑफ फॉर्चून ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, हैरिंगटन लिविंग, मनोको, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री, NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिक फाइनेंस एंड गुरु कंडोला, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड फॉर्चून, ब्रिंग होम द फॉर्चून।
4: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: At Bunnings, you can make any home spooky this Halloween with our new range. We've got inflatables, stake lights, and even animatronics. Plus, we've got buckets for the kids trick-or-treating. Come and get more Halloween for less.
12: Bunnings Warehouse!
13: Mobile Express is here. Our new self-service stations are your own pit stop. So you can fuel up without slowing your day down. And still earn Smiles points on every fill. Mobile Express, let's go!
14: मेंटल हेल्थ इज पार्ट ऑफ आर ओवरऑल हेल्थ। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मन का भी ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप ओवरवेल्ड हैं या इमोशंस मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। एशियन फैमिली सर्विसेज आपके कल्चर को समझते हैं और प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियल और फ्री इमोशनल सपोर्ट देते हैं. कॉल एशियन हेल्पलाइन फ्री ऑन 0800-862-342. अगर आप या कोई जानने वाला डेंजर में है तो 111 पर कॉल करें.
12: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका. लोटस मैनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश. साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट. बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो. फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई.
15: Non-stop Bollywood.
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
15: हम playing Bollywood's biggest hits.
17: Lunchbox with Ketan.
18: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
17: हम office shout out.
0: ऑफिस चार्टर के सेगमेंट में आपका स्वागत है. यहाँ पे हम लंच बॉक्स में पढ़ते हैं व्हाट मैसेज यू गेट यू सेंड मी ओवर हियर. अभी एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस आर हैविंग और व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड फॉर योर लंच और व्हाट यू आर अबाउट टू प्रिपेयर. तो ये सारी बातें आप मुझे भेजते हैं यहाँ पे. प्लस ऑफ कोर्स ऑफिस शाउट आउट है तो डेफिनेटली हम शाउट आउट भी देते हैं यहाँ पे. एक मैसेज तो ऑलरेडी आ चुका था एंड आई एम जस्ट वेटिंग फ्यू मोर मैसेजेस. अर्जुन ने मैसेज भेजा है. ये अभी ऑफिस से काम कर रहे हैं और इन्होंने एक चिकन बेन मी फॉर लंच वो ख़रीदा है और एंजॉय कर रहे हैं ये एट ऑफिस. इनका फेवरेट कुजीन है वियतनामीज. नाइस, थैंक यू. ये दूसरा मैसेज भी आ गया है. एंड पूजा कहती हैं वर्क फ्रॉम होम, हस्बैंड मेड कड़ी एंड राइस फॉर लंच. ओह माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, नॉट जस्ट फेवरेट बट वन ऑफ माय फेवरेट. उसके बाद केविन कहते हैं आई बॉट अ टूना सैंडविच एंड सम फ्रूट फ्रॉम होम, दैट्स सो लवली, दैट्स सो लवली. इन्होंने कहा है कि इनका मेडिटेरेनियन जो डिश है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है.
15: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

Well, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में क्या हुआ था आज के दिन, 7 अक्टूबर की ये बात है, 1917, आज ही के दिन जब जर्मन नेवल कैप्टन फेलिक्स ग्रेफ वॉन लकनर, जिसे सी डेविल भी कहा जाता था, न्यूजीलैंड लाए गए। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान उनकी जो शिप थी वो एसएमएस सीडलर ने अटलांटिक और पैसिफिक में 14 एलीड शिप्स को सिंक किया था, और अगस्त 1970 में शिप एक आइलैंड पर अग्राउंड हो गई थी, जिसके बाद वॉन लकनर और उसके कुछ क्रू मेंबर्स एक छोटी बोट से फीजी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उन्हें ऑकलैंड लाकर मोटोई है आइलैंड के प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में भी रखा गया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि दिसंबर में वॉन लकनर कैंप से एस्केप भी हो गए थे, लेकिन 8 दिन बाद करमेरिक आइलैंड में दोबारा पकड़े गए थे।

0: जस्ट रिमाइंडर, रोआ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत तरह तरह की चीजें मिल जाएगी। कुछ कंटेंट हम जैसे पॉडकास्ट डालते हैं, कुछ रील्स भी वहां पे डालते हैं, और भी तरह की चीजें वहां पे डालते रहते हैं। कुछ प्लेलिस्ट है इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव और इवन इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क। सिंपल सी बातें, वहां जाइए और उसके जरिए आप यू नो अनलिमिटेड जो हमारे प्लेलिस्ट है उसे सुन सकते हैं। हम रिवाइंड, आप रोआ के नंबर वन म्यूजिक स्टेशन बॉलीवुड गोल्डन एरा के 60s 70s के गाने सुन सकते हैं, 80s दशक के गाने सुन सकते हैं, फीजी भजन वो भी आप सुन सकते हैं, चढ़दी कला पंजाबी हिट के गाने भी सुन सकते हैं, फीजी कीर्तन भी है वहाँ पे जिसे आप सुन सकते हैं, जिसमें अभी और भी लोग ऐड हो चुके हैं, अविनेश चंद, सोनम बाली, संजय शनील चंद्र, मंजीत प्रसाद मिलन, अमित कुमार, रविनेश चंद्र रवि, नितिन, नीलेश प्रकाश, देवेन्नाथ, केविन कुमार, उपरोहित प्रसाद, शैलन सिंह एंड मैनी मोर। आप इसे सुन सकते हैं 24/7, ये फिजी कीर्तन चलने वाला प्लेटफॉर्म है जो आप कहीं भी सुन सकते हैं, एंड राहत फतेह अली खान जी के भी गाने आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे बने रहिए बिकॉज मैं थोड़ी सी देर में आपके लिए लेके आने वाला हूँ फटाफट से लेटेस्ट खबर।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
3: हम।
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Joseph Rovapa.
1: 3, 2, 1, rush! The rush is on at BP. Today only, save 20 cents per litre and get double points on fuel and shop. There's more to score at BP. Scan everyday rewards today and instantly save 20 cents per litre. Max 50 litres. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: दिवाली आ रही है और फॉर्च्यून ला रहा है आपके लिए जीतने का मौका। लोटस मेनिकाओ, माउंट रॉस्किल या बोटनी एंड नमस्ते इंडियन सुपरमार्केट से कोई भी टू फॉर्च्यून या सिंपली प्रोडक्ट्स खरीदिए और जीतिए $501 का ट्रॉली डैश। साथ में हर हफ्ते 10 विनर्स को $101 का इन स्टोर क्रेडिट। बस एंट्री फॉर्म भरो, रिसीट लगाओ और एंट्री बॉक्स में डाल दो। फॉर्च्यून दिवाली, बी इन टू विन, एंड्स 15th November. टीज एंड सीज अप्लाई।
8: 35 minutes and we've moved 3 kilometers.
9: Welcome to peak hour commute, bye.
8: Maybe I should use this time to check if I'm eligible to vote.
9: Over 18, lived here for more than a year, and a resident for electoral purposes?
8: Yeah, that sounds like me.
9: Then why don't you enroll now? Only takes a few minutes.
8: Well, you're driving, so I'll do it now. That was quick and easy.
10: Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.

0: आवाज गूंजेगी।
1: चटनी शॉट्स।
2: वेल लेडीज खबर पता है क्या है, ओप्पो टिकी के पास एक पुलिस चेस के बाद ड्राइवर सर्च अभी भी ऑनगोइंग है। संडे को अर्ली मॉर्निंग एक ड्राइवर ने रेड लाइट क्रॉसिंग की और पुलिस के स्टॉप सिग्नल को इग्नोर किया। रोड स्पाइक्स के बाद गाड़ी स्नेल रोड पर रुकी, जहां एक 33 ओल्ड मैन और एक वुमेन रिवर में जंप करके भाग गए। मैन को बाद में गिस्बन में लोकेट करके अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वुमेन को अभी तक पता नहीं चला है, यानी कि वुमेन का अभी तक पता नहीं चला है। मैन को बाद में अरेस्ट करके कस्टडी में भी ले लिया है। बट यस, पुलिस हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्च डॉग्स, कोस्ट गार्ड, लेंसर एंड नेशनल डाइव स्क्वाड के साथ उटारा और वाईओएका रिवर्स के एरिया में सर्च कर रहे हैं। पुलिस की मेन कंसर्न है अब वुमेन की सेफ्टी। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा है। बट द सेम टाइम दे आर लुकिंग फॉर हर एज वेल। अगर आपको भी कुछ ऐसा पता चलता है या फिर समझ में पता चलता है कि एक तरह से कि हेल्प हो सकती है पुलिस की, तो डेफिनेटली आप उन्हें कॉल करिए और बता सकते हैं।
3: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: पास हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Throwback.
1: Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: आज का सवाल अभी ये है कि हाथी के दांत कितने होते हैं? Quite funny, right? Well, yes, funny तो है, obviously. आप बोलेंगे दो तो होते हैं। भाई दो तो दिखाने के होते हैं, टोटल कितने होते हैं? भाई चबाता किसमें है? तो यस 5599 पे जवाब दीजिए और बताइए मुझे कि टोटल हाथी के दांत कितने होते हैं। डू लेट मी नो 5599 से नंबर।